मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, DRM 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऐप, वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 47 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राइजोबियम कल्चर एवं इसकी उपयोगिता विषय पर दिनेश कुमार सिंह से ये जानकारी।
3: इसके उपयोग की चर्चा करेंगे। किसी भी फसल से अधिकाधिक उत्पादन लेने में रासायनिक उर्वरक एवं कार्बनिक खादों का प्रमुख योगदान रहता है, लेकिन बढ़ती

0: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों

0: महंगाई के कारण एवं रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से बढ़ते मिट्टी में प्रदूषण के कारण आज जैव उर्वरकों की उपयोगिता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जैव उर्वरक न तो महंगे होते हैं और न मिट्टी में प्रदूषण ही फैलाते तथा काम वही करते हैं जो हमारे उर्वरकों द्वारा होता है। जैव उर्वरक वैसे तो कई तरह के हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख एवं ज्यादा प्रचलन में है वह है राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त टीका है जो कि वायुमंडल से नत्रजन को लेता है, इसका की पौधे उपयोग करते हैं। हमारी फसलें अनेक तरह की होती, लेकिन जो दलहनी फसलें हैं इनमें ही यदि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाए तो यह लाभकारी रहता है। अगर प्रभावी राइजोबियम कल्चर का प्रयोग सही तरीके से किया जाए दलहनी फसलों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की 80-90% आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। कौन सी फसल के लिए कौन सा राइजोबियम कल्चर प्रयोग करना है इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राइजोबियम कल्चर कई तरह के होते हैं और अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरह के राइजोबियम कल्चर प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए जिस फसल की बुआई करना हो उसी का राइजोबियम कल्चर प्रयोग करना चाहिए। अगर मूंग की बुआई कर रहे हैं तो मूंग का राइजोबियम कल्चर, और यदि उड़द की बुआई कर रहे हैं तो उड़द का राइजोबियम कल्चर। 10 किलोग्राम बीज के लिए 200 ग्राम का राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट पर्याप्त होता है। अगर 50 किलोग्राम बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना है तो 5 पैकेट कल्चर की आवश्यकता होती है। जब इसका प्रयोग करना हो तो सबसे पहले आधा लीटर पानी लेना चाहिए, उसमें 50 ग्राम गुड़ घोलकर उसे गर्म कर लेते हैं। अब जब घोल ठंडा हो जाए तो उसमें राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट मिला देते हैं। फिर इसे 10 किलोग्राम बीज पर तैयार कल्चर के घोल को हल्के हाथों से मिला करके और फिर उसको साये में फैला देते हैं। ऐसा करने से बीज थोड़ा भर हो जाता है और बुआई में आसानी होती है। जब बीज भर हो जाए तो इसे बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। इनके सही प्रयोग से जहां बीज का जमाव अच्छी तरह होता है वहीं दूसरी ओर फसल की उपज भी बढ़ती है तथा मिट्टी की गुणवत्ता खराब नहीं होने पाती। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते समय कुछ और बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे खरीदते समय देख लें कि कहीं उसकी तिथि बीत तो नहीं गई है। अगर उसकी तिथि बीत गई है तो उसे न खरीदें। अगर घर पर ही रखे पुराना हो गया है तो उसे इस्तेमाल न करें। इसे प्रयोग करने से केवल परिश्रम की ही बर्बादी हो। राइजोबियम कल्चर को किसी सरकारी केंद्र या विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें। उड़द के लिए उड़द का, मूंग के लिए मूंग का और सोयाबीन के लिए सोयाबीन वाला ही राइजोबियम कल्चर इस्तेमाल करें। राइजोबियम कल्चर को कभी भी ज्यादा धूप या ज्यादा ठंडी एवं सूखी जगह में न रखें, क्योंकि ऐसा होने पर इसके छोटे छोटे जीव मर सकते हैं। अगर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लिए हैं तो बीज को भर करने के लिए थोड़ा फैलाना पड़ता है। यह कार्य साये में ही करना चाहिए, न कि धूप में। और जैसे बीज भर हो जाए उसकी बुआई तुरंत कर देनी चाहिए, इसमें देरी नहीं करना चाहिए। बुआई का कार्य प्रातः 10 बजे तक या शाम को 4 बजे के बाद करना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राइजोबियम कल्चर एवं इसकी उपयोगिता विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इस कार्यक्रम की आइए शुरुआत करते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश की आराधना से, जो रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के दाता हैं।

सांसारिक मोह माया से विरत होकर भक्ति करना प्रभु और भक्तों के बीच का सच्चा प्रेम ही सच्ची भक्ति है। श्रद्धा के साथ प्रभु की सच्ची भक्ति से ही सच्चा सुख मिलता है। हर नीति प्रीत जगत में झूठी देखी, आई सुनते हैं ये भजन।

समर्पित भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का नाम लेते ही मन को शांति और स्थिरता मिलती है। भक्ति ही एकमात्र उपाय है शांति का, और भगवान श्री हरि की कृपा से जीवन तर जाते हैं।

0: प्रस्तुत है आज का विचार बिंदु।
1: कठिनाइयां किसके जीवन में नहीं आती? धूप छांव की तरह मानव जीवन में हर्ष और विवाद के क्षण आते ही रहते हैं, परंतु न तो हंसी के क्षणों में ईश्वर को भूलना ही चाहिए और न ही दुख के क्षणों में अपना धैर्य और विवेक खोकर उसे कोसना चाहिए और न ही उसे भला बुरा कहना चाहिए। कहावत है, आग में तप कर ही सोना कंचन बनता है। जब तक कोई मनुष्य कठिनाई रूपी परीक्षा से होकर नहीं गुजरता, उसको वास्तविकता का बोध नहीं हो सकता। हम में से अनेकों लोगों को ये भ्रम रहता है कि हम बहुत धैर्यवान और साहसी हैं, लेकिन केवल संकट की घड़ियों के बाद ही ये निश्चित हो पाता है कि हम में कितना धैर्य और कितना साहस है।

आराधना कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल, विदुषी गिरजा देवी और सुरेश वाडकर के गाए भजन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: लोगों को ये भ्रम रहता है कि हम बहुत धैर्यवान और साहसी हैं, लेकिन केवल संकट की घड़ियों के बाद ही ये निश्चित हो पाता है कि हम में कितना धैर्य और कितना साहस है। रोनेवा का विचार है, जिस प्रकार श्रम शरीर को शक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार कठिनाइयां व्यक्ति को शक्ति संपन्न बनाती हैं। फील्डिंग का कथन है, कठिनाइयों से ही सिद्धांतों की परीक्षा होती है। बिना विपदाओं में पड़े मनुष्य नहीं जान सकते कि वो ईमानदार हैं या नहीं। सैमुअल वॉरन का कहना है, कठिनाई क्या है? केवल एक शब्द जो किसी विशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित शक्ति की मात्रा बतलाता है। श्रम करने की आवश्यकता की सूचना मात्र बच्चों और मूर्खों को डराने के लिए एक हवा और पुरुषों के लिए एक प्रेरणा। सचमुच कठिनाइयों से जहां व्यक्ति की परीक्षा होती है, वहीं उसे प्रेरणा भी प्राप्त होती है। कठिनाइयों में मनुष्य की विवेक बुद्धि और तीक्ष्ण हो जाती है, उसमें अत्यंत अद्भुत साहस और शक्ति का विकास हो जाता है। सदा काम से जो घबराने वाले व्यक्ति भी उस समय आते हैं, वे कठिनाइयों से क्रियाशील हो जाते हैं और जागरूक होते पाए गए हैं। और फिर कठिनाई ऐसी अवस्था नहीं जो सदैव बनी रहे, हर रात की सुबह होती है, कठिनाइयों का अंत होना भी निश्चित है, परंतु इसके लिए आशा और विश्वास की आवश्यकता है। जेरेमी कॉलियर का कहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहने और विश्वास करने से कठिनाई दूर हो जाती है और दिखाई देने वाली असंभवता समाप्त हो जाती है। सैमुअल जॉनसन का कथन है, बहुत सी वस्तुएं जो आकार में कठिन प्रतीत होती हैं, करने में उतनी ही सरल निकलती हैं। एमसन मानते हैं कि प्रकृति जब कठिनाइयां बढ़ाती हैं तो बुद्धि भी बढ़ाती है। अतः कठिनाइयों से डरने की नहीं, अपितु उनका हिम्मत से सामना करने की हमें आवश्यकता है।
1: ये था आज का विचार बिंदु। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं गर्मी के मौसम में होने वाले रोग और होम्योपैथिक उपचार विषय पर डॉक्टर मनीष त्रिपाठी से ये जानकारी।
2: आप सभी को नमस्कार। हीट वेव जो जनरेट हो रही है उसके कारण भी हम ही है, कहीं ना कहीं एक कारण हम है इंसान। जो आजकल एटमॉस्फेरिक चेंजेस, ये जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग है, उसके लिए बहुत हद तक हम जिम्मेदार हैं। पेड़ पौधों का निरंतर काटना और जितने हमारे कल्टीवेशन की जमीनें थी उनका जो है एक कॉमर्शियल इस्तेमाल करना, बिल्डिंग से बिल्डिंग बनना, पूरे कॉन्क्रीट के जंगल में शहर बदलता जा रहा है। ज्यादातर जितने भी वाष्प है गर्मियां है उसको मिट्टी सोखती है। तो आजकल आप शहरों में जाएंगे, अगर मिट्टी एक मुट्ठी भी मिट्टी आपको निकालना होगा तो खोजना पड़ेगा कि कहाँ मिट्टी मिलेगी, पानी कहाँ मिलेगा। तो ये सारे जितने भी सोर्सेस हैं हमारे बंद होते जा रहे हैं। तो हमारा क्या है कि एब्जॉर्प्शन हीट का कहीं हो नहीं रहा है। तो जो धरती है अपने आप में सॉइल एक बहुत गुड एब्जॉर्वर है हीट का, लेकिन हीट और सैंड जो है वो कहीं है नहीं। तो हमारे सारे की सारी चीजें जो है हमारे अंदर ट्रोपोस्फीयर में जो सबसे एटमोसफियर की जो नीचे की परत है जिसके हम रह रहे हैं, उसी बीच ये पूरी की पूरी हीट रह रही है, जिसकी वजह से समय समय पे कन्वेंशनल करंट की वजह से वो हीट वेव्स हम लोगों को मिलती रहती है। आमतौर पे हीट वेव जब देखा जाए तो अप्रैल के लास्ट या मई के मध्य में रहता है, लेकिन इस बार 2025 में देखा हम लोगों ने कि ये हीट वेव हमारी 26 से लेकर 28 फरवरी को ही देखने में आ गई। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है, ये एक मौसम का बदलाव हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग है। इससे बचने के लिए हमें पर्यावरण को बचाना पड़ेगा और पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे पास सभी को पता है क्या क्या उपाय है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पेड़ पौधों का रोपण हो अधिक से अधिक और फलदार और छावदार वृक्ष लगाया जाए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स से कोई हमें लाभ नहीं मिलता, ना ऑक्सीजन मिलेगा ना हीट वेव को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात। पर्यावरण के साथ हमको पेश

0: एक मेल बना के चलना पड़ेगा। देखिए प्रकृति में जब किसी भी तरीके का अचानक बदलाव होता है तो हम उससे सफर करते हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर भी अगर किसी तरीके का अचानक बदलाव होगा तो भी हम ही सफर करेंगे। तो इसी प्रकृति का हम एक यूनिट है, एक पार्ट है, तो अगर जिस तरीके से प्रकृति है उसी हिसाब से हमें ढालना पड़ेगा। तो हम अगर प्रकृति के अनुसार नहीं ढलेंगे, बहुत सारे लोग जो है, ठीक है मैं सब जानते हैं कि गर्मियों में ठंडा रहना है अपने आप को, देखिए एक्सटर्नल हमेशा जो है पर्यावरण के अनुकूल रहिए, ठंड गर्म हीट वेव है, गर्मी है तो अपने आप को ठंडा रखिए, लेकिन कोशिश करें जो आपके अंदर का तापमान है उसमें सडन चेंजेस ना हो। बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, अचानक प्यास लगी है, ठंडा पानी ले लिया, तो क्या वो सडन बदलाव हुआ, अचानक बदलाव हुआ तो आप बीमार पड़ गए। उसी तरीके से पर्यावरण में जैसे बदलाव आता है तो हम बीमार पड़ते हैं, शरीर के अंदर भी अचानक बदलाव आने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हर जगह हमारे पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरसेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्वयं किसी भी बीमारी को होने के लिए ज्यादातर मौसमी जो बदलाव है वो हमारे अपनी दिनचर्या और हमारे खान पान से ही होते हैं। तो ज्यादातर ऐसे केसेस में जब हम देखते हैं 3 से 4 दिन तक अगर खांसी नहीं खत्म हो रही है, बुखार नहीं खत्म हो, तो निकटतम चिकित्सक से मिलना अवश्य जरूरी है ताकि उसको इन्वेस्टिगेट करके उसका उपचार हो सके। ये होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें दुष्परिणाम रहित चिकित्सा पद्धति है और बहुत ही इफेक्टिव है, विशेषता हमारे गर्मी में होने वाली समस्या है। ज्यादातर गर्मियों में, अभी मैं आगे भी चर्चा करूंगा, गर्मियों में हमारी जो 5 मुख्यतः समस्याएं थी, हीट स्ट्रोक है, फूड प्वाइजनिंग है, डायरिया है, सनबर्न है, ये मुख्यतः 4-5 समस्याएं हैं। तो बच्चों में ज्यादातर हम लोग देखते हैं फूड प्वाइजनिंग या डायरिया, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फूड प्वाइजनिंग होती है, डायरिया शुरू हो जाता है, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल भर जाते हैं। तो ऐसे समय ये ज्यादातर कंटेमिनेशन फूड जो कि संक्रमित खाने होते हैं उसमें होता है। संक्रमण कब होता है, जब हीट इस गर्मी में तमाम बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं और ज्यादातर जंक फूड या बाहर स्ट्रीट फूड्स में धूल धड़क्के की वजह से वो कंटेमिनेशन होता है, लोग वहां खाते हैं तो उसके बाद बीमार पड़ते हैं। इस कंटेमिनेशन से जो डायरिया है, तो डायरिया में बेसिकली फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा होता है, उसके साथ साथ सोडियम का भी लॉस, सॉल्ट का भी लॉस होता है। तो शरीर अचानक जो है एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें एकदम शुष्की डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है उसमें। इससे बचने के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयां, जिसमें 3 दवाइयां तो सभी को रखना चाहिए। मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि होम्योपैथिक में डायरिया की बहुत अच्छी दवाइयां, जिसमें सबसे पहले समर डायरिया के नाम से क्रोटॉन टिग्लिगम आती है, क्रोटॉन टिग्लिगम, एलोस और कैम्फर, ये 3 दवा अवश्य रखें, इसके बड़े अच्छे परिणाम।
1: स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे गर्मी के मौसम में होने वाले रोग और होम्योपैथिक उपचार विषय पर डॉक्टर मनीष त्रिपाठी से ये जानकारी। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्रीराम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले।

श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का प्रसारण आप आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुन रहे थे। आज के गायक कलाकार थे सुरेश वाडिकर।

कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सुबह 7:31 पर और दिन में 12:45 पर अक्षत प्रताप सिंह का गायन, और शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित निखिल बनर्जी का सितार वादन। गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7:00, मधुरिमा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार आप सुनिए सुबह 10:00। दिन में 11:00 सुनिएगा फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। दिन में 12:00 सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे डॉक्टर शुचि उपाध्याय के गाए भजन और रात्रि 8 बजे रूमी दत्ता की गाई गजलें होंगी।

दिन में 1:15 बजे महिलाएं गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनेंगी, शाम 5:15 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अन्य कार्यक्रमों के अलावा सुनेंगे रामनाथ और साथी का गाया लोकगीत। रामनाथ और साथी के गाए लोकगीत आप सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर भी सुनिएगा।

शाम 7 बजे अंग्रेजी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर सुप्रिया सिंह की वार्ता, फैमिली द फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यूज। और रात्रि 10 बजे दिनेश भारती का लिखा नाटक सुनेंगे तस्वीर। प्रस्तुतकर्ता होंगे डॉक्टर वी के श्रीवास्तव। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई घर में रखो।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मन्त्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदलानां निर्माणं जातं तथा प्रकरणम् अन्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति। एषा नीट परीक्षा अस्य मासस्य तृतीय दिनांके राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया आयोजिता आसीत्। नवदिल्ल्यां नीट परीक्षायाः निरस्तीकरण विषये वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः महानिदेशकः अभिषेक सिंहः अवदत् यत् राष्ट्रिय परीक्षण संस्था छात्रेभ्यः पुनः परीक्षाम् आयोजयिष्यति, सा च परीक्षा निष्पक्षरूपेण भविष्यति, पुनः परीक्षायै अतिरिक्त शुल्कं न।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: सुप्रभातम बनारस। और भाई क्या हाल चाल सब चकाचक ना? तो गुरु हो जाइए शुरू, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका नंबर वन रेडियो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से।

बनारस, आज के प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रश्न के साथ। प्रश्न ये है कि किसी शांत पल में आपने कभी खुद से पूछा कि क्या आप बिना किसी शर्त के स्वयं से पूरी तरह संतुष्ट हैं? अधिकतर लोगों का उत्तर होगा कि नहीं, कुछ न कुछ कमी लगती है। काश थोड़ा और पैसा होता, काश थोड़ी और पहचान होती, काश शरीर ऐसा होता, पर्सनालिटी वैसी होती। ये काश की लंबी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती और इसी लिस्ट को हम अपनी पहचान मान बैठते हैं। बनारस अगर देखें तो हम सब एक अधूरी कविता की तरह जीते हैं। हमें लगता है कि कुछ पंक्तियां अभी लिखी जानी बाकी हैं, कुछ छंद अभी अधूरे हैं और जब तक वे पूरे नहीं होते हम खुद को संपूर्ण नहीं मान सकते। लेकिन क्या कभी वह दिन आता है जब हम कहते हैं कि हाँ, अब सब कुछ पूरा हो गया है, अब मैं पूर्ण हो गया हूँ? जी नहीं, वह नहीं आता। एक लक्ष्य पूरा होते ही दूसरा सामने आ जाता है, एक उपलब्धि मिलते ही पहले वाले की चमक फीकी पड़ जाती है। हम सोचते हैं कि जब ये मिल जाएगा तब चैन मिलेगा, लेकिन वह तब कभी नहीं आता। दरअसल यह दौड़ बाहर की नहीं, हमारे भीतर की है और इस दौड़ की जड़ में है एक गहरी अवधारणा कि हम जैसे हैं वैसे पर्याप्त नहीं हैं। अब सवाल यह है कि यह अवधारणा आई कहां से? तो इस धारणा का बनना बचपन से ही शुरू हो गया था, जब किसी और की तुलना में हमें कम आंका गया, जब प्रेम हमें शर्तों के साथ मिला, जब हमारी सफलता को ही स्वीकृति का पैमाना बनाया गया और धीरे धीरे हमने भी मान लिया कि हमारा मूल्य हमारी उपलब्धियों से है, हमारे खुद के होने से नहीं। हर बार हमें लगता है कि थोड़ा और करना होगा, थोड़ा और साबित करना होगा खुद को, पर किसके सामने और क्यों, ये प्रश्न हम खुद से कभी नहीं पूछते। जैसे बादलों से ढका हुआ सूरज अदृश्य लगता है पर होता पूरा है, वैसे ही हम भी हैं। हमारी कविता अधूरी नहीं है, बस हमने उसे अधूरा पढ़ना सीखा है। जिस दिन आप ये स्वीकार करते हैं कि आप इसी रूप में इन्हीं सीमाओं के साथ, इन्हीं कमियों के साथ पर्याप्त हैं, उस दिन जिंदगी अचानक हल्की हो जाती है और तब बेहतर बनने की आपकी एक कोशिश भय से नहीं बल्कि आनंद से होती है, कमी से नहीं पूर्णता से होती है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और अब बातें देश दुनिया और अपने शहर बनारस की। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर मंगलवार को आध्यात्मिक संगोष्ठी हुई। संस्कृति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से आयोजन हुआ। भक्ति श्रद्धा और संस्कृति पर केंद्रित संगोष्ठी में देश के विभिन्न हिस्सों से आए संतों आचार्यों सहित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के कुलपतियों और शिक्षाविदों ने भी हिस्सेदारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारतीय सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और राष्ट्रीय आत्मगौरव का प्रतीक है। सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। वे भारतीय आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सोमनाथ मंदिर इस बात का प्रतीक है कि किसी राष्ट्र की आत्मा को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। आज जब विश्व अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है, तब भारत का आध्यात्मिक संदेश विश्व मानवता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि किसी भी समाज, विश्वविद्यालय या राष्ट्र के विकास के लिए आत्मविश्वास और स्वाभिमान अत्यंत जरूरी है। और बनारस कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको दे दें तो समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर दोहरीकरण के लिए 12 से 14 मई तक ब्लॉक लिया गया है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि 14 मई को वाराणसी सिटी दरभंगा एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया गया है, जबकि दरभंगा वाराणसी सिटी एक्सप्रेस 13 मई को यानी आज रद्द रहेगी। दोहरीकरण के चलते बनारस पुणे अमृत भारत एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेगी। वाराणसी मंडल के पीआरओ अशोक कुमार ने बताया कि 14, 15 और 16 मई को यह गाड़ी मनमाड, नासिक रोड, इगतपुरी, कल्याण, पनवेल, लोनावाला होकर चलाई जाएगी। जगतपुर पीजी कॉलेज में मंगलवार से स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश आवेदन शुरू हो गए हैं। पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल प्रताप सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराकर कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश आवेदन करना होगा। साथ ही बनारस एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दें कि रोड चौड़ीकरण और लाइनों को भूमिगत करने के लिए आज शटडाउन लिया जाएगा शहर में कई जगहों पर। इस दौरान दौलतपुर उपकेंद्र के भक्ति नगर, कुंती विहार, उदयपुर उपकेंद्र के सोएपुर, लेड़ूपुर उपकेंद्र के आशापुर और पांडेपुर के पहाड़िया फीडर से सुबह 8 से 11 बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। बनारस डीएवी पीजी कॉलेज के वाणिज्य विभाग में मंगलवार को नेशनल कॉम क्वेस्ट का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा, समूह परिचर्चा और प्रेजेंटेशन की 3 स्तरीय स्पर्धा में विभिन्न कॉलेजों के 70 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में आर्य महिला पीजी कॉलेज के अंशु कुमारी ने पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे और तीसरे स्थान पर डीएवी के अश्विनी कुमार मिश्रा और अदिति कुमारी रहीं। इस मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर मिश्रीलाल, उप प्राचार्य द्वय प्रोफेसर संगीता जैन और प्रोफेसर राहुल और कॉमर्स विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजयनाथ दुबे ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगलवार को शहर के हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। विग्रहों का श्रृंगार किया गया, जगह जगह भंडारे का आयोजन हुआ। कई जगह सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। दर्शन पूजन का एक क्रम देर रात तक चलता रहा। इस क्रम में मनशापूरण हनुमान मंदिर कंपनी बाग, हठिले हनुमान जी नमो घाट, हनुमान मंदिर मछुदरी पार्क, संकटहरण हनुमान मंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय, हनुमान मंदिर नगवा, संकट दहन हनुमान मंदिर निची बाग, महावीर मंदिर अदली बाजार, राम जानकी हनुमान मंदिर बुलानाला, हनुमान मंदिर हनुमान घाट, हनुमान मंदिर चितईपुर, चिंताहरण हनुमान मंदिर मध्यमेश्वर, विजय दयाल टावर, दुर्गा कुंड और इस तरह से शहर के तमाम हनुमान मंदिरों पर यह भीड़ और दर्शन पूजन करने वाले भक्तों का सिलसिला रात तक चलता रहा। और अब बनारस बातें मौसम की तो जेठ की गर्मी और सूर्य की तपती किरणों के बीच गर्मी अपने तेवर में लौट चली है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग और विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते अधिकतम तापमान 43 डिग्री से अधिक हो सकता है। मंगलवार सुबह 9 बजे से ही मौसम का मिजाज साफ होने लगा था। करीब 2 हफ्ते तक गर्मी से मिली राहत अब खत्म हो चली थी। दिन चढ़ने के साथ तपिश बढ़ती जा रही थी। अधिकतम तापमान 40.5 और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 29 अप्रैल को तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 30 अप्रैल को आंधी बारिश के बाद तापमान में 10 डिग्री की गिरावट हुई थी और तब से तापमान 40 डिग्री के नीचे ही रहा था, जो कि कल से अब बढ़ना शुरू हो गया। तो बनारस ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हालचाल। और अब चलते हैं आगे और जान लेते हैं बातें गुजरे हुए कल की। बनारस इतिहास के गलियारों में आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने आज ही के दिन यानी 13 मई को पोखरण में 2 और परमाणु परीक्षण किए थे। आपको बता दें कि भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में ही किया गया था। उसके बाद 11 मई 1998 को पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में एक बार फिर 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे और 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद ही भारत ने विश्व में परमाणु शक्ति संपन्न

राष्ट्र का दर्जा प्राप्त किया। हालांकि इन परीक्षणों के फौरन बाद भारत पर तमाम आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा लगाए गए, लेकिन उन सबसे प्रभावित हुए बिना भारत ने विश्व इतिहास में स्वर्णाक्षरों में एक नया अध्याय लिख दिया। बनारस आज जन्मदिन स्वाधीनता सेनानी मथुरा प्रसाद मिश्र वैद्य, भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, हास्य अभिनेता असित सेन, सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना टी बाला सरस्वती और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का। साथ ही आज है पुण्यतिथि इंकलाब जिंदाबाद का अमर नारा देने वाले स्वाधीनता सेनानी और सुप्रसिद्ध शायर मौलाना हसरत मुहानी की। उर्दू शायर, पत्रकार, इस्लामी विद्वान और समाज सेवक हसरत मुहानी ने वर्ष 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिसका अर्थ है क्रांति अमर रहे। इसी नारे को अमर शहीद भगत सिंह ने अपनी फांसी के दौरान दोहराया और उनके साथ ही यह नारा भी अमर हो गया। आजादी मिलने के बाद मुहानी ने संविधान सभा सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 13 मई 1951 को इस गुमनाम क्रांतिकारी ने हमेशा हमेशा के लिए इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। आपके सम्मान में भारतीय डाक विभाग द्वारा 2014 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।

जी हाँ, ये ट्यून है हमारे बचपन के सुप्रसिद्ध नाटक मालगुडी डेज का, जो दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित होता था। आज इस सीरीज के लेखक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार आर के नारायण की पुण्यतिथि है। मुल्क राजानंद, राजा राव और आर के नारायण को भारतीय अंग्रेजी लेखन का बृहत्त्रयी माना जाता है। सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट और पद्म विभूषण से सम्मानित आर के लक्ष्मण इनके ही भाई थे। वर्ष 2000 में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2009 में आपके स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था।

0: और बनारस आइए चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका रहता है आपको इंतजार और जिसका नाम है
1: काशी कथा।
0: जी हाँ, काशी कथा। और काशी कथा में आज बातें एक ऐसी गली की जिसके बारे में भी बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। दरअसल पुराण काशी को भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ मानते हैं। काशी के मुख्य चौक से चारों दिशाओं में जाने वाले मार्गों का चिन्हांकन भी चारों पुरुषार्थों की ओर ले जाने वाले मार्ग के रूप में किया गया है। एक बोर्ड पर बने तीरों के निशान के माध्यम से श्री काशी विश्वनाथ धाम की ओर जाने वाले मार्ग को धर्म का मार्ग, कचौड़ी गली जाने वाले मार्ग को अर्थ का मार्ग, दाल मंडी की ओर जाने वाले मार्ग को काम का मार्ग और मणिकर्णिका की ओर जाने वाले मार्ग को मोक्ष मार्ग की संज्ञा दी गई है। लेकिन विचित्रताओं और विशेषताओं से भरी घाटों और गलियों की इस नगरी काशी में अनेक गलियां हैं जो आपको एक साथ चारों पुरुषार्थों की ओर ले जाती हैं। और इन्हीं गलियों में से एक गली का नाम है घुघरानी गली। अब इस गली का नाम घुघरानी क्यों पड़ा, ये भी एक आकर्षक जानकारी की बात है। जानकार बताते हैं कि इस गली में पहले घुंघरुओं की दुकानें हुआ करती थीं, जो दालमंडी की नृत्यांगनाओं के लिए हुआ करती थीं, और दूसरे की गली कई चक्करों में घूमती है, जैसे कि नृत्यांगना के घुंघरू। शायद इन्हीं कारणों से इसका नाम घुघरानी गली पड़ा हो। ये गली काशी की जितनी ही पुरानी है। लगभग 500 मीटर लंबी ये गली आगे जाकर तीन हिस्सों में बंट जाती है और तीनों जगह तीन विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश कराती है। बांस फाटक के सामने आरंभ करते हुए इस गली में प्रवेश कर आगे बढ़े

0: तो राम प्यारे रस्तोगी इंटर कॉलेज मिलेगा। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सेवा सदन हिंदू अस्पताल है तो उसके आगे फूल मंडी है। अनेक धार्मिक मंदिर हैं जिनमें सत्यनारायण भगवान मंदिर का पिछला हिस्सा इसी गली में खुलता है। और शहर के पहले सिनेमा हॉल चित्रा का पिछला हिस्सा भी इसी भाग में खुलता है। यहीं पतंग बाजार है जो घुंघरुओं की दुकानों की जगह अब बैंड बाजों की दुकानों ने ले ली है। हालांकि अभी भी तबलों ढोलकों और हारमोनियम की मरम्मत का काम यहां पर होता है। तो बनारस से ये था काशी कथा का आज का अंक,
1: काशी कथा।
0: और अब इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो गया है। तो दीजिए अनुमति अपने बनारसी बाबू को। नमस्कार बनारस, आपका दिन शुभ हो।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। CBI ने कथित नीट पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला, देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट UG परीक्षा रद्द, अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई, आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में देश भर से कई लोगों को हिरासत

0: हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: इस बीच एनटीए ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से जुड़ने की अपील के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: राज्य सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पूलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कस्ते अरुण।
0: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन

0: किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कौशल विकास संस्थान आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आज से अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ होगा। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में मेजबान यूपी और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों के 275 खिलाड़ी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
0: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है।
2: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
0: आगरा जिले के कमलानगर थाना क्षेत्र में कल यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी बच्चों को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। अंतिम समाचार मिलने तक 2 बच्चों का उपचार जारी था। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है अक्षत प्रताप सिंह का गायन राग है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अक्षत प्रताप सिंह का गायन। राग था भूपाल तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे ज्ञान स्वरूप मुखर्जी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव N. मुरुगंदम और वित्त

0: सचिव टी उदयचंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में

0: अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर है। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों को

0: खबरों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौमुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ टीवीके के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब टीवीके को एआईएडीएमके के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। टीवीके को अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के एक एमएलए एस कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में टीवीके के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीसामी की क्यादत वाली AIADMK ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद MGR ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: मधुरिमा कार्यक्रम सुनने वालों को ज्योति स्वरूप का नमस्कार। मधुप करता है गुंजन सुगंधों की, सांसों में महकता है स्वर पंचम, उत्साह उमंग भरा संगीत। साथियों, फैसला कर लो, हर हाल में खुश रहना है, अच्छा सा सुनना है, अच्छा सा कहना है, तो खुल के खुशी लुटाओ, उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा।

लफ्ज़ों से तो हम कुछ भी ना कह सके, पर आँखों ने मस्त बहार की शोखियाँ लिए हुए दिल की कहानी सुना दी।

0: फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई।
1: बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे।
0: अरे नहीं रे, बैंक संभाल ले।
1: कैसे?
0: मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं।
1: अच्छा लाइए, मुझे दीजिए फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला।
0: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: कितना अजीब है ये फलसफा जिंदगी का, दूरियां सिखाती हैं कि नज़दीकियां क्या होती हैं।

चांद आज प्यार से शर्माया है, तेरी मोहब्बत ने कुछ ऐसा गजब ढाया है। खुदा से क्या मांगे तुझे, आज वो खुद मुझसे आप जैसी मोहब्बत मांगने आया।

समस्या देखकर जीवन से कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर आपकी कोई बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी।

इसी के साथ मधुरिमा कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 9:15 हो रहे, थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
1: IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मेधावियों को मेडल प्रदान किए। डिग्री प्राप्त करना शैक्षिक जीवन का समापन नहीं बल्कि यह शुरुआत है। भारत के विकास में सहयोगी बनने की IIMT विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने विद्यार्थियों से नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मंच से 4 विश्वविद्यालयों टॉपर और 13 विभिन्न कॉलेजों के टॉपर सहित 17 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन द्वारा निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरिजी महाराज, परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर हरि सिंह रावत को डायरेक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए छात्रों को संस्कारों का महत्व समझाया। उपराष्ट्रपति ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने की सीख दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपनी शिक्षा को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाएं और नवाचार स्टार्टअप के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, लक्ष्य के प्रति समर्पण और लगन जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने नए स्नातकों से कहा कि वर्ष 2047 में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब तक हम सबको मिलकर भारत को विकसित बनाना है। देश को ग्लोबल लीडर के रूप में सामने लाने के लिए ईमानदारी, कार्य के प्रति समर्पण और सेवा भाव से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा द्वारा तैयार यह 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो 12 जिलों से होकर गुजरते हुए प्रदेश में

0: कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन को भी नई रफ्तार देगा। मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे के शुभारंभ पर मेरठ के बिजौली गांव में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पशुधन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने भी प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा,
1: मेरठ से प्रयागराज तक जो 600 किलोमीटर की दूरी है, जो 12 घंटे में पूरी होती थी, वो 6 घंटे में पूरी हो जाएगी, और 120 किलोमीटर की स्पीड से, जिसमें निर्वाध गति से ये यात्रा पूरी होगी। तब लोग हवाई यात्रा की ओर कम मुखातिब होंगे, एक्सप्रेस वे से ज्यादा लाभ उठाएंगे।
0: मेरठ में जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। इसमें नागरिक अपना ब्यौरा खुद दर्ज करा सकेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर वी के सिंह ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद आसान है और इसमें बहुत कम समय लगता है। जनगणना की वेबसाइट पर जाकर निर्देशों का पालन करते हुए इसे आसानी से भरा जा सकता है। नागरिक 7 से 21 मई के बीच अपने मोबाइल या लैपटॉप पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया,
2: आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, कपल कितने रहते हैं, फैमिली में कितने मेंबर हैं, रूम्स कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर की क्या सुविधा है, कुकिंग गैस आपके यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है, रेडियो टीवी ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, नेट की फैसिलिटी है कि नहीं। व्हाट्सएप पर एक ओटीपी आती है, ओटीपी को आपको फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद एक इम्यूनेशन आईडी जो है जनरेट हो जाती है। उस आईडी को आपको सुरक्षित रखना है, ताकि जब 22 तारीख से जब हाउस टू हाउस हाउस लिस्टिंग का कार्य जो है इन्वेंटरी के द्वारा किया जाएगा प्रगणक के द्वारा, तो आईडी मांगने पर आपको देना है।
0: तकनीकी सहयोग जोहद शो इंडिया एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वधान में मेरठ मंडल के प्रथम नागरिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन में मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा मॉडल टीकाकरण केंद्र एवं HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन 14 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि मेरठ में 10,000 से लगभग वैक्सीन आ चुकी हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि ये वैक्सीन अत्यंत प्रभावी है और बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, के कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं है। सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि अपनी बेटियों को यह वैक्सीन अवश्य लगाएं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वधान में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण अनंता का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नारी शक्ति के सम्मान, प्रतिभा के उत्कृष्ट और सामाजिक जागरूकता के प्रभावी संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, खिलाड़ियों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
3: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज सिद्दीकी का।
4: बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने विभागों और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही लापरवाही करने वाली कार्यदायी संस्थाओं और संबद्ध अधिकारियों को कमी पाए जाने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और उन्हें जन जन तक पहुँचाने को कहा है। असानी रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में प्रशिक्षु आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण समापन के उपरांत दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि अमिताभ यश अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था द्वारा सलामी लेने के पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा कठिन प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रशिक्षु आरक्षियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की गई तथा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नागरिकों की सेवा करने, ईमानदारी और पेशेवर पुलिसिंग के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान, जनता से मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया, साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत परेड में कुल 12 टोलियों के 293 प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं खास सुरक्षा अधिकारियों की गठित टीम द्वारा गत दिनों जनपद के समस्त तहसीलों एवं नगर पालिका क्षेत्र में मीट के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस बल के साथ संपूर्ण जनपद में गहन छापेमारी एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान अस्वस्थकर एवं अस्वच्छ कर स्थिति में खाद कारोबार करने वाले खाद कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी की गई व बिना लाइसेंस पंजीकरण संस्करण की व्यवसाय संचालन करने वाले 9 खाद कारोबार

0: कार्यकर्ताओं के प्रतिष्ठान को मौके पर ही बंद करा दिया गया। बैसाखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री कटुआ धाम समर्थ साहेब जगजीवन दास बड़े बाबा में आयोजित मेले के दौरान जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा जन कल्याण एवं जनपद की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। 7 मई को राजस्व प्रशासन दिवस के रूप में सौगणना अभियान की शुरुआत की गई। जिला जनगणना अधिकारी अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह के अनुसार इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में अधिकतम से जन सहभागिता सुनिश्चित कर जनपद बाराबंकी को सौगणना में अग्रणी बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने विगत दिनों जनपद का दौरा किया। उन्होंने सर्वप्रथम जिला महिला चिकित्सालय पहुंचकर ओपीडी कक्ष, मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मरीजों से संवाद कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्था सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कक्ष सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अस्पताल के रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। मंत्री श्री राही द्वारा नगर पालिका परिषद नवाबगंज में कल्याण मंडल के समीप पुनर्गठन पेयजल योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पानी की टंकी के कार्यों का स्थलीय अवलोकन किया गया। उन्होंने कार्यों को तीव्र गति एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल निगम को दिए। मंत्री ने इसी क्रम में जिला कारागार का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के निर्देश दिए। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया और हिस्ट्री शीटर मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन की लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि मिसबाहुर रहमान को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त विगत 25 वर्षों से मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त है। अभियुक्त की अवैध मादक पदार्थों की निगरानी हेतु थाना जैतपुर में हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। साथ ही उसे जनपद स्तर पर ड्रग माफिया घोषित किया गया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अमन मिश्र, जिनकी उम्र 23 वर्ष है, पुत्र यजुवेंद्र कुमार मिश्र, निवासी मुकुंदपुर पाहो डोमनपुर थाना कछवा जिला मिर्जापुर के निवासी हैं। ये दिनांक 22 जनवरी 2026 को दिन में 12 बजे मोहन सराय वाराणसी से घर पाहो के लिए निकला था और घर नहीं पहुंचा। इनकी लंबाई 6 फीट, रंग गोरा है। लापता होने के समय इन्होंने जींस और शर्ट पहनी हुई थी। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना कछुआ को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार राम सूरत, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, पुत्र शोभनाथ, निवासी चिरई गांव, पोस्ट चिरई गांव, थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी, ये 10 जनवरी 2026 को सुबह 5 बजे घर से निकले थे, अब तक पता नहीं चला। इनका रंग सांवला है, इनकी लंबाई 5 फुट 1 इंच है।

लापता होने के समय नीला रंग की इनर, नीला लोअर व गुलाबी व सफ़ेद शाल पहने हुए थे। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना चौबेपुर को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रिया पाल, जिनकी उम्र 23 वर्ष है, पुत्री है बाल कृष्ण पाल की, जो दिनांक 20 जनवरी 2026 को सुबह 10:30 बजे डीएवी शिक्षण संस्थान रौना चोलापुर गई हुई थी। इनकी लंबाई 5 फीट 2 इंच है। इनका रंग गोरा है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना चोलापुर को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें।

0: कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अनामिका सिंह राणा, पुत्री स्वर्गीय राणा विजय शंकर सिंह, उम्र 46 वर्ष, ये 28 दिसंबर 2025 को सुबह 9 बजे अपने घर से बिना बताए निकल गई हैं। अभी तक घर वापस नहीं लौटी हैं। इनका रंग गेहुआ है। इनकी लंबाई 5 फीट है। इनका वर्तमान पता प्लाट नंबर 3, राज राजेश्वरी नगर कॉलोनी, गिलट बाजार, वाराणसी है। इनके बारे में जानकारी मिलने पर थाना शिवपुर को सूचित करें या नज़दीक के किसी भी थाने को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में उर्दू कार्यक्रम होगा हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: लखनऊ से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
2: उर्दू प्रोग्राम सुनने वालों की खिदमत में फर्रुख जमाल का आदाब कबूल हो। सामाइन, आज के प्रोग्राम में पहले आप समाअत फरमाएंगे डॉक्टर शरीफुद्दीन से उनका एक मकाला, अमीर मीनाई की गजलिया शायरी, और इसके बाद कलामी शायर के तहत आज के शायर हैं डॉक्टर सरफराज नवाज। सामईन, आज उर्दू के मारूफ शायर और सहाफ़ी मौलाना हसरत मोहानी का योम वफात है। समात फरमाइए इस हवाले से एक मुख्तसर तकरीर बाहमी इत्तेहाद के नकीब हसरत मोहानी। उर्दू शायरी और उर्दू गज़ल को नई जहत से रोशनास कराने वाले और अजीम मुजाहिद आज़ादी मारूफ शायर मौलाना हसरत मोहानी की पैदाइश 1 जनवरी सन 1875 को ज़िला उन्नाव के मोहान में हुई थी। उनका असल नाम फैजुल हसन था और हसरत उनका तखल्लुस था। मोहान में पैदा होने की निस्बत से वो हसरत मोहानी हो गए। मौलाना हसरत मोहानी मुजाहिद आज़ादी होने के साथ साथ बुलंदपाया सहाफ़ी भी थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम के साथ मौलाना हसरत मोहानी की सहाफ़त भी काबिल कद्र थी। मौलाना हसरत मोहानी ने ज़माने तालिब इल्मी में ही सहाफ़त के मैदान में कदम रखा। उन्होंने सहाफ़त को अपने अफकारों नज़रियात की तर्जुमानी और हुसूल मकसद का वसीला बनाया। अरसाए सहाफ़त में उनके लाफानी नकूश जराइद उर्दू मुअल्ला और तज़किरतुश्शोरा में नज़र आते हैं। सन 1903 में उन्होंने उर्दू मुअल्ला जारी किया जो दुनियाए सहाफ़त में इनफरादी और मुमताज़ मकाम रखता था। बकौल मजनू गोरखपुरी के, अगर हसरत न होते तो आज न जाने कितने उर्दू शोरा के कारनामे तल्फ होकर रह जाते और हम उनके नाम तक से बेखबर रहते। मौलाना हसरत मोहानी को कृष्ण जी से वालेहाना अकीदत थी। हसरत फरमाते हैं, इल्मो हिकमत का जिन्हें शौक हो आए न इधर, कुछ नहीं फलसफ़े इश्क में हैरत के सिवा। हसरत मोहानी का नज़रिया इश्क सूफिया इकराम से मुतासिर है।

0: आम का। एक दूसरी गजल में मथुरा जाने के आरजुमंद इसलिए हैं कि वह मथुरा को शहर मोहब्बत समझते हैं। हसरत का कहना है, मथुरा के नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, हर जर्रा सरजमी गोकुल का, दारा है जमाले दिलबरी का, बरसाना और नंद गांव में भी देख आए हैं जलवा किसी का। गर्ज के हसरत मुहानी ने हिंदुस्तान की उस रूह को अपने अंदर बसा लिया जो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की अलम्बरदार है। हसरत की हमेशा ये कोशिश रही कि मुल्क फ़िरका वारियत से पाक रहे और लोगों में बाहमी इत्तेहाद कायम रहे। बाहमी इत्तेहाद के नकीब मौलाना हसरत मुहानी। सामईन, अभी आप ये मुख्तसर तकरीर समाअत फरमा रहे थे। पेश कर रहा था मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल, और अब आइए सुनते हैं डॉक्टर शरीफुद्दीन से उनका मकाला अमीर मीनाई की गजलिया शायरी।
1: दिल्ली हिंदुस्तान का दिल रही है, इसलिए वो बार बार दुश्मनों के हमलों का निशाना भी बनी। दिल्ली में शोरा की कदरदानी और सरपरस्ती बहादुर शाह जफर के साथ खत्म हुई। लखनऊ के नवाब और रियाया की ये ख्वाहिश थी कि हर मामले में दिल्ली से बाजी ले जाएं। ये मरकज अब लखनऊ को मुंतकिल हुआ। शाहान अवध शोरा के सरपरस्ती के लिए पहले से तैयार बैठे थे। आखिरी ताजदार अवध वाजिद अली शाह बहादुर शाह जफर की तरह खुद भी शायर थे। वाजिद अली शाह जलावतन करके कलकत्ता भेज दिए गए। शोरा रोजी की तलाश में सरगर्दां थे। हैदराबाद, भोपाल, लाहौर और अजीमाबाद के अलावा शायरों की बड़ी तादाद रामपुर पहुंची। उसका सबब यह था कि यूसुफ अली नाजिम खां ताजदारे रामपुर खुद साहिब इल्म और अजीम शायर थे। नाजिम ने जिन शायरों को अपनी सरपरस्ती से नवाजा उनमें अमीर मीनाई, दाग और जलाल खास तौर पर काबिल जिक्र है। बेशक रामपुर की रियासत ना दिल्ली के हमपल्ला थी ना लखनऊ के, इसके बावजूद यहाँ शेर व अदब को खूब फरोग हुआ। फन शायरी और कवायद पर किताबें लिखी गईं, लुगात तरतीब दी गईं, शायरी के अलावा नसर की तरफ भी तवज्जो दी गई, मर्सिया निगारी की रिवायत भी मुस्तहकम हुई। गोया दबिस्तानी रामपुर दिल्ली और लखनऊ का संगम नजर आता है। मुराद ये कि जबान की रानाई तो बरकरार रही लेकिन तसन्नो और बनावट में कमी आई। सादगी, बरजस्तगी, शुस्तगी, सलासत और रवानी की तरफ शोरा का खास रुझान हुआ। मामला बंदी का सिलसिला भी जारी रहा। इस तरह उर्दू शायरी में एक नया रंग व आहंग पैदा हुआ। अमीर मीनाई का नाम अमीर अहमद था। अमीर तखल्लुस शाह मीना के खानदान से थे, इसलिए मीनाई नाम का जुज हो गया। लखनऊ में 1826 में विलादत हुई और वफात 1900 में हुई। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। इसके बाद फरंगी महल में तहसील इल्म की। अरबी और फारसी में उबूर रखते थे। तिब, नुजूम और जफर का इल्म भी हासिल किया। बड़े नेक आबिद व जाहिद और आलिम व फाजिल थे। शायरी की तरफ बचपन से तबीयत रागिब थी। लखनऊ में आतिश व नासिक के उरूज का जमाना था। मीर मुजफ्फर अली असीर की शागिर्दी अख्तियार की। असीर की तरबियत और रहनुमाई से अमीर मीनाई की शेरी सलाहियतों ने फरोग पाया। अमीर मीनाई वाजिद अली शाह के दरबार से वाबस्ता हुई। इनकी फरमाइश पर हिदायतुस्सुल्तान और इशादुस्सुल्तान दो किताबें लिखीं और इनाम व इकराम से सरफराज हुई। सुकूते सल्तनत के बाद यानी जब अवध का दरबार उजड़ गया तो अमीर मीनाई लखनऊ छोड़कर काकोरी और मैनपुरी की खाक छानते हुए रामपुर चले गए और दरबारे रामपुर के साये में फरागत पाई। नवाब के कलाम पर इस्लाह देने की खिदमत सुपुर्द हुई। रामपुर ही में शेख वहीदुज़्ज़मां की बेटी से निकाह हुआ और तकरीबन 43 साल कदर व मंजिलत के साथ रामपुर में रहने के बाद दाग की दावत व फरमाइश पर हैदराबाद चले गए। वहां जाकर बीमार हो गए और 1900 ईस्वी में इस जहान फानी से कूच कर गए। मुतअद्दिद तसानीफ अमीर मीनाई से यादगार हैं। अमीनाई साहब का पहला दीवान मिरातुल गायब लखनऊ के इसी मखलूत रंग में है और इसमें वो तमाम मायब मौजूद हैं जो नासिख व आतिश और उनके तलामजा के कलाम में पाए जाते हैं। मसलन नासिख वगैरह ने गजल में ऐसे मजामीन शामिल कर दिए थे जिनको गजल से कोई ताल्लुक ही नहीं था और इस किस्म के मजामीन मिरातुल गैब में कसरत से

0: पाए जाते हैं। जैसे एकदम हुक्म खुदा मुझको फरामोश नहीं, दिल पे लिखे हैं समावी हैं जो दफ्तर चारों, क्या हुआ चार अनासिर जो परेशान हुए आज, दम में हो जाएंगे एक जा दमे महशर चारों, बतने मादर बगल गोर मकान बागे बहिश्त, अपने बंदों को खुदा ने ये दिए घर चारों, नसीब हो कि ना हो सुबह देखना गाफिल, ख्याल मौत का जम है वक्त ख्वाब रहे, वजीरों को सनद शाह का है फर्ज एजाज, नबी के हाथ में अल्लाह की किताब रहे, गैरों को फाड़ खाए सगे यार तो कहूं, ऐ शेर वाह तू ही तो शेरों का शेर है, कसूर नफ्स लाई से खुदा रहा नाराज, गुनाह गैर पे हम मुर्दे इताब रहे। इसके अलावा सनम खान इश्क के नाम से दो दीवान, नूरे तजल्ली और अबरे करम दो मतनविया, कई मुसद्दस कसाइद और वासोख्त छोड़े, और अमीरुल लुगात तो वाकई अजीम शाहकार है। अल मुख्तसर ये कि अमीर मिनाई ने उर्दू शेर व अदब की बेलौथ व काबिल कदर खिदमत अंजाम दी है। अमीर मिनाई को लखनऊ के ऐश परिस्ताना माहौल ने इनकी तबीयत पर गहरा नक्श छोड़ा था। कैसर बाग के ऐशो इशरत सैर व तफरीह व तमाशे लखनऊ छोड़ने के बरसों बाद तक इनको याद आते रहे। मसलन फरमाते हैं, अमीर अफसुरदा होकर गुंचे दिल सूख जाता है, वो मेले हमको कैसर बाग के जब याद आते हैं। अमीर मिनाई ने मुख्तलिफ नौ असनाफ सुखन में तब आजमाई की, लेकिन इनका असल मैदान गजल ही था। अमीर की शायरी में हुस्न इश्क के जज्बात का लखनऊ की इल्मी जबान में बड़ी खूबी से बयान हुआ है। इनके कलाम में तखयल की गहराई के साथ रंगीनी और नुदरत भी है। इसके अलावा हुस्न इश्क की छेड़छाड़ और आशवा तराजियां भी हैं। इनका इब्तदाई कलाम नासिख के रंग में है, लेकिन आगे चलकर दिल्ली की सादगी सफाई सलासत व रवानी रंगीनी व रानाई रियायत लफ्जी तशबीहात व इस्तियारात और बेतकल्लुफी का भरपूर अक्स भी नजर आता है। आइए जरा नमूने कलाम पर तवज्जो फरमाते हैं। जो चुप रहेगी जबाने खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का, अंगूर में थी ये मैं पानी की चार बूंदें, जिस दिन से खींच गई है तलवार हो गई है, उम्र बरको शरार है दुनिया कितनी नापायदार है दुनिया, अमीर जमा हैं अहबाब हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिल दोस्तान रहे न रहे। सनम खान इश्क के अखीर में गौहर इंतखाब और जवाहर इंतखाब के नाम से दो जमीमें शामिल किए, जिनकी निस्बत उनका दावा है कि वो मीर और दर्द के रंग में कहे गए।
1: अमीर मीनाई की गजलिया शायरी, ये मकाला पेश कर रहे थे डॉक्टर शरीफुद्दीन, और अब हम सुनवा रहे हैं आपको डॉक्टर सरफराज नवाज से उनका कलाम।
2: उस पुराने पेड़ का मशहूर किस्सा हो गया, उस पुराने पेड़ का मशहूर किस्सा हो गया, जो भी उसकी छांव में बैठा परिंदा हो गया, धड़धड़ाती रेलगाड़ी आई उसको ले गई, मैं खड़ा गुमसुम सा स्टेशन का हिस्सा हो गया। एक मतलब एक शेर और देखें कि लबों पे मेरे तबस्सुम ने यूं मलाल किया, लबों पे मेरे तबस्सुम ने यूं मलाल किया कि अश्क हार गए हार कर सवाल किया, तुम्हें गिला है कि पुरखों ने कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हें गिला है कि पुरखों ने कुछ नहीं छोड़ा, हमें तो उनकी शराफत ने मालामाल किया, तुम्हें गिला है कि पुरखों ने कुछ नहीं छोड़ा, हमें तो उनकी शराफत ने मालामाल किया। एक मतला और एक शेर समाप्त फरमाए कि बला से नाम वो मेरा उछाल देता है, बला से नाम वो मेरा उछाल देता है, मगर वो जहर तो दिल का निकाल देता है, मगर वो जहर तो दिल का निकाल देता है, मैं सोया रहता हूं और जाने कब खुदा मेरा अधिक

भी रात को सूरज में ढाल देता है। मैं सोया रहता हूं और जाने कब खुदा मेरा अधेरी रात को सूरज में ढाल देता है। अब एक गजल के चंद अशआर समाअत फरमाए। मतला यूं अर्ज किया है कि पलक झपकते ही रूपोश होने वाला हूं, पलक झपकते ही रूपोश होने वाला हूं, मैं झील आंखों में खुद को डुबोने वाला हूं, मैं झील आंखों में खुद को डुबोने वाला हूं। तेरी हंसी में हजारों शरीक होते हैं, तेरी हंसी में हजारों शरीक होते हैं, मैं चुपके चुपके तेरे साथ रोने वाला हूं, मैं चुपके चुपके तेरे साथ रोने वाला हूं। और इस शेर पर खुसूसी तवज्जो दें, यहां एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, देखें कि वफा के तार में बुनता हूं दिल के करघे पर, वफा के तार में बुनता हूं दिल के करघे पर, बिखर गए हैं जो रिश्ते पिरोने वाला हूं, वफा के तार में बुनता हूं दिल के करघे पर, बिखर गए हैं जो रिश्ते पिरोने वाला हूं। मैं लम्स ओढ़ के तेरा कहीं भी सो लूंगा, मैं लम्स ओढ़ के तेरा कहीं भी सो लूंगा, जमी पे घास के फैले बिछोने वाला हूं, जमी पे घास के फैले बिछोने वाला हूं। तू जा रहा है ये कहता है मैं ख्याल रखूं, तू जा रहा है ये कहता है मैं ख्याल रखूं, तुझे पता है मैं तकिया भिगोने वाला हूं, तुझे पता है मैं तकिया भिगोने वाला हूं। एक गजल के चंद अशआर और समाअत फरमाए। मतला देखें कि नहीं ये चाहते कोई कमाल दे मौला, नहीं ये चाहते कोई कमाल दे मौला, हमारे ऐप पे पर्दा तू डाल दे मौला, हमारे ऐप पे पर्दा तू डाल दे मौला। और ये शेर देखें कि बढ़ा रहे हैं तेरी ओर कासए उम्मीद, बढ़ा रहे हैं तेरी ओर कासए उम्मीद, तू एक मिसरा कोई लाजवाल दे मौला, तू एक मिसरा कोई लाजवाल दे मौला। निगल के जाते हैं बिस्तर पे कैप्सूल में नींद, निगल के जाते हैं बिस्तर पे कैप्सूल में नींद, हमें भी शाम कोई तू निढाल दे मौला, हमें भी शाम कोई तू निढाल दे मौला। हमारा इश्क ये ख्वाहिश है कामयाब रहे, हमारा इश्क ये ख्वाहिश है कामयाब रहे, मजीद ये के जमाना मिसाल दे मौला, मजीद ये के जमाना मिसाल दे मौला। और इस शेर पर खुसूसी तवज्जो के, न जाने बेहिसी दिल का लिबास कैसे हुई, न जाने बेहिसी दिल का लिबास कैसे हुई, किया है तरके ताल्लुक मलाल दे मौला, किया है तरके ताल्लुक मलाल दे मौला। उसे चिराग बुझाने नहीं जलाने हैं, उसे चिराग बुझाने नहीं जलाने हैं, हवा के कान में ये बात डाल दे मौला, उसे चिराग बुझाने नहीं जलाने हैं, हवा के कान में ये बात डाल दे मौला। और एक गजल के चंद अशआर समाअत फरमा लें। मतला यूं अर्ज किया है कि चिराग चांद सितारे भी काम करते हैं, चिराग चांद सितारे भी काम करते हैं, मगर ये जुगनू अलग इंतजाम करते हैं, मगर ये जुगनू अलग इंतजाम करते हैं। और कलंदरों को भला ताज की जरूरत क्या, कलंदरों को भला ताज की जरूरत क्या, उन्हें तो शाह भी झुककर सलाम करते हैं, उन्हें तो शाह भी झुककर सलाम करते हैं। गुदाज हो तो सुनोगे जुबां मोहब्बत की, गुदाज हो तो सुनोगे जुबां मोहब्बत की, दरख्त फूल परिंदे कलाम करते हैं। गुदाज हो तो सुनोगे जुबां मोहब्बत की, दरख्त फूल परिंदे कलाम करते हैं। फंसा हुआ है ये दिल बालियों के घेरे में, फंसा हुआ है ये दिल बालियों के घेरे में, खनकते आपके कंगन गुलाम करते हैं, खनकते आपके कंगन गुलाम करते हैं। हम ही तो हैं तेरी आंखों में चलते फिरते हुए, हम ही तो हैं तेरी आंखों में चलते फिरते हुए, हम ही हैं जान जो दिल में कयाम करते हैं।

0: कमी है जान जो दिल में कयाम करते हैं।
1: कलामी शायर के तहत ये थे डॉक्टर सरफराज नवाज। सामेन, इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। मुआविन था मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपके समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
2: आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।
4: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे लोक संगीत।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 0542227658।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें
8: 0542227658।
4: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं रामनाथ और साथी। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये पचरा।

मजरूह की ये रचना आप सुन रहे थे गंगा की लहरें फिल्म से। आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीतकार चित्रगुप्त। कभी कभी ये फिल्म का नाम है जिसका ये गीत अब हम किशोर कुमार और लता मंगेशकर की ही आवाज़ में सुनवाएंगे। साहिर ने इस गीत को लिखा है, संगीत खय्याम का है।

कश्मीर की कली ये फिल्म का नाम है, जिसका ये गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। SH बिहारी ने इस गीत को लिखा है, OP नैयर का संगीत है।

हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे ससुराल फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, संगीतकार शंकर जयकिशन। और अब आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत है फिल्म हम दोनों से। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जयदेव ने।

0: विचारों की अभिव्यक्ति और अधिकार प्राप्ति का आधार सत्याग्रह।
1: आइए अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनाएं।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग का अनुसरण करें।
3: स्वच्छता ही सेवा, ध्येय वाक्य को अमल में लाएं, कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएं, अपना जीवन अमूल्य बनाएं। स्वच्छता अपनाएं, कार्यालय की गरिमा बढ़ाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। स्वच्छ होगा जब वातावरण, तभी होगा नवजागरण। आइए आज से ही स्वच्छता ही सेवा की मूल भावना को अपनाएं, जीवन में नव ऊर्जा का संचार करें। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कृति है। स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखो साफ, ये है हमारी सभ्यता की पहचान। स्वच्छता को आदत बनाए, रोज सफाई करना भूल न जाए। गांधी जी के सपनों का भारत हमें बनाना है। पूरा भारत स्वच्छ रहे, यही हमारा नारा है। स्वस्थ भविष्य के लिए आज से ही स्वच्छता अपनाएं। हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी तो हर सपना सच होगा। देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। जब देश का कोना कोना स्वच्छ रहेगा तब देश का हर एक बच्चा स्वस्थ रहेगा। अविरल गंगा, अविरल यमुना, स्वच्छ भारत संकल्प है अपना। न फैलाएंगे कूड़ा कचरा, स्वच्छ बनाएंगे भारत अपना।
4: दुनिया भर में देश हमारा स्वच्छता की पहचान बने, एक मिसाल ऐसी जिसका सारा जहां संवाद करे।

हम सभी का एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजियारा फैलाएंगे। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई।

अब आइए सुनते हैं खानदान फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है नक्श लैलपुरी ने, संगीत खय्याम का है।

जब जब फूल खिले, इस फिल्म का गीत अब आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

जब जब फूल खिले, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था कल्याण जी, आनंद जी ने। अब आइए सुनते हैं पड़ोसन फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

ये आवाज़ थी किशोर कुमार, मन्ना डे और साथियों की। फिल्म का नाम था पड़ोसन। इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत आर डी बर्मन का। अब आइए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत, शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है आम्रपाली, आवाज़ लता मंगेशकर की।

आम्रपाली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी का ने इस गीत को लिखा है, संगीत शंकर जय किशन का। और झंकार कार्यक्रम में अब आइए हम आपको सुनवाते हैं आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत, आवाज़ है आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। इस गीत को लिखा है साहिर ने, संगीत रवि का है।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
2: सुन जा आ ठंडी हवा, आ
0: ठंडी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। आज दिन है बुधवार और आज इस टाइम आप सुनते हैं ईमेल पर आधारित हमारा ये फरमाइशी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और स्वागत के साथ स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी किरण सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम का ये पहला गीत सौदागर फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत संगीत रविंद्र जैन का और पसंद आप सब श्रोताओं की। ग्राम कुंडावल तारापोस लाल रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग, रोली अदिति और माताजी निर्मला त्रिपाठी। अहमदनगर बजड़िया वाराणसी से बदरुद्दीन अंसारी, मुस्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद और मल्लू अंसारी। बटिंडा रोड डबली डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से हैं रामटेके यशोधरा, रामटेके श्रव्या, रामटेके पंजाब। आपने पंजाब से हमें ईमेल किया। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभ्रचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं तारा देवी विश्वकर्मा, विजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। चांदनी चौक गड़ई पंडरिया छत्तीसपुर से हैं पवन सेन, प्रभा सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र।

रौनक सेन। सादुल शहर राजस्थान से है राजकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से है नारायण गायकवाड़, साईं गायकवाड़। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से है अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत। सादुल शहर राजस्थान से है रामकुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। ग्राम भोइनापार टाडा बोर्ड, जिला बालोद। छत्तीसगढ़ से है देव नारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई और गंगाराम साहू। दिल्ली नानक गोई लोई से हैं राजेंद्र चटोलिया, उषा चटोलिया, कृष्णा चटोलिया, पूजा चटोलिया, कोमल चटोलिया, आरव चटोलिया और वृंदावन कॉलोनी माहेश्वर से हैं दीपक गुप्ता, सुनीता, विवेक, निशी और आशुतोष। टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांती, तृप्ता कुमारी थांती, डॉक्टर प्रियंका थांती, डॉक्टर प्रशांत थांती, डॉक्टर प्रियम थांती, बेबी वमिका और वाणी थांती। उमरी नादेड़ महाराष्ट्र से हैं बालू अप्पा घड़बले, ज्योति घड़बले, शिव सुंदर घड़बले और आराध्या घड़बले। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान। पिहरा बाजा झुमरी तलैया गिरिडीह से हैं शिवानी कुमार सिन्हा, प्रियंका कुमारी सिन्हा और अभय कुमार सनातनी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं सौदागर फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

सौदागर फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ है। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत है मुकेश कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म है धरती कहे पुकार के। बजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से SP जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, और ग्राम लसुड़िया तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहते हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से श्री त्रिभुवननाथ मालवी, अनमोल मालवी, श्लोक और समस्त मालवी परिवार। रजईपुर पोस्ट उगापुर भदोही से पप्पी यादव, ललित चंद यादव, और साथ में हैं बबलू यादव, सुनील यादव और लवकुश यादव। इंदिरा चौक दिल्ली से हैं अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम। साहू नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन मनवर और रोशनी मनवर के साथ साथ बेबी प्रियांशी। पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा। कस्बा बड़ाला जिला अम्बाला हरियाणा से हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ साथ गुरशब्द राहुल। दादरी गेट भवानी से हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा जी। चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। बटिंडा रोड मंडी डबलवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग।

चमन पार्क दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। अहमदनगर बजड़ीहा से हैं बदरुद्दीन अंसारी, मुश्ताक सुलेमानी, सलीम आजाद और मल्लू अंसारी। ऑरेंज सिटी नागपुर से हैं विठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राजे जाधव। और ग्राम चरौदा बाजार नवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू और ज्योति ठाकुर। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हैं बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बड़ी बहू रिमी और तनुश्री कुमारी, तनुश्री गुप्ता। राम रतन टॉकेज कुंडलवाड़ी से हैं गंगाधर सावनकर, साथ में है विजय लक्ष्मी सावनकर। बोरोपारा चौक बसबेरिया वेस्ट बंगाल से हैं मुन्नी देवी शाह और जयप्रकाश शाह। वसंत लाश साव जी हैं और साथ में हैं रजई पोस्ट उगापुर भदोही से पप्पी यादव, ललित यादव, ललितचंद यादव, बबलू यादव, सुनील यादव, लवकुश यादव। गांव डाकघर नियामताबाद जिंद हरियाणा से हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह और लवप्रीत कौर के साथ साथ कमरजीत कौर। तेलंगाना भोंगीर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन और यूसुफुद्दीन। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और ममता अरोड़ा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, राघव कुमार, आशा देवी और भानुप्रिया। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना और राहुल देव बर्मन का संगीत, और फरमाइश आप सब श्रोताओं की। किशनगंज बिहार से इस गीत को सुनना चाहते हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी और अनुराग मोहन। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकाश राजभर। परभरी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। धनौरा विटाली तहसील नांदुरा जिला बुलडाड़ा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल और सचिन पाटिल। तहसील रोड गंजुंडवारा से है के एच चिराही गुड़िया बेगम और वकील प्रेमी के साथ साथ अहमद जमीन। जेल रोड दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। डुमराव से हैं वलीउल्ला अंसारी। आर्यनगर कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार जंघेल, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता पटेल। नगर मुगल सराय से हैं सुनील कुमार सिंह। धमधा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। नई दिल्ली टैगोर गार्डन से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी दीवाना, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और समस्त छाबड़ा परिवार। मुक्कम पोस्ट फूल चिंचौली तालुका पंढरपुर से हैं जाकिर मुलाड़ी, सुमैया मुलाड़ी, सुबान मुलाड़ी, समीर मुलाड़ी, सलमा मुलाड़ी, मुमताज मुलाड़ी और दिलशाद मुलाड़ी। साथ में है नसीर मुलाड़ी, चाचा चाची और सारा मुलाड़ी परिवार। बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, सौर्य नामदेव। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। बेवरा संभलपुर छत्तीसगढ़ से हैं शिवदयाल वर्मा और नरोत्तम वर्मा, साथ में हैं तुषार वर्मा और वंशिका वर्मा। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज़ शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी। नगर पंचायत गंगापुर वार्ड नंबर 3 जवाहर नगर से हैं बुनकर आरजू बानो, आलिया बानो, नेहा बानो, सिमरन बानो, सना बानो, सानिया बानो, मनीषा बानो और गुड़िया बानो। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के लोग। तेलंगाना भोंगीर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया।

लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं शिवनाथ साहू, पंकज साहू। बाघामुड़ा कोमाखान छत्तीसगढ़ से हैं प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। धरहरा बजड़िया वाराणसी से हैं एनुल हक अंसारी, मल्लू अंसारी, सिराजुद्दीन अंसारी, एजाजुर रहमान अंसारी, सलीम आजाद अंसारी और इकबाल अंसारी। साथ में हैं श्रवण कुमार। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुन लेते हैं तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, जो आपके ईमेल संदेशों पर आधारित है। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी किरण सिंह। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं अभिजीत श्रेया घोषाल की आवाजें हैं। जावेद अख्तर का लिखा है गीत है, अनु मलिक का संगीत है और फिल्म का नाम है मैं खूना। ये गीत सुनना चाहते हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, पड़ी खर्चे, खुशी खर्चे, वंदना खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, एकता कॉलोनी रोहतक से ही सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट।

बाजार रोड मुंगेसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरू निशा, साविश्ता पलक लुबिना यश मंसूरी। पांडरकवड़ा से हैं अनिल बुरांडे उषा बुरांडे अनुश्री बुरांडे धनश्री बुरांडे। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छनुलाल श्रीवास अनिश पुष्पा श्रीवास रजन साहू और हेमंत नामदेव। बलहार शाह से हैं सूरज लोड़े प्राची लोड़े और एकलव्य लोड़े। कुम्हार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन उषा चंदन प्रतीक्षा चंदन प्रथमेश चंदर और पांडुरंग कुम्हार। मजनू का टीला से हैं कमल बालूजा मधु बालूजा उमंग मलिक आकांक्षा मलिक और माही मलिक। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन मयंक शर्मा। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढींगिया नमन ढींगिया। वटेंखेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टोमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। भानबेड़ा मंगवाल से हेमंत पटौदी उमंग पटौदी मोक्ष पटौदी भगत राम पटौदी और जयंती पटौदी। वार्ड नंबर एक पोफाली से हैं जयराम सिंगड़कर दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी।

पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजीता सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। कासम कॉलोनी सनावत से हैं यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीश खत्री, नूर मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना। शिवाजी चौक कटनी से हैं अनिल ताम्रकार, अमर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरु कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रंजन, रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और आपके मम्मी पापा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर जिला गाजीपुर से हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। मदरसा गेट मड़ियाहू जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा। ग्राम घूरो पोस्ट नियामताबाद से हैं वंश नारायण प्रजापति, सितारा देवी प्रजापति, रिया कुमारी प्रजापति, अनुराग प्रजापति, किशुन कुमार प्रजापति और आपके मम्मी पापा। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। तो आप सबकी फरमाइश पर ये गीत फिल्म मैं हूं ना से।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, दीदारे यार फिल्म का ये गीत है, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं पटियाला रोड गंज डोंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाज कुरैशी और बेबी अरिबा के साथ हबीबा। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से इस गीत को अब्दुल गफार डाबर, खुशनसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारी ने भी सुनना चाहा। पानी टंकी परेवा जौनपुर से इस गीत को रॉकी बम बम माना रिंकू, साबरपुर छत्तीसगढ़ से रितेश सेन और रितेश सेन ने भी सुनना चाहा। सदर बाजार मारवाड़ बिडाला राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने भी इस गीत की फरमाइश की। पिपरिया जिला कबीरधाम से कमल कांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता के साथ साथ अडार नांदगांव छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी भूपेश और दीपेश वर्मा ने भी इस गीत को सुनना चाहा। हलौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी, भोपालगढ़ राजस्थान से धीरेंद्र छिपा, कमिल छिपा और पूजा परिहार, पद्मा टॉकीज नेफानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह।

अवनी शाह और कमलाबेन शाह के साथ साथ राजेंद्र जी शाह। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वर्तरकर, शुभम वर्तरकर, पुन्नू वर्तरकर। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना गोंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि, महेश रामटेके और प्रतीक्षा गोंडा ने। ग्राम पंजौलिया जिला जालौन से हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक आलोकी चंसौलिया और संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। खैल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, लाडो कोयन मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं इस गीत को।

और अब आइए सुनते हैं राजा और रंग फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है और सुनना चाहते हैं आप सब। गम्हरिया जमशेदपुर से हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। बबरी बाजार चंदौली से हैं विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल। रामनगर कदमा जमशेदपुर से हैं मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल। चकिया बाजार चंदौली से हैं सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। रघुवीर नगर दिल्ली से हैं जफर, मोइजम शेख और फलकनाज। बेबी अलिशबा शेख भी इस गीत को आपके ही साथ सुनना चाहती हैं। इंद्रिया बिहार दिल्ली से हैं बेबी अंसारी, निशा, डब्लू अंसारी और जूही परी अंसारी। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से हैं सतेंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, आलोकी चंसोलिया। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। जिला बोड़ना आदलपुर गोंगावा से हैं संजय बामनिया, माया और कान्हा के साथ साथ कृष्णा। शिवाजी चौक नगर वडाली देशमुख महाराष्ट्र से हैं राजेश खोबड़खेरे, शिवसागर खोबड़खेरे, इंदिरा ताई खोबड़खेरे, सुनैना और दीपाली के साथ साथ स्वराज और तनुज। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से हैं जनार्दन पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, बबलू तिवारी, राम निवास सिंह कुशवाहा। बिहारीपुरम वीरम गांव से हैं जयशंकर तामोरिया, अजीता और प्रेम तामोरिया। रवि रेजिडेंसी राजकोट से हैं हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी। पलारी रोहासी छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू और जानकी साहू। जिला नांदेड़ यवतमाल महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। हीरमपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और समस्त विश्वकर्मा परिवार। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुनिए, फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से। ये गीत गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। मदन बाल का लिखा ये गीत है, जतिन ललित का संगीत है और सुनने की फरमाइश आई है ऊंची भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, मुकेश गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अनु गोस्वामी, मधु गोस्वामी और आशा गोस्वामी का। साथ में ग्राम बहुआरा पोस्ट दिलदार नगर जिला गाजीपुर से अकलू राम और केदार राम। ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। जेल रोड जालंधर से मीना कौर, मन्नत कौर और खंडवा से संदीप कौर और दुर्गा कौर ने भी इस गीत को सुनना चाहा। ग्राम व पोस बिरखेरा जिला हरिपुर मलियाना सरधना

जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन, साथ में है आदि जैन। तो आप सबकी फरमाइश पर ये गीत आइए सुन लेते हैं।

बता दें इसी गीत को वीरम गांव राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता ने भी सुनना चाहा। सहारनपुर से इसी गीत के लिए फरमाइश की थी एस के दुक्कर ने। ग्राम जाखौत से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक ने भी इस गीत को सुनना चाहा था।

और आज का फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम आज यहीं तक। कैसा लगे कार्यक्रम बताइएगा ज़रूर PKLD कार्यक्रम में अपने ईमेल संदेशों को भेजकर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
0: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी,
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी,
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही

0: प्रकृति भी हमारी चिंता करती है।
1: श्रोताओं
0: जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते?
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी जी जी आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज तरबूज ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए,
0: जी
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है,
5: तेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ
4: चलो
5: पे पानी होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है
5: दीदी?
6: कौन है
5: दीदी?
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
6: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा तरबूज खीरा ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो, मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
6: नहीं समझे?
5: नहीं।
6: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
2: अब गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
2: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
2: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो, चलते हैं।
2: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
2: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो,

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
1: हाँ बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
4: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: हाँ,
5: लाओ अम्मा,
3: लो। गर्मी अम्मा, हाँ? आप बहुत

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: Sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्ट आज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो।

0: ए कौन हो तुम? रुको रुको, जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
1: कौन हो तुम?
2: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है, अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
1: क्या सूचना?
2: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
1: अच्छा यहीं रुको, चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
2: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
3: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
2: सर हम एक चरवाया है।
3: आगे बताओ।
2: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
3: क्या देखा तुमने?
2: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
3: क्या?
2: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ
3: कितने लोग रहे होंगे?
2: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
3: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने, हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
2: साहब मेरा गाँव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
4: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
5: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
4: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
5: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
4: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
5: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
4: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यंभावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
5: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी

0: चढ़ाई को चढ़ना।
1: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
2: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
1: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
3: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
1: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
4: जी, यस सर।
1: ये मेज के चारों ओर।
3: जी सर।
4: उधर से। हाँ
1: जी। तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
3: जी सर।
1: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
3: जी सर।
1: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
3: जी सर।
1: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
2: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
5: यस सर।
1: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
3: जी जी सर।
1: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
3: सर, जी सर।
1: कोई शक?
3: नो सर।
1: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
5: यस सर।
4: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
6: धीमे बोलो, धीमे।
4: जी,
6: उन्हें पता ना चल जाए।
4: जी सर।
6: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
4: जी।
6: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
4: ठीक है सर।
6: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
4: जी सर। जी सर।
6: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
4: जी सर।
6: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे, बहुत धीरे,
4: धीरे।
6: दबे बहुत, दबे। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
4: रेंगेंगे। जी सर।
6: कोई भी उठकर नहीं चाहेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
4: हाँ सर।
6: एवरीबॉडी रेडी?
3: यस सर।
4: यस सर।
6: अब हथगोला फेंको।
1: गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर

0: योगेंद्र सिंह यादव।
1: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और श्रोताओ अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप सुगम संगीत।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए
8: 0542227658।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें
9: 0542227658।
5: प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं डॉक्टर सुचि उपाध्याय। आरंभ में आपके स्वर में प्रस्तुत है मीराबाई की ये रचना।

अभी आप सुन रहे थे मीराबाई की ये रचना, कलाकार सुचेत उपाध्याय। इनके स्वर में कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं तुलसीदास की ये रचना।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज की कलाकार डॉक्टर सुचि उपाध्याय। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रही हैं। आइए सुनिए शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है गायन। कलाकार हैं अक्षय प्रताप सिंह, राग है पट्टदीप। आपके साथ तबले पर संगति ज्ञान स्वरूप मुखर्जी की।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थे अक्षय प्रताप सिंह, राग था पट्टदेव। आपके साथ तबले पर संगति ज्ञान स्वरूप मुखर्जी की थी। शास्त्रीय संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास

0: में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगा स्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना और कार्यक्रम विवरण। पहले आइए दे दें आपको खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये पहली सूचना कार्यालय पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार भव्या गौतम, जो पुत्री है निरुपमा भारती की, निवासी है केशरीपुर थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी की। भव्या की उम्र है 18 वर्ष, रंग गोरा और लंबाई 5 फीट के करीब है, चेहरा गोल है। ये 19 मार्च 2026 से लापता है। घटना वाले दिन आपका पहनावा काले रंग का सलवार कुर्ता था। विशेष पहचान के रूप में आपके पैर की दाहिनी उंगली में 6 उंगलियां हैं।

0: यदि इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिले तो कृपया कर अपने नजदीकी थाना या थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना देने का कष्ट करें। और ये अगली सूचना है थाना शाहगंज जिला जौनपुर से। इसके अनुसार आमिर हमजा जो पुत्र हैं जका अल्लाह के निवासी हैं वद्दोपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर के। आमिर हमजा की उम्र है 22 वर्ष, लंबाई 5 फुट 7 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। ये 24 मार्च सन 2026 शाम 6 बजे से ही लापता हैं। घटना वाले दिन आपका पहनावा कुछ इस प्रकार था, नीले रंग का टी शर्ट और काले रंग का लोअर। यदि इनके संबंध में आपको कोई सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना शाहगंज जनपद जौनपुर को सूचना देने का कष्ट करें। और ये सूचना कार्यालय उपायुक्त तो अपराध कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार कुमारी शिखा सिंह पुत्री मुकेश सिंह निवासी खरगनपुर थाना बड़ा गांव कमिश्नरेट वाराणसी। कुमारी शिखा सिंह की उम्र है 17 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई 5 फुट 5 इंच और चेहरा गोल है। ये 8 दिसंबर 2023 से लापता हैं। घटना वाले दिन आपका पहनावा मैरून रंग का कुर्ता, सफ़ेद रंग की सलवार और सफ़ेद रंग का दुपट्टा था। यदि आपके संबंध में कोई भी सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना बड़ा गांव कमिश्नरेट वाराणसी को सूचना देने का कष्ट करें। खोए व्यक्तियों के संबंध में आज की ये सूचना अब यहीं संपन्न होती है। और अब कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए दे दें संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर सुनिएगा सितार वादन। कलाकार होंगे पंडित निखिल बैनर्जी। रात 10 बजे सुनिएगा नाटक तस्वीर, लेखक दिनेश भारती, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर वी के श्रीवास्तव। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हम लेकर आएंगे रात 9:30 पर। और रूमी दत्ता की आवाज में गाई चंद गजलों का आनंद लीजिए रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में। फैमिली द फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यूज, ये अंग्रेजी वार्ता सुनिएगा शाम 7 बजे अंग्रेजी कार्यक्रम में। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई चर्चा के साथ साथ सुनेंगे बातचीत, और बातचीत के अलावा सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगे रामनाथ और साथी। इनके गाए लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में युवा साथी शाम 5:15 पर सुनेंगे आज की बात, मार्गदर्शन में अर्थशास्त्र की पढ़ाई और रोजगार के अवसर। साथ ही यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन, सूचना जानकारी और फिल्म संगीत भी। दिन में 2:30 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और अब से थोड़ी देर बाद यानी दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसमें चर्चा बातचीत होगी। बातचीत का विषय होगा आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास। वार्ताकार होंगी अलका पांडे। कार्यक्रम विवरण में ये थी संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:10 होने वाले हैं। इलाकाई खबरों का प्रसारण होगा लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: श्रोणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में ईंधन की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को लेकर रियासत के लोगों से वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने के साथ ही कई अहम हिदायत दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक

0: परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पुलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कक्ष से अरुण।
1: मरकजी जांच एजेंसी CBI ने नीट इम्तिहान 2026 के मुबैना पेपर लीक होने के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। इस मामले में मुल्क भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने आला तालीम महकमे की तहरीर की बुनियाद पर मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए CBI की खसूसी टीमें मुख्तलिफ मकामात पर भेजी गई हैं। इस दरमियान NTA ने वाजह किया है कि दोबारा इम्तिहान के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।
2: NTA ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्हें आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। मौत की वजह अभी वाजह नहीं हुई है। प्रतीक यादव की अहलिया अपर्णा बिष्ट यादव इस वक्त रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर हैं। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-आला मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर अपर्णा यादव के शौहर प्रतीक यादव का अचानक इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। भारत कल से शुरू होने वाले दो रोज़ा ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास की मेज़बानी करेगा। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास में ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद शिरकत करेंगे। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों को जदीद बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी के कायम का ऐलान किया है। हुकूमत से इस मकसद के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए मख्तस करने को कहा गया है। कमेटी 31 अगस्त तक वज़ीर आज़म की इक्तसादी मशावरती काउंसिल के रुकन संजीव सान्याल को अपने तफसीली नतायज और मतलूबा फंडिंग की तफसीलात पेश करेगी। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदादी ड्यूटी बढ़ा दी है, जो आज से लागू हो गई है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर दरामदादी ड्यूटी 5% और प्लेटिनम पर 5.4% होगी। मजीद बरां तामील के उसूलों के तहत कीमती धातों में इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट पर बरामदादी ड्यूटी 4.35% होगी। रियासत के काउंसिल और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूलों में आज से इंडियन लैंग्वेज समर कैंप 2026 शुरू हो रहा है। ये खसूसी कैंप वजारत तालीम हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक मुनक्किद किया जा रहा है, जो आज से 19 मई 2026 तक जारी रहेगा। कैंप का इफ्तिताह मरकजी वजीर तालीम करेंगे। रियासत के बुनियादी तालीम के वजीर संदीप सिंह ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक बच्चों को भारतीय जबानों, लोक रवायात और सकाफती इकदार से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कैंप के जरिए तलबा को अपनी मादरी जबान और भारतीय जबानों को भरपूर विरसे को समझने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।

0: मीडी वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स डीटीएच डीआरएम, 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। थोड़ी देर में बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
1: मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी।
2: हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।

0: रोमांस तो हमारे जमाने में होता था,
1: पेमेंट भी उसी जमाने का है।
2: अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखिए, नए जमाने इजी सेफ एंड फास्ट है।
1: हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने?
3: ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है।
1: RBI कहता है
4: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
5: और उनको भी सिखाओ।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
8: 0542227658।
6: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ, 0542227658।
9: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
10: सखियों के साथ,
11: सखियों के बाद,
10: सखियों के जज्बात,
11: गृहलक्ष्मी।
12: कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को मेरा यानी अंजना का प्यार भरा नमस्कार, और सिमी आपको भी मेरा नमस्कार।
13: अंजना आपको भी मेरा नमस्कार, और मेरी सभी प्यारी सखियों को भी मेरा यानी सिमी का बहुत बहुत नमस्कार।
12: सिमी कैसी हैं आप?
13: भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कि आप इस गर्मी के मौसम में कैसी हैं?
12: भाई गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ मैं अच्छी हूँ, और उम्मीद है कि हमारी सखियाँ भी बहुत अच्छी होंगी।
13: सखियाँ तो अच्छी होंगी, क्योंकि अब हम अपनी सखियों से बातें करने जो आ गए हैं। और अंजना जब हम अपनी सखियों से बातें करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें खुशी भी बहुत मिलती है। लेकिन जब भी हम कोई काम लीक से हटकर करते हैं या फिर करने की सोचते हैं ना, तो लोगों के साथ साथ हम भी यही सोचते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए या नहीं, चार लोग सुनेंगे देखेंगे तो क्या कहेंगे।
12: सिमी ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, हमें अपने जीवन में जो सही लगे और जो करने का मन हो उसे कर लेना चाहिए, लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे।
13: बिल्कुल, दूसरों के सामने जज होने के डर से हमें अपनी पसंद का काम क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा ना सोचे, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो अपनी पसंद और अपनी इच्छाओं को भूलते ही चले जाएंगे। और फिर ये होता है ना कि कई बार दूसरों की सोच सोच के हम दूसरों की पसंद का काम नहीं करते, अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते, और कभी कभी तो क्या होता है ना कि उनकी गलत बात सुनकर भी चुप रह जाते हैं कि लोगों को क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे।
12: बिल्कुल, अक्सर हम अपनी खुशी और अपने लक्ष्यों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डर होता है समाज का, हमारे आस पड़ोस का, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो सखियों जब आप दूसरों की परवाह करना छोड़ देती है ना, तो आपका पूरा ध्यान आपके काम और आपकी पर्सनैलिटी को निखारने पर होता है। आप बस इतना सोचिए, आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने वैल्यूज के प्रति सच्ची होती है, ना कि दूसरों की उम्मीदों के प्रति।
13: बिल्कुल अंजना, क्योंकि अगर हम दूसरों की बातें सुनकर उनकी बातों की परवाह करेंगे ना, तो हमारा व्यक्तित्व भी बदल जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी खुशियां और जो सपने हमने कब से सोच रखे थे जिन्हें पूरा करना था, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, हम मानसिक रूप से परेशान होने लगेंगे और तनावग्रस्त हो जाएंगे। इससे हमारे काम करने का तरीका तो प्रभावित हो गई, धीरे धीरे हमारी रचनात्मकता भी खत्म हो जाएगी, और फिर एक दिन क्या होगा कि आत्मविश्वास की कमी की वजह से ना हम कोई भी नया काम करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे।
12: बिल्कुल सखियों, तो लोगों की चिंता छोड़कर अपनी इच्छाओं को, अपने लक्ष्य को पूरा करिए जो आपने सोचा था, ताकि कल को पछतावा न हो कि काश मैंने जो सोचा था कर लिया होता।
13: बिल्कुल, मैं लोगों की परवाह करते हुए उनके बारे में सोचते हुए अपने फैसलों को क्यों लेना है ना, क्योंकि हम जैसे हैं उसी रूप में खुद को स्वीकार करें, अपनी भावनाओं को महत्व दें, कोई भी काम करें पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ करें, और फिर परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों।

0: रिजल्ट चाहे अच्छा हो या बुरा, अपने फैसले पे अडिग रहें।
1: बिल्कुल, जीवन में काश किया होता ये शब्द रहने ही मत दीजिए और दिल खोल कर अपने जीवन को जिए। जो आप चाहें उसे करिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है और इसके फैसले भी आपके होने चाहिए।
0: बिल्कुल, दूसरों के कहने से, दूसरों की बातें सुनकर हमें अपने जीवन का निर्धारण नहीं करना चाहिए ना। हमें अपना जीवन कैसे जीना है, अपने सपनों को कैसे पूरा करना है, लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे करनी है, इसका फैसला हम स्वयं लेंगे ना। क्योंकि अपनी क्षमता के बारे में, अपने बारे में खुद से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता ना। दूसरे क्या बताएंगे कि हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं। और फिर अंजना, काम हम अच्छा करें या बुरा, रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव, लोग तो कमेंट करते हैं और करते ही रहेंगे हमेशा।
1: बिल्कुल सही, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपना जीवन कितनी ईमानदारी और खुशी के साथ जिया। तो दुनिया भर के बेकार की बातों को छोड़िए और अपने काम पर फोकस करिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि लोगों का काम तो है कहना।

0: बिल्कुल सखियो, लोगों के कहने पे नहीं अपनी योग्यता पर और स्वयं पर भरोसा रखें। और सखियो, आज अंग्रेजी साहित्य के उपन्यासकार आर के नारायण की पुण्यतिथि भी है। इनका निधन 13 मई 2001 को चेन्नई में हुआ था। इनकी रचनाओं में भारतीय समाज का पारिवारिक जीवन, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है।
1: और स्वामी एंड फ्रेंड्स और द गाइड जैसी कालजयी रचनाओं में सादगीपूर्ण शैली और मानवीय संवेदनाओं के चित्रण के लिए साहित्य अकेडमी और पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया इन्हें।
0: और ये सबसे अधिक प्रसिद्धि इन्हें मिली इनके काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर मालगुड़ी पर आधारित कहानियों पर, जो मालगुड़ी डेज के नाम से टेलीविजन श्रृंखला भी इस पर बनी है, जो मानवीय कमजोरियों को बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में दिखाते हैं।
1: और इसलिए आर के नारायण की कहानियां बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक हैं।
0: और अंजना, आज की आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य भी रचनात्मकता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है, ताकि सभी को रोजगार मिल सके।
1: बिल्कुल, ताकि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक और दक्षता भी बढ़े और युवा वर्ग आत्मनिर्भर बन सके।
0: तो इसी विषय पर अपनी सखियों को एक वार्ता सुनवा देते हैं। वार्ता का विषय है आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास। वार्ताकार हैं अलका पांडे।
2: और कौशल विकास समाज के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, क्योंकि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया न होकर व्यक्ति के समग्र विकास और समाज की बेहतरी का एक अनिवार्य साधन भी है। वहीं कौशल विकास व्यक्ति को व्यवहारिक दक्षता और रोजगार के लिए सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी प्रगति को देखते हुए शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास का महत्व और अधिक बढ़ गया है। यदि शिक्षा को सही दिशा में विकसित करके कौशल विकास से जोड़ा जाए, तो यह किसी भी देश की आधुनिक सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास का आधार है, और इसमें हुनर का होना उतना ही आवश्यक है जितना अक्षरों का ज्ञान। आधुनिक शिक्षा में केवल परंपरागत ज्ञान अर्जित करना नहीं है, वरन यह नवीनतम तकनीकों, नवाचारों और व्यवहारिक कौशलों से युक्त एक समग्र प्रणाली है। यह शिक्षा छात्रों के विश्लेषणात्मक सोच, समस्या समाधान और उसमें रचनात्मकता विकसित करने में भी सहयोग करती है। आधुनिक शिक्षा किताबों की दुनिया के आगे से जाकर डिजिटल शिक्षण, ऑनलाइन संसाधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक विकसित हो चुकी है। अगर हम आधुनिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करें, तो इसका उद्देश्य बहुत व्यापक है, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर केंद्रित होता है। यह सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित न होकर व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर आश्रित होता है। आज के डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल करने की क्षमता को विकसित करने की भी आवश्यकता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। छात्रों को नए विचारों को सीखने और नई तकनीकों से विकसित होने के लिए लालायित होना भी आज की शिक्षा की आवश्यकता है। कहा जाता है कि कितना भी आसमान पर उड़ो, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहने से व्यक्ति में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का रिफ्लेक्शन ही नहीं होता है, बल्कि वह समाज की बेहतरी का साधन भी बन जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली पाठ्य पुस्तकों की सीमा से बाहर जाकर बहुआयामी और समावेशी हो गई है। इसका उद्देश्य छात्रों को न केवल डिग्री देना, बल्कि उन्हें तकनीकी, सामाजिक, नैतिक, व्यवसायिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना भी है। आजकल आधुनिक शिक्षा प्रणाली में विभिन्न तरीके शामिल हैं, जो इसे प्रभावी और व्यवहारिक बनाते हैं। ये घटक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों को स्वीकार करने और उसके लिए तैयार रहने में मदद करते हैं। विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों से आधुनिक शिक्षा के तरीके को समझा जा सकता है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा कालांतर से चली आ रही शिक्षा प्रणाली है, जिसमें व्यवस्थित और संस्थागत शिक्षा होती है, जिसे छात्र शिक्षा संस्थानों से प्राप्त करते हैं, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है।

में डिग्री, प्रमाण पत्र आदि प्रदान किए जाते हैं। ये औपचारिक शिक्षा की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत अनुभव, समाज, परिवार और अन्य स्रोतों से जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, जिसमें किसी संस्था का सहयोग नहीं होता, जैसे माता पिता से मिली शिक्षा, काम करने का अनुभव या समाज से मिला ज्ञान, जिसे हम अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। आधुनिक शिक्षा में यह बात बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है, क्योंकि जिन बातों को हम अभ्यास से सीखते हैं वह हमें कभी भूलती नहीं है। आधुनिक शिक्षा में शिक्षा के और भी आयाम हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन कोर्स, वयस्क शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मल्टीडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम समय की मांग है, जिसमें विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विषयों के साथ साथ कंप्यूटर, पर्यावरण, कला, खेल और नैतिक शिक्षा भी आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए इन सभी का ज्ञान आवश्यक है। इसी को आधार बनाकर नई शिक्षा नीति में रचनात्मकता और कौशल विकास को बराबर प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों के स्थान पर प्रायोगिक और समस्या आधारित शिक्षण पद्धति पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसके माध्यमों के रूप में स्मार्ट क्लास, ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट और ग्रुप लर्निंग को विशेष महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि कार्यस्थलों पर व्यक्तियों और उनके बीच के संवाद में यह शिक्षा प्रणाली बहुत उपयोगी है। नई शिक्षा प्रणाली में मल्टीपल असेसमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट, मौखिक और व्यवहारिक शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है। पिछले वर्षों की अंक पद्धति आधारित परीक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं, क्योंकि अंकों की कमी से छात्र मानसिक दबाव में आकर कभी कभी आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठाने लगे हैं। आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज स्तर पर ही तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और अन्य सरकारी योजनाएं कौशल विकास को भरपूर बढ़ावा दे रही हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विदेशी विश्वविद्यालयों से भारत शैक्षिक समझौतों के द्वारा स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम और ऑनलाइन इंटरनेशनल कोर्सेज की सुविधा भी दे रहा है। साथ साथ समावेशी शिक्षा पर भी पूरा बल दिया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षण विधियों को अपनाया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया है, जिसके तहत IIT, IIM, IISc और अन्य संस्थानों में शोध पर विशेष बल दिया जा रहा है। इन सबके साथ आधुनिक शिक्षा प्रणाली में योग, ध्यान, खेलकूद और मानसिक जागरूकता पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति 2020 में व्यापक परिवर्तन किया गया है, जिसमें 10+2 की जगह 5+3+3+4 प्रणाली लागू की गई है, जिसका प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में समावेश किया गया है। विषयों के चयन में भी अब विज्ञान, कला और वाणिज्य का मिश्रण किया जा सकता है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी मजबूत बनाने के लिए NDEAR और NPTEL जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। अगर हम आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की तुलना प्राचीन कालीन गुरुकुल पद्धति से करें, तो उस समय भी विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शास्त्रों के साथ साथ युद्ध कला, वेदाध्ययन, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन के साथ अन्य व्यवहारिक शिक्षा भी प्राप्त करते थे, जिससे व्यक्ति का नैतिक, आध्यात्मिक और बेहतर चरित्र निर्माण किया जा सके। गुरु शिष्य परंपरा में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ जीवनोपयोगी कौशल विकसित करना भी था। गुरुकुल प्रणाली का जीवन नैतिकता, सह अस्तित्व, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन पर आधारित था, जिसमें जीवन यापन के लिए विद्यार्थी खेती करना, शस्त्रों का निर्माण करना और भोजन बनाना जैसे कार्य स्वयं करते थे। गुरुकुल में विद्यार्थी आत्मनिर्भर थे और जैसे आज के समय में स्टार्टअप कल्चर, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, वैसे ही कार्य

0: प्राचीन काल में भी गुरुकुल पद्धति में किया जाता था। आज की आवश्यकता है कि गुरुकुल प्रणाली के श्रेष्ठ तत्वों को आधुनिक शिक्षा में समाहित करके व्यक्ति का समग्र विकास किया जा सके। प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह आजीविका प्रधान थी, क्योंकि विभिन्न वर्ण अपने कार्यों से ही अपनी योग्यता सिद्ध करते थे। कौशल विकास के उल्लेख हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त उपकरणों, गहनों, प्रसाधन के साधनों और उत्कृष्ट मूर्ति कला में मिलते हैं। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से प्रेरणा लेकर पारंपरिक कृषि में उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करके कृषि को व्यवसायिक कृषि में परिवर्तित किया जा सकता है। किसानों को डिजिटल उपकरणों जैसे जैविक खेती और सिंचाई की तकनीकों से परिचित कराकर कृषि को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। नए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए किसान अपनी उपज का सही मोल पा सकता है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई बुनाई, डेयरी फार्म जैसे कार्यों द्वारा किसानों के साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार किए जा सकते हैं। भारत में कौशल विकास के लिए कई सरकारी योजनाएं और निजी संस्थाएं कार्यरत हैं, लेकिन अभी यहाँ अन्य देशों की तुलना में कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें हम अन्य देशों की कौशल विकास योजनाओं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जर्मनी का न्यू वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल, जिसमें शिक्षा और उद्योगों के बीच गहरा तालमेल दिखता है। इस ट्रेनिंग में 70% से अधिक युवा किसी न किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं, जिसमें छात्रों का 50% समय कक्षा में और 50% व्यावसायिक प्रशिक्षण में जाता है। अमेरिका में सामुदायिक कॉलेज और व्यावसायिक संस्थान उद्योगों के साथ मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। जापान के काइजन और ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत श्रमिकों को कंपनियों द्वारा ही प्रशिक्षित किया जाता है। काइजन प्रणाली छोटे-छोटे सुधारों के माध्यम से दक्षता बढ़ाने पर जोर देती है। इसी तरह दक्षिण कोरिया, चाइना आदि देशों में कौशल विकास के लिए विविध योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास को विकसित किया जा रहा है। भारत में कौशल विकास को प्रभावी रूप से चलाने के लिए यहाँ सरकार को जर्मनी के न्यू ट्रेनिंग मॉडल, अमेरिकन इंडस्ट्रियल अप्रोच, जापान की काइजन पद्धति, दक्षिण कोरिया की स्टील और आरएनडी तथा चीन की तरह सरकारी नीतियों को उद्योगों के अनुरूप बनाकर कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत अगर इस तरह की नीतियों को अपनाता है तो आने वाले समय में स्किल्ड वैश्विक परिदृश्य में स्थान बना सकता है। हालांकि भारत में आधुनिक शिक्षा के माध्यम से व्यापक कौशल विकास योजनाएं बनाई गई हैं। तकनीकी कौशल में प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग तथा एआई आदि को समाहित किया गया है। सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क तथा समस्या समाधान, औद्योगिक प्रशिक्षण, मैकेनिक तथा फैशन डिजाइनिंग आदि शामिल किए गए हैं। भारत सरकार ने बहुत सारी कौशल विकास योजनाएं आरंभ की हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, स्किल इंडिया अभियान तथा अटल नवाचार मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन योजनाओं के समक्ष बहुत सी चुनौतियां भी हैं, जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर असमान है, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, तकनीकी संसाधनों का अभाव आदि बड़ी चुनौतियां हैं। आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास केवल औपचारिक डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के वास्तविक दुनिया की समस्याओं से निपटने और समाज में योगदान देने के लिए तैयार करते हैं। शिक्षा और कौशल का समुचित तालमेल न केवल रोजगार के अवसर बढ़ा सकता है, बल्कि समाज को भी सशक्त बना सकता है। भारत जैसे देश में जहाँ युवा आबादी अधिक है, आधुनिक शिक्षा और कौशल का ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे भविष्य के लिए एक सक्षम और आत्मनिर्भर समाज बनाया जा सके। शिक्षा और कौशल विकास का सही मिश्रण भविष्य के लिए सफलता की कुंजी है।
1: सखियों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास। वार्ताकार थी अलका पांडे।
2: सखियों, गर्मियों में हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए जो प्राकृतिक रूप से हमें ठंडक दे, और एक ऐसी ही प्राकृतिक औषधि है गोंद कतीरा।
1: और ये गर्मियों के मौसम के लिए किसी वरदान से भी कम नहीं है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने में, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने

0: मदद करता है। और सखियों, और तो और ये शरीर के तापमान को भी कम रखता है और लू से भी बचाता है।
1: और साथ ही ये कब्ज, एसिडिटी और से भी हमारे को बहुत फायदेमंद होता है। और सखियों, गर्मी में अक्सर नसें फूटने की समस्या हो जाती है, तो इसे सुबह खाली पेट और दोपहर में भोजन पहले से अगर खाएं ना, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बस इसके लिए 1 या 2 चम्मच कतीरे को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो कर रख दे, ये फूल कर जेली जैसा हो जाएगा। अब इस भीगे हुए कतीरे को आप पानी सहित भी पी सकते हैं, या फिर लस्सी, नींबू पानी या शरबत या दूध के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं, क्योंकि गोंद कतीरा शरीर के विषैले तत्वों को भी बाहर निकालता है।
0: लेकिन सखियों, गोंद कतीरा लेने के बाद दिन भर में खूब पानी पिए, क्योंकि ये शरीर में पानी सोखता है, तो पानी की मात्रा कम न होने दें और बिना भिगोए भी इसका सेवन न करें।
1: और सखियों, अब अपने मूड को भी थोड़ा सा ठंडा करते हुए, कूल करते हुए एक मीठा सा गीत सुन लेते हैं।

0: और सखियो, मूड के साथ साथ अपने गर्मियों के इस मौसम में अपने कपड़ों को भी ऐसे चयन करें जो आरामदायक हो, शरीर का पसीना तो सोखें, साथ ही हमारी त्वचा को भी ठंडक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल, इस गर्मी के मौसम में कॉटन, लिनेन, मलमल, खादी, रेयॉन, आप ये कपड़े पहन सकती हैं ताकि ये पसीना सोखे, है ना?
0: हल्के रंगों के ढीले ढाले कपड़े भी इस समय ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनमें गर्मी कम लगती है और ये पसीना भी जल्दी सूख जाता है। और साथ ही सखियो, इस समय टाइट कपड़े पहनने से भी बचें, क्योंकि इन्हें पहनने से ना त्वचा में जलन और घमौड़ियां भी हो सकती हैं।
1: बिल्कुल सखी, और गर्मियों के मौसम में हल्का साफ सुथरा पहनावा पहनने के साथ ही ढेर सारा पानी पीजिए, हरी साग सब्जियां खाइए और मौसमी फलों का भी सेवन करिए, जिससे कि आप अंदर से भी तरोताजा महसूस करें और स्वस्थ रहें।
0: हाँ, और धूप में निकलते समय आंखों की सुरक्षा के लिए भी धूप का चश्मा जरूर लगाएं, ताकि और साथ ही सिर पर भी किसी कपड़े या टोपी को पहनकर ही कवर करके बाहर निकलें।
1: और इसके साथ सिमी घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं।
0: तो अपनी सखियों से अनुमति लेते हैं और बोलते हैं
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। सखियों के साथ,
2: सखियों के बाद,
3: सखियों के जज्बात,
4: गृह लक्ष्मी।
5: अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनिए लोक संगीत। आज के कलाकार हैं रामनाथ और साथी। इस कार्यक्रम के आरंभ में आपके स्वर में सबसे पहले प्रस्तुत है ये सोठी।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज के कलाकार रामनाथ साथी। अभी आपने सुना आपके स्वर में सोठी सोठी के बाद कार्यक्रम में प्रस्तुत है ये खेमटा।

0: अभी आप सुन रही थी निर्गुण। कलाकार थे रामनाथ और साथी। इस निर्गुण के साथ ही आज का ये लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इनका गाया लोकगीत आप कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर भी सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस थोड़ी घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं मिड डे न्यूज़ दिल्ली केंद्र से।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK government wins floor test in State Assembly with comfortable majority. N. Rangaswamy sworn as Chief Minister of Puducherry for a record 5th term. Sentence states intensify fuel-saving measures following Prime Minister Narendra Modi's appeal amid global energy crisis triggered by West Asia conflict. CBSE declares all India senior secondary class 12th results. Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%. IMD says monsoon likely to arrive.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मानसून जल्दी

0: आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। CBI ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। CBI ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ NDPS अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,800

121 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अधिक संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, प्रस्तुति आशुतोष शास्त्री की।

दोस्तों, समाज तेजी से बदल रहा है। पुरानी सामाजिक मान्यताएं टूट रही हैं और उतनी ही तेजी से नई सृजित भी हो रही हैं। परिवार ही नहीं, विवाह नाम की संस्था भी नया रूप और आकार ले रही है। ऐसे में नवदंपतियों की संख्या बढ़ रही है जो किसी अनजान बच्चे को अपनाकर उतना ही लाड़ प्यार दे रहे हैं जितना कोई अपनी जैविक संतान को देता है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे आधुनिक दौर की उन यशोदाओं के बारे में, उन यशोदा मैया के बारे में जिन्होंने अपनी ममता, अपने त्याग और अपने वात्सल्य भाव से नई कहानी लिखी है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ के इस हिस्से के साथ। 9 महीने कोख में रखकर जन्म नहीं दिया तो क्या, ममता तो माँ की ही है। शिक्षा विभाग में कार्यरत चंडीगढ़ की प्रतिभा वर्मा 11 वर्षों से अपना बच्चा पैदा करने के बजाय जेठानी के बच्चों को माँ बनकर पाल रही हैं। वे बताती हैं कि उनके पति राजेश के साथ जब उनकी सगाई हुई उसके बाद ही उनकी जेठानी अपने 2 बच्चों 7 वर्ष के कीर्ति और 9 वर्ष के कार्तिक को छोड़कर गुजर गयी। इसके बाद ये बच्चे उनके पति के साथ चंडीगढ़ में रह रहे थे। शादी के बाद इन बच्चों ने कभी भी प्रतिभा को चाची नहीं समझा। उनकी छोटी छोटी शरारतें और जिद ने भी प्रतिभा को कभी अपने बच्चे की कमी महसूस नहीं होने दी। दोनों बच्चे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के प्रतिभा के साथ रहते हैं और उन्हें माँ और पिता का एहसास कराते हैं। प्रतिभा बताती हैं कि वर्ष 2013 में कीर्ति और कार्तिक की माँ का देहांत हो गया था। इसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी नहीं की। पीजीआई में कार्यरत राजेश दोनों बच्चों को उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित गाँव से चंडीगढ़ ले आए। प्रतिभा का सपना है कि वे बच्चों के सपनों को पूरा करें और प्रतिभा ने उन्हें उनकी पसंद के अनुसार विषय पढ़ने की आजादी दी है और भविष्य में भी उनके सपनों को पूरा करने में सहयोग देने का वादा किया है।

दोस्तों, आज के समय में जब रिश्तों में दरारें बढ़ रही हैं और अपने ही बेगाने हो जाते हैं, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सबसे परे हैं। और ये कहानी है सीधी जिले के बड़खरा गांव में एक ऐसी ही ममतामयी माँ की, जिन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर तीन अनाथ बच्चों को अपनी ममता का आंचल दिया। सरोज सिंह ने अपने पति पुष्पराज सिंह के साथ मिलकर इन बच्चों का लालन पालन किया, इन्हें पढ़ाया लिखाया और एक बेटी का ब्याह भी कराया। आज से करीब 20 वर्ष पहले जब इन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई, तो परिवार और समाज के लोग उन्हें अपनाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में सरोज और उनके पति पुष्पराज ने इन बच्चों को अपने घर लाकर उनकी देखभाल शुरू की। उन्होंने सामाजिक भेदभाव की परवाह नहीं की और बच्चों को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। सरोज सिंह बताती हैं कि उन दिनों समाज में कई तरह की बातें होती थी, लेकिन उन्होंने और उनके पति ने इन बातों की परवाह नहीं की। सरोज ने ललिता और मोनू का दाखिला शासकीय स्कूलों में कराया। उनका सपना था कि वे बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना सकें। सरोज और पुष्पराज सिंह के अपने बच्चे भी इन्हीं बच्चों के साथ पले बढ़े। सरोज ने इन बच्चों को माँ की तरह प्यार दिया, जबकि पुष्पराज सिंह ने पिता का हर फर्ज निभाया। पिछले 20 वर्षों से ये सभी एक ही घर आंगन में हंसी खुशी से रह रहे हैं। सरोज सिंह बताती हैं कि ललिता उनकी घर की प्यारी बेटी है, सबका ख्याल रखना उसकी आदत में शामिल है। 5 मई को उसका विवाह हुआ, जिससे घर का आंगन सूना लगने लगा। ये बताते हुए सरोज की आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों ने कभी भी उन्हें परेशान नहीं किया और बड़ी बेटी के जाने से घर सूना सूना सा लग रहा है।

और आइए श्रोताओं, अब आपको बताते हैं झारखंड के रामगढ़ के डिवाइन ओमकार अनाथ आश्रय में पल रहे बच्चों के बारे में। ममता, गीता, अंजना जैसी माताएं हर दिन नए कन्हैया का इंतजार करती हैं। जहां भी होती हैं दर्जनों बच्चे उन्हें घेरे रहते हैं। इनका दिन बच्चों को जगाने, नहलाने, खिलाने और रात में लोरी गाकर सुलाने में बीतता है। कुछ बच्चे बड़े हो गए हैं, जिद करते हैं और शरारतें भी, लेकिन इन माताओं के चेहरे पर कभी तनाव नहीं दिखता। कोई परेशानी आने पर भी वे बच्चों की मुस्कान में सब भूल जाती हैं। समाज में लोक लाज के भय से या अन्य मजबूरियों के कारण कुछ माताएं अपने बच्चों को छोड़ देती हैं। ऐसे शिशुओं की जानकारी मिलते ही संस्था के लोग कानूनी औपचारिकता पूरी कर उन्हें आश्रम ले आते हैं। यहीं से इन माताओं का दायित्व शुरू होता है। शिशु का पूरा ख्याल रखते हुए बड़े हो रहे बच्चों की देखभाल भी साथ साथ चलती रहती है। हर बच्चा इनमें अपने माँ की छवि पाता है। बच्चों का रोना, झुंझलाना, जिद करना सब इन्हीं माताओं के पास होता है और ये माताएं बच्चों को इतना प्यार देती हैं कि इन्हें कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती। प्रतिदिन सभी बच्चों को सुबह उठाने से लेकर भोजन, स्कूल भेजना और रात को खिलाना फिर सुलाना इनका दायित्व है। बच्चे इन्हें माँ की तरह प्यार करते हैं और उनके आंचल में सारे गम भूल जाते हैं। गीता देवी कहती हैं कि बच्चे भगवान का रूप हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि इतने बच्चों की माँ हूँ। इनके बीच ही जिंदगी बीतेगी, अंतिम सांस भी इनके साथ लूंगी। पिछले 20 सालों से ये महिलाएं इन असहाय बच्चों की सेवा में लगी हुई हैं।

और आइए श्रोताओं, अब आपको बताते हैं रुड़की की सरूनिका शर्मा की कहानी। एक ऐसी यशोदा माँ जिन्होंने दो नन्हे फरिश्तों को अपनाया जिन्हें उनके अपनों ने त्याग दिया था। सरूनिका ने बेटी अलीशा को 5.5 महीने की उम्र में और बेटे अवध को 3.5 महीने की उम्र में गोद लिया और दोनों बच्चों के विशेष चाइल्ड होने की बात सामने आने पर भी उन्होंने इनका साथ नहीं छोड़ा। सरूनिका का जीवन भी किसी रंगमंच की कहानी से कम नहीं है। सहारनपुर के छुटमलपुर की मूल निवासी सरूनिका ने 15 वर्ष पहले मर्चेंट नेवी में कार्यरत आशीष शर्मा से प्रेम विवाह किया। शादी के कुछ साल बाद भी संतान न होने पर उन्होंने एडॉप्शन का निर्णय लिया और वर्ष 2016 में सरकारी वेबसाइट में पंजीकरण करवाया। सरूनिका बताती हैं कि अलीशा को गोद लेने के बाद पता चला कि वह सुन नहीं सकती। उन्होंने उसके पैरों और कानों का इलाज शुरू करवाया। अब अलीशा 3री कक्षा में पढ़ रही है और कथक भी करती है। वहीं अवध को गोद लेने के बाद पता चला कि उसके दिमाग की एक नस दबी हुई है जिससे उसका विकास नहीं हो रहा है। सरूनिका और उनके पति ने अवध का इलाज जारी रखा और अब वे सामान्य स्कूल में प्री नर्सरी में पढ़ता है। वे बताती हैं कि दोनों बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वे कुछ समय के लिए डिप्रेशन में भी चली गईं, लेकिन उनके पति ने बच्चों को वापस छोड़ने से मना कर दिया। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने बच्चों की देखभाल की। सरूनिका का कहना है कि जो दंपति माता पिता नहीं बन सकते वे कारा में पंजीकरण करवाएं और उन बच्चों को गोद लें जिनके माता पिता नहीं हैं। सरूनिका ने अपने साहस और ममता से साबित किया कि सच्ची माँ वही होती है जो बिना किसी भेदभाव के बच्चों को अपना लेती है। तो श्रोताओं, ये थी उन यशोदा माताओं की कहानी जिन्होंने अपना बच्चा न होने के बावजूद दूसरों के बच्चों को अपनाया और उन्हें माँ का वही प्यार और दुलार दिया जिसके लिए पूरी दुनिया में माँ को जाना जाता है। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldaiarvaranasi@gmail.com। और अब इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम ही सम्पन्न होता है। दीजिए अनुमति अपने रेडियो मित्र आशुतोष को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। प्रस्तुति आशुतोष श्रीवास्तव की थी।
1: फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

मेरी वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएस डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। शाम 5 बजे सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए।

0: रिसर्च करी है तो कॉरपोरेट सेक्टर में आप बिजनेस एनालिसिस बन सकते हैं, इकोनॉमिक कंसल्टिंग कर सकते हैं, यू कैन बी अ पॉलिसी एडवाइजर ऑल्सो, या साथ ही साथ आप इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स के तौर पे ऐसे रोल करने के लिए जहां पे आपको डेटा एनालिसिस करनी है, डेटा से संबंधित कोई जानकारी देनी है, और अगर आपके पास थोड़ी सी और चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन में जाएं तो नेचुरली आपके पास यूजीसी है, नेट है, पीएचडी है, आप बीएड करके टीचिंग फील्ड में भी आ सकते हो, या आप इंटरनेशनल फील्ड में अगर जाना चाहें तो हमारे पास इस समय वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनडीपी जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिनको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के समझ वाले बच्चे चाहिए और वो उनको रिक्रूट करने के लिए तैयार।
1: तो मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या इंटरनेशनल लेवल्स पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए एक स्टूडेंट अपने आप को कैसे तैयार करें, कैसे अपने आप को एक स्टूडेंट ग्लोबल एक्सपोजर के लिए तैयार करें, उन्हें किस तरीके की स्किल्स की जरूरत हो, तो मैम आप इस पे क्या कहना चाहेंगी कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं ग्लोबल एक्सपोजर के लिए और करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए?
0: देखिए आजकल जो है हमारे पास, हमें सबको पता है कि इतने हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन बढ़ गए कि हम पूरी तरीके से एक छोटा सा विश्व जो है बहुत छोटा हो, तो आपके पास सिर्फ एक्सपोजर अपने ही देश की नौकरियों के लिए नहीं है बल्कि विश्व की संस्थाओं के लिए भी है। जैसे मैंने यूएनडीपी का, आईएमएफ का नाम लिया, इनमें आपके पास सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा वर्तमान समय में जो विकास हो रहा है वो पब्लिक पॉलिसी किस तरीके की बन रही है, और हर जगह पे जो थिंक टैंक है वो क्या भूमिका निभाने की कोशिश कर। अगर आपके पास स्किल है तो आप थिंक टैंक्स में जा सकते हैं, आपके पास पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है जो सिर्फ पॉलिसी को डिसाइड करने की बात कर रहे हैं, इसी के साथ साथ आपके पास अगर थोड़ा सा सब्जेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, मतलब आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, तो आप इन सब जगहों पे बहुत आसानी से जा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, लगातार ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको लगातार जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं नेट के माध्यम से या आपके पास कहीं ना कहीं इस तरीके से सर्फिंग करके या किसी की गाइड लेके, आपको गाइडेंस भी अगर मिल जाती है कहीं दूसरों से, तो आप इस तरीके के जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत खूबसूरती के साथ आप अपने करियर को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं।
1: जैसा कि आपने कहा कि इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स के लिए ऐसे कई रास्ते जो है वो खुलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की अलग अलग होती है, चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा रहेगा, तो इस पर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: देखिए बच्चों को सबसे पहले जब आप एक सब्जेक्ट लेते हैं तो पहले तो सब्जेक्ट की गहराई को समझना पड़ेगा, और फिर उसके बाद अपनी कैपेसिटी को समझना पड़ेगा, अपनी योग्यताओं को समझना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी है कि वो क्लासरूम लर्निंग के साथ साथ रियल वर्ल्ड एक्सपोजर में भी जाएं। आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट की इंटर्नशिप बहुत सारी है, आप जाइए वेबसाइट देखिए उसमें बहुत सारी इंटर्नशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इंटर्नशिप आपको क्या करती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देती है, आपको साथ ही साथ प्रोफेशनल नेटवर्किंग भी सिखा देती है, साथ ही साथ वो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है कि आप कहीं भी जाएं तो आप कॉन्फिडेंटली अपने को प्रेजेंट कर सकें, और जब कभी आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपके रिज्यूमे भी जो है वो मजबूत बन जाता है, आप अपने रिज्यूमे में इन सब चीजों को लिख सकते हैं। नेचुरली आपके पास कोई स्टूडेंट अगर शुरुआत करना चाहता है तो वो एनजीओ में जा सकता है, गवर्नमेंट इंटर्नशिप कर सकता है या स्टार्टअप कंपनीज में जा सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि आपको विषय की गहराई से समझ हो और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, और आप इन दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि सिर्फ ज्ञान बहुत नहीं होता, उस ज्ञान का उपयोग करना भी बहुत जरूरी होता है, और वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर से ही हमें मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स को इन दोनों चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा।
1: और अंत में मैम हमारे युवा श्रोताओं के लिए आपका एक ऐसा क्या संदेश होगा जो उन्हें अपने करियर को लेकर सही दिशा और आत्मविश्वास दे सके, या फिर ऐसी कौन सी गलतियां जो है जो स्टूडेंट्स करते हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए शुरुआत में ताकि उन्हें आगे चल के उसका पछतावा ना हो?
0: नहीं देखिए पछतावा नहीं होता है कभी भी, विद्यार्थियों को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गलती करके ही बच्चे आगे बढ़ते हैं और ये उनकी सीखने की उम्र होती है, इसलिए वो बहुत अच्छे से सीख के काम करते हैं। सबसे पहली बात मुझे कहना चाहता है, अगर सब्जेक्ट को आपने लिया है तो उसको सिर्फ डिग्री लेने के लिए ही मत सीमित रखिए, आपको उससे अपना ज्ञान बढ़ाना है, और ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको नई स्किल सीखनी है, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस रखना है, आपको क्रिटिकल होना है, आपको क्वेश्चन पूछने हैं, आपको प्रैक्टिकल लर्निंग भी ध्यान में रखनी है, और साथ ही साथ आपको फोकस्ड स्टडी करनी है। अगर आप एक कोर्स कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप उसी कोर्स पे फोकस करके उसमें एक्सेल करने की कोशिश कीजिए। एक समय में दो तीन चार जगहों पे आप बिल्कुल भी मत भटकिए, क्योंकि उससे आप किसी भी जगह फोकस नहीं कर पाते हैं और जो आपको एक्सेलेंट चाहिए, एक्सेल चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाती है। और कभी भी

0: फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है, यही वो समय है जब आप गिरेंगे, बढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और ऊंचाइयों को छू लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर बड़ी सफलता जो है वो छोटे छोटे प्रयासों से ही शुरू होती है। इसलिए आपको निरंतरता चाहिए, हार्डवर्क चाहिए और साथ ही साथ सही डायरेक्शन अगर मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर आप सफलता को छू।
1: बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
2: तो अभी दोस्तों आपने सुना विवा जोशी से तनिष्का माहेश्वरी की बातचीत, और हमने जाना कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो हमारे युवा करियर बनाने के अवसर देख रहे हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आज का सवाल, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे जानने की। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं कल का सवाल और सही जवाब। साथ ही हम जानेंगे आज का सवाल और जिन साथियों ने कल के सवाल का सही जवाब दिया है उनके भी नाम जान लेते हैं।
1: दोस्तों, कल का सवाल हमारा आपसे था कि किस रेडियो स्टेशन का नाम सबसे पहले आकाशवाणी रखा गया था, जिसका सही जवाब है मैसूर रेडियो स्टेशन।
0: और जिन साथियों ने सही जवाब दिया है उनके नाम है मुकेश प्रजापति सिगरा वाराणसी से, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, एमपी से। साथ ही प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा, ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से, सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, रिंग रोड, नर्मदा नगर, एमपी से।
1: और इसी के साथ दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल को जानने की। तो अपने रेडियो की आवाज़ बढ़ा लीजिए और ध्यान से सुनिए। आज का सवाल है, आकाशवाणी का फेमस सिग्नेचर ट्यून किसने कंपोज किया था? एक बार दोबारा से सवाल को सुनिए, आकाशवाणी का फेमस सिग्नेचर ट्यून किसने कंपोज किया था?
0: तो दोस्तों, आप अपना जवाब हमें हमारी इंस्टा आईडी youth AIR वाराणसी पर या फिर हमारी ईमेल आईडी youth AIR VNS@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो फटाफट से अपना फ़ोन उठाइए और हमें अपना जवाब टाइप करिए। और अब वक्त हो रहा है हमारे पसंदीदा हिस्से यूथ डायरी का, जहां हम हर दिन सीखते हैं कुछ नए शब्द और उनका सही प्रयोग।
1: दोस्तों, आज का हिंदी शब्द है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है अपने

0: विचारों, भावनाओं या सूचनाओं को दूसरों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना।
1: यानी जब हम अपनी बात स्पष्ट और सही ढंग से किसी तक पहुंचाते हैं तो उसे हम कहते हैं संप्रेषण।
0: उदाहरण के लिए, अच्छा संप्रेषण किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल, आज के समय में कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संप्रेषण क्षमता हर क्षेत्र में बहुत जरूरी हो गई है।
0: अब बात करते हैं आज के अंग्रेजी शब्द की, जो है मैवरिक। इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से अलग सोच रखता हो और अपनी अलग पहचान बनाता हो।
1: दोस्तों, इसके स्पेलिंग की बात करें तो वो है MAVERICK। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन कंसिडर्ड मैवरिक्स बिकॉज दे थिंक डिफरेंटली।
0: यानी जो लोग नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं वही अक्सर समाज में बदलाव लेकर आते हैं।
1: तो दोस्तों, अपने विचारों को बेहतर तरीके से संप्रेषित कीजिए और जीवन में सकारात्मक मैवरिक बनने की कोशिश कीजिए।
0: दोस्तों, समय लगातार आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इतिहास अपने भीतर अनगिनत कहानियां, उपलब्धियां और यादगार पल समेटे रखता है।
1: और जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इसी दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिन्होंने दुनिया और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा।
0: तो चलिए जानते हैं आज के दिन से जुड़ी कुछ खास और ऐतिहासिक बातें।
1: 1638 में आज ही के दिन मुगल बादशाह शाहजहां की देखरेख में दिल्ली की ऐतिहासिक लाल किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। यह किला आज भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है।
0: 1952 में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार संसद का सत्र आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही शुरू हुई। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण था।
1: 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 2 और सफल परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों ने दुनिया के सामने भारत की वैज्ञानिक और सामरिक क्षमता को और मजबूत रूप से प्रस्तुत किया।
0: 2000 में भारत की लारा दत्ता ने साइप्रस में आयोजित मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब जीतकर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि ने भारतीय युवाओं को नए सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी।
1: और इसी प्रेरणा के साथ दोस्तों, चलिए एंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल ट्रैक को।

0: दोस्तों, हर युवा अपने सपनों को उड़ान देना चाहता है और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी होता है सही अवसर और सही जानकारी।
1: बिल्कुल, इसलिए अब वक्त हो गया है करियर और रोजगार से जुड़ी खास जानकारियों का। तो चलिए सुनते हैं रोजगार सूचना।
0: ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की यह जानकारी आपके सफलता के सफर में एक नया कदम साबित हो।
1: दोस्तों, भारतीय सेना ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी TES-56 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत लगभग 90 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
0: आवेदन प्रक्रिया 13 मई 2026 यानी आज से शुरू होकर 12 जून 2026 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने CEN-1/2026 के तहत असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP के 11,127 पदों पर भर्ती की संक्षिप्त सूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू होकर 14 जून 2026 तक चलेगी।
1: इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना तथा ITI या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों का नियमानुसार छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार rrbapply.gov.in या क्षेत्रीय RRB वेबसाइट पर जा सकते हैं।
0: दोस्तों, हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ खास होता है, लेकिन उस खासियत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जरूरी है आत्मविश्वास और सही अभिव्यक्ति।
1: बिल्कुल, और इसी अभिव्यक्ति को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है पब्लिक स्पीकिंग, यानी लोगों के सामने प्रभावी तरीके से अपनी बात रखना सीखना।
0: अक्सर कई लोग अच्छे विचार होने के बावजूद अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते। उनके मन में डर, झिझक क्या गलती होने का भय रहता है।
1: लेकिन याद रखिए, एक अच्छा वक्ता पैदा नहीं होता बल्कि

0: निरंतर अभ्यास से बनता है।
1: अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू कीजिए, छोटे समूहों में बोलने का अभ्यास कीजिए, शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए और अपनी आवाज़ व शब्दों पर ध्यान दीजिए।
0: और सबसे ज़रूरी, गलतियों से डरिए मत। हर बड़ी शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है।
1: क्योंकि जब आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं तो आपकी आवाज़ सिर्फ सुनी ही नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है।
0: तो दोस्तों, अपनी सोच को आवाज़ दीजिए, अपने विचारों को पहचान दीजिए और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे युवाणी के अन्य किसी अंक में। तब तक के लिए
0: नमस्कार।

0: अभी वह साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6 बजने वाले हैं भोजपुरी में समाचार, आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से, जिन्हें हम संप्रसारित करेंगे।
1: गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचार के साथ ही हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति आज विपणन वर्ष 2026-27 मध्य 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दिलास। इसके तहत सरकार सामान्य धान का MSP 2441 रुपया, ग्रेड ए धान का MSP 2461 रुपया, मकई का MSP 2410 रुपया और रहर का MSP 8485 रुपया प्रति क्विंटल कह दिले हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार के MSP बढ़ोले के फैसला का स्वागत कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वहां के कहने की फैसला अन्नदाता किसानन का आय बढ़ावे और कृषि विविधीकरण के प्रोत्साहन देने के साथ ही साथ समृद्ध किसान सशक्त भारत के संकल्प के नया मजबूती दे। पश्चिम एशिया संघर्ष से भयल वैश्विक ऊर्जा संकट के देखत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बादे केंद्र और राज्य सरकार ईंधन बचत का उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन के दाम में बढ़ोतरी के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालिया में घरेलू दौरा बदे अपने काफिला का आकार ढेर कम कर दिए हैं। एगो रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियन विधायकन और जनप्रतिनिधियों से सरकारी गाड़ियों का उपयोग के कम करे के कहले हमें। एगो रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पुलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। समाचार कक्ष से अरुण।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई के गोरखपुर में प्रदेश के चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन करके नींव धरी है। एगो रिपोर्ट।
4: गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग स्थित ताल नदौर में बनने वाला यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। निर्माण के लिए यह पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। स्टेडियम बनाने के लिए अलाइनमेंट, मिट्टी भराई, लेवलिंग और बड़े निर्माण उपकरणों को लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आज जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लगभग 50 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम में 30,000 दर्शक के बैठने की क्षमता होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12वीं के परीक्षा का नतीजा आज घोषित कर दिलस। विद्यार्थी रोल नंबर डाल के बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर

0: उमंग ऐप पर अपन नतीजा देख सकेलें। मौसम विभाग प्रदेश में अजुओ कहीं कहीं बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़ने का क्रम जारी रहने का संभावना जतौले हो। ए बीचे कानपुर के साथ ही प्रदेश के कुछ और जिलों से बरखा के साथे साथे ओलो गिरले का समाचार मिलल बा। मौसम विभाग का वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश आवे वाला दिन में तापमान में बढ़ोतरी का संभावना जतौले हमें।
1: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा, दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहाँ धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहाँ से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
0: गोरखपुर के सतही प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में आज दिन भर तेज घाम रहल, वहीं संध्या से आसमान में बादल छा गई आ तेज आंधी के साथ बरखा शुरू हो गई। इस समाचार बुलेटिन हमने के यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी मौजूद हो। एक सतही भोजपुरी समाचारन के बुलेटिन पूरा भई। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.5 किलोमीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है। कार्यक्रम विवरण में आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा सितार वादन। कलाकार होंगे पंडित निखिल बनर्जी। रात्रि 10 सुनिएगा नाटक तस्वीर। लेखक दिनेश भारती और प्रस्तुतकर्ता होंगे डॉक्टर वीके श्रीवास्तव। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा अंजुमन कार्यक्रम। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8 कलाकार होंगे रोमी दत्ता। अंग्रेजी कार्यक्रम में शाम 7 सुनिएगा टॉक फैमिली द फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यूज। टाकर होंगे डॉक्टर सुप्रिया सिंह। केशगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनेगा सब्जियों का प्रसंस्करण रोजगार का एक सशक्त माध्यम विषय पर डॉक्टर सुधीर सिंह से बातचीत। साथ ही साथ किसान में सुनेंगे रामनाथ और साथी का गाया लोकगीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6:10 पर। शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में और रात्रि 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल शाम 4 सुनिएगा संदेश टू सोल्जर्स, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 पर सुनेगा पंडित राजन साजन मिश्र का गायन। कल दिन 12:45 पर सुनेगा गायन, कलाकार होंगे शुभंकर डे। और कल रात्रि 10:30 पर सुनेगा इसी कार्यक्रम में शिप्रा बोस का शास्त्रीय गायन।

कल प्रातः 6:05 पर वृक्षारोपण हेतु तैयारी विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुनेगा प्रतिदिन की तरह कल प्रातः 6:10 पर। विचार बिंदु होगा कल प्रातः 6:30 पर। कल प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में गर्मी के मौसम में होने वाले रोग और होम्योपैथिक उपचार विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुनेगा कल प्रातः 6:40 पर। गुड मॉर्निंग बनारस होगा कल सुबह 7 बजे और मधुरमा सुनिएगा कल सुबह 8:45 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:50 पर और कल दिन 1:45 पर कलाकार होंगे मोहन सिंह यादव और साथी। इनके गाए लोकगीत आप सुन सकेंगे कल शाम 6:30 पर किस जगत कार्यक्रम में भी। साथ ही साथ किस जगत कार्यक्रम में सुनेगा गर्मी के मौसम में

सुगम संगीत कार्यक्रम में कल दिन 12:30 पर कलाकार होंगी महुआ बनर्जी और इसी कार्यक्रम में कल रात्रि 8 बजे कलाकार होंगे चंदन दास। कल दिन 1:15 पर अंगनैया कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी दूषित खान पान से प्रभावित होती हमारा स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर पूनम जायसवाल से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत, गीत संगीत और अन्य कार्यक्रम। कल शाम 5 बजे धरती के गीत कार्यक्रम में सुनेगा कुमाऊनी गीत। संस्कृत कार्यक्रम सुनेगा कल शाम 7 बजे। युवाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात, मेरी पसंद, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और अन्य कार्यक्रम।

0: ये थे कल के प्रमुख कार्यक्रम। अभी आप कार्यक्रम विवरण में सुने थे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रम की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म आपकी खातिर से। आवाजें बप्पे लहरी और साथियों की हैं। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं बप्पे लहरी।

0: माशूक तेरे अंदर तू तू तू बाहर खेलेला
1: जा जा जवानी कब से
0: कब से कब से बुला रही है बुढ़ी के चक्कर में तू
1: कैकू कैकू कैकू परेला
2: वाह वस्ताद वाह भाई क्या शेर मारा है
3: वाह वाह वा, वा, वा।

अवैध ने फिल्म आंखें देखी का एक गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की हैं। गीतकार हैं पद्मा सचदेवा और संगीतकार जेपी कौशिक।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम 241.5 सेमीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से, जिन्हें हम सम्प्रसारित करेंगे।

0: सप्तविंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षयोः कृते चतुर्दश खरीफ इति ग्रैष्मिकसस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्ये वृद्धिं स्वीकृतम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् सर्वकारेण ग्रैष्मिकसस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धितम् अस्ति, येन उत्पादकेभ्यः तेषाम् उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति। सः अवदत् यत् ग्रैष्मिककालस्य कृते कृषकाणां कृते प्रायः 60,000+ 2,00,000 कोटि रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। सः अवदत् यत् अस्मिन् ऋतौ 24,800,000 मैट्रिक टन इत्यतोप्यधिकानि सस्यानि प्राप्तानि भविष्यन्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् MSP मध्ये सर्वाधिकं 22,600 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल वृद्धि सूर्यमुखी बीजानां कृते अनुशंसितम्। तदनन्तरं 57,500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल कर्पासस्य कृते, 500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल तिलस्य कृते च अनुशंसितम् अस्ति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824,00,000 मेट्रिक टन LMT।
0: प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भू अंगारस्य तथा लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनायाः प्रोत्साहनाय 37,50,000,000,000 रूप्यकाणां वित्तीय व्ययस्य योजना अनुमोदिता। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना भारतस्य अंगारस्य लिग्नाइट गैसिफिकेशन इत्यस्य च कार्यक्रमं गतिप्रदानाय प्रमुखं पदाक्षेपमस्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् योजनायाः अन्तर्गतं 3,00,000,000,000 रूप्यकाणाम् अपेक्षित निवेशः भविष्यति।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगा वेट्रिकझगम दलस्य सर्वकारेण तमिलनाडु विधानसभायां बहुमत परीक्षणं विजितम्। चतुश्चत्वारिंशोत्तरैकशत विधायकाः पक्षे मतदानं कृत्वा सभायां स्पष्टं बहुमतं प्रदर्शितवन्तः। अत्रान्तरे 22 विधायकाः विश्वासप्रस्तावस्य विरुद्धं मतदानं कृतवन्तः। कार्याचरणावधौ प्रमुखः विपक्षिदलं DMK विधानसभा सदनात् बहिरगच्छत्। सद्यैव समाप्तेः विधानसभा निर्वाचने तस्य दलेन केवलम् 68 आसनानि प्राप्तानि आसन्। तमिलनाडोः राज्यपालेन राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण विजयाय सदने बहुमतं साधयितुम् आज्ञापितमासीत्। अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस दलस्य नेता एन रंगासामी अद्य पुदुचेरी राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण पंचमं वारं शपथ ग्रहणं कृतवान्। लोकनिवासे आयोजिते समारोहे पुदुचेरी नगरस्य उपराज्यपालः के कैलासनाथन वर्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कारितवान्। दलस्य मल्लादी कृष्णरावः भाजपेति दलस्य एन नमशिवायं च अस्मिन् समारोहे मंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान राज्ये उष्णतरंगस्य कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतनायाः सूचना प्रसारिता। गुजरात राज्ये, महाराष्ट्रे, पश्चिम मध्य प्रदेशे च श्वः यावत् उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुम् अर्हति। अपि च अद्य हिमाचल प्रदेशे, उत्तराखण्डे च ओलावृष्ट्या सह वर्षायाः संभावना विद्यते। अद्य दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युत

0: सहितवृष्टिः तीव्रवायुवेगः च भविष्यति इति भारतऋतुविभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षापरिषदा द्वादशीकक्षायाः परीक्षापरिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉकर इत्यत्र, उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीयमाध्यमिकशिक्षापरिषदा द्वादशीकक्षायाः फरवरी मासस्य 17 दिनांकतः अप्रैल मासस्य 10 दिनांक पर्यन्तं लक्ष्योपलक्ष्य छात्राणां कृते परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिमेशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकटकालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्रराज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन चतुर्दश खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवी के सर्वकारेण सहज बहुमतेन सक्षी परीक्षणं विजितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम गौरी बहन। अरे कह का कुल हालचाल है तुहारी, खेती बारी कहो।
1: खेती बाड़ी का हाल चाल तो ठीक है बा। और ये समय तो गर्मी में पानी का जो स्तर है बहुत नीचे ज्यादा है,
0: मैंने कि
1: और
0: इतनी
1: बारिश होता है नहीं।
0: हाँ सिंचाई करे में तनी किल्लत आवत है, आ जो नल और ट्यूबवेल हम कुल थोड़ा कम पानी देते हूँ, ये न कहल चाहत हो। तो भाई देखो ना, ये ऐसा मौसम में है कि पानी का स्तर नीचे चल जाला, लेकिन हमनी के वैज्ञानिक भैया लोग सलाह देना या अपने पंचायती के माध्यम से हमनी को वैज्ञानिक भैया लोग से जौन बातचीत करवावे नहीं जाए। तो देखो वैज्ञानिक भैया लोग कहेला लोग कि जौन पानी है ना, तो वो पानी के देखा हमनी के बचा के रखे के पड़ी, और ये आजे नहीं एकर जब तक ये अपन पृथ्वी है, जब तक ये अपन दुनिया चली, तब तक पानी का महत्व है। और वो महत्व के हमनी के सब लोगन के, वो चाहे गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, या जंगल के लोग हों, या कहीं भी जे रहत हो, यहाँ तक कि जे कहल जाओ कि जे समुद्र में भी जे रहत है ना, हाँ, तो ओहू के भी पिए वाला पानी जौन अपन है, जौना जौन भाई जौना के भाई उपयोग करे नहीं जा हमनी का अपने रोजमर्रा के जीवन में, तो ओकर संचय करे के पड़ी, ओकर बचाव करे के पड़ी।
1: और कहल जाला कि जैसे धरती पे पानी तो बहुत है, ऐसे नदी झील झरना तालाब है समुद्र है, तो उनमें पानी तो ऐसे धरती पे 70% पानी है, लेकिन जो पिए वाला पानी है वो खाली 1% है।
0: हाँ भाई, वह तो कि बहुत कम मात्रा में जौन हमनी का रोज प्रयोग करे वाला पानी है, वो बहुत कम मात्रा में है। और ओहू माँ ये जान ल कि दिन पर दिन इतना अपन हमनी के वैज्ञानिक पद्धति से, या कहल जाओ कि हमनी के देश दुनिया का इतना विकास होता ना, और विकास के संगे संगे हमनी का भाई जब विकास हुई तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ भी हुई जवाना का जरूरत पड़ी, और में पानी भी है। देखो औद्योगिक जितना प्लांट जौन कंपनी कुल फैक्ट्री चलत है, हाँ चाहे अब इतने मोटर गाड़ी कुल हो गई बना, और मोटर गाड़ी में ये देखे कि मिलेला कि भाई ओहू के तो ठंडा करे खातिर पानी का जरूरत है, या कोनो चीज हमनी का जितने आगे बढ़ल जाए। अब भाई देखा आगे तो बढ़ ही के है गौरी बहन, जब आदमी संसार में बा, संसार में वैज्ञानिक पद्धति से चलत है, तो हमनी के आगे तो दिन पर दिन बढ़ ही के है, लेकिन अगर ओमे जहाँ पानी का जरूरत है, हम कहते कि ओमे वो पानी का जरूरत के हमनी का पूरा कर जाए, लेकिन जो ओमे नुकसान लोग करे ना उसे बचे के है।
1: जितना जरूरत हो जोन काम बदे उतना पानी इस्तेमाल करे।

0: कपड़ा धो के पानी है
1: हम्म,
0: वही पानी से पोछा लगा ले, या कोनो पानी है जैसे कुछ गंदगी हो गया तो वही से जमीन मतलब पौधा वौधा में पानी देवे के लिए इस्तेमाल कर सकल है।
1: तब
0: एक
1: कहो
0: ही तरीके के पानी के 2-3 बार भी इस्तेमाल कर सकल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहलू। देखे में आवेला कि भाई जैसे सार्वजनिक जगह है, हाँ, वहाँ नलका लगल है और नलका से जो पानी लोग प्रयोग करें ना, या क्या करें कि प्रयोग करके खुला छोड़ के चल दी हाँ, लेकिन वो में ई देखे में आवला कि कितना पानी नुकसान होत जाला, गिरत जाला और गिर के, और बहुत से ऐसा लोग हों कि ऐसे ही छोड़ दी हाँ वो नल के, देखते हुए भी ओके अनदेखा कर दी हाँ। तो हम कहते हैं कि जे नासमझी कर दियलस, जे गलती कर दियलस, हाँ, ओकर गलती की वजह से देखा, अगर वो पानी सार्वजनिक जगह पर या कहीं गिरत है तो वो नुकसान सबकी बदे है, और वो नुकसान के अगर हमनी के भरपाई करे के ना और ओके बचावे के है, तो देखा सबके जागरूक होके के पड़ी गौरी बहन। और इतने नहीं देखा, अपने खेती बाड़ी में, अपनी खेती बाड़ी में पहले जो पारंपरिक खेती रहे वो विधि में लोग ट्यूबवेल खोल के छोड़ दें, और कहीं कम कहीं बेसी पानी लग जा, और उस समय भाई हम कहते हैं कि जब पुराना जवान जमाना रहे उस समय उतना वैज्ञानिक पद्धति हमनी के अपनी खेती में ना अपने ले रहनी जा, या हमनी को उतना विकास ना भले खेती का, तो भाई उस समय उच्च खाल खेत रहत रहे। लेकिन अब का है कि गौरी बहन, अब तो हर जगह हमनी
0: अलग
1: का
0: अलग तरीके का मशीन है जिससे खेत बिल्कुल समतल एक बराबर हो जाता है।
1: और समतल करे के देखा ना, कई गो ऐसा ऐसा कुल जांच आ गया है ना कि उसे एकदम बराबर हो जाता हो, जो ट्रैक्टर में पीछे बांध के और बिचवा में एक ठो कैसन मीटर जैसा रहत है, और वो में देख के वो लोग बता देते हो कि कहाँ खलार है कहाँ ऊंच है, और ओके एकदम ट्रैक्टर से या जो पट्टा वाला अपन जुन्नूस है उसे एकदम ओके कहल जाओ कि
0: समतल कर
1: हाँ एकदम
0: देते
1: समतल कर देता ना, ताकि पानी एक कोने छोड़ा तो वो कोने तक एकदम एक बराबर खेत हो जाता।
0: और पहले भी जैसे नाली से या नहर से पानी आओ तो नाली कहीं टूटल हो या नहर से कहीं पानी समय से पहुंचे में भी ज्यादा समय लगे और पानी का नुकसान भी बहुत होता है, और एक जगह कहीं ज्यादा पानी लग जाए और कहीं कोने तक पानी पहुंच ही ना पाए।
1: और अपनी खेती में देखा कुल फवारा विधि, टपक विधि, कभी वैज्ञानिक भैया लोग कर देना, तो कितना हमनी के खेती में जो पानी नुकसान होखे गौरी बहन, उनमें हमने कितना बचाव कर लेते हैं जहाँ कि जो टपक विधि में जवन भी पौधा है जवन तू लगैले हुआ, ये जान ल कि वो पौधा पर उतने पानी जात है जितने वो पौधा की जरूरत है, बाकी का जवन पूरा लोग पूरा खेत के समतल खेत के पूरा पानी से पट दस, अब वो करे के ना जरूरत है, खाली जवन पौधा के जितनी पानी चाहिए वो पौधा के उतनी पानी मिलत है। फवारा विधि से देखा जौन पत्तेदार पौधा हुआ उनकरी पत्ता पे फवारा का कुल पानी चल जाता, वही विधि से दवा भी छिड़का जाती है, जो उनकी दवाई लोग पानी पूरा भर के अपन खेत ओमे डालस, अब वो फवारा विधि से पौधा पे डाल देता हूँ।
0: एक फर्टिगेशन भी कहल जाए जैसे टैंक में पानी भर के और खाद मिला के एक ही साथ सिंचाई कर तो खाद और सिंचाई एक ही साथ हो जाता। और जो टपक सिंचाई है उनमें खाली पौधा पौधा के पास बूंद बूंद करके पानी गिरा था तो उसे पानी का तो बचत होता है, और दूसरा फायदा ये है कि उसे खर पतवार अनावश्यक ना होगी क्योंकि वो
1: बिल्कुल
0: सबके पानी ही ना मिले।
1: और इतने नहीं, ये जान लो ना गौरी बहन कि जितना हमनी के अपने घरे दुआरे भाई कह कही तो बात कहनी है कि हमनी के जितने आगे बढ़त हैं जाए उतने पानी का ज्यादा प्रयोग और ओके हमनी का आसान अपने जीवन शैली के बनावे खातिर देखा, अब घरे घरे पहले रहे कि लोग कुआं से पानी खींचा, पानी खींच के ढो के ले आवा अपनी घरे, और ओके कहल जाओ कि बड़ा सहेज के रखा कि हमके जितनी उपयोग प्रयोग करे के हो ओके लोटा से निकाला उतने उपयोग ओकर करा, काहे से कि भाई ओमे बल लगे ओमे श्रम शक्ति लगे। लेकिन अब कहा कि मोटर लोग चला देते हुआ ऊपर टंकी लगल है, टंकी में पानी जाके भर जाता, और ओकरी बाद जो इससे प्रयोग करे के है लोग करत हुआ, लेकिन हम ये ना कहते हैं कि ओकर प्रयोग ना करें, लेकिन करें तो ओकर सही तरीका से करें। अगर तुहरी घरे में टंकी लागल है ओ में नल लगल है तो वो नल से अगर कहीं रिसाव होता तो लोग ओके अनदेखा करें ना कि थोड़ा थोड़ा ही तो रिसाव होता, लेकिन देखो वो थोड़ा थोड़ा एक एक टपक विधि एक एक टपकत ही है।
0: बूंद बूंद से ही कितना पानी निकल जाता
1: अब वो सोचा कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना दिन में वो कितना पानी नुकसान हो जाता और वो नुकसान का फिर भरपाई ना होता।

0: पानी का भी संरक्षण कर रखते हैं,
1: बिल्कुल।
0: जैसे कुआं तालाब पहले रहा, तो बारिश का जो पानी हो जाके तालाब में भर जाए, तो धीरे धीरे जब तालाब में पानी इकट्ठा हो तो उसे जमीन का जो नीचे सतह में पानी का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़त रहा। लेकिन अब कुआं तालाब धीरे धीरे सूखा जाता है, तो पानी का जो स्तर है वापस वो बढ़ नहीं पा रहा, जमीन में पानी वापस जा नहीं पा रहा।

0: के पेड़ पौधा भी लगावे के चाही। और ओकर फायदा हमनी के ई है गौरी बहिन कि बारिश समय से हुई, जितने अगर हमनी का
1: पेड़ पौधा भी बरसात करे में बहुत मदद करे।
0: बिल्कुल मदद करे ना। तो देखा हर चीज गौरी बहन सब चीज अपने पानी से ही है, और अपने पानी के हमनी का कह जाओ कि संचय करके ओके सुरक्षित रखे के होई। और हमनी का वो पानी के ना अगर अपनी लगे ना रखल जी ना, तो देखा आवे वाली पीढ़ी के बड़ा नुकसानदेहक होई, और आवे वाली पीढ़ी कहल जाओ कि बहुत परेशानी से रही, हो सके तो ना भी रह पाओ अगर पानी ना रही तो।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कह
0: गौरी
1: रहे
0: बहन
1: हो।
0: हमनी के बत कही आगे भी हुई, लेकिन है कुछ संदेश उस सुनवा दिया जाए, फिर बत कही कल जाए।
2: कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल्फाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने RBI कहता है कि
3: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
4: और को भी सिखाओ।
0: गौरी बहन
1: हाँ सत्तू भैया,
0: देखा हो संदेश तो हो गई। आज न सब्जियन का प्रसंस्करण रोजगार का एगो सशक्त माध्यम है, ये विषय पर बतकही करे बदे डॉक्टर सुधीर सिंह अपने पंचायती में आयल हुआ। और हम तो कहब कि थोड़ा सा तू उधर हो जाए, हम डॉक्टर भैया से बतिया लेते हैं, ओकरी बाद आगे फिर अपनी कार्यक्रम में बतकई हो
1: बतिया।
0: आज हम निलोन के बीच में आयल हैं डॉक्टर सुधीर सिंह, जे कि वैज्ञानिक रह चुकल हुआ भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान सहनसापुर वाराणसी में। आज हमने लोग इनसे जानल जाई कि सब्जियन का प्रसंस्करण रोजगार का एगो सशक्त माध्यम कैसे बनेला। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हमने के कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है। डॉक्टर साहब आप हमारी किसान वेलोन के ई बताएं कि सब्जियन का जो प्रसंस्करण का सुविधा है, ऐसे वो लोग का समझे?
5: ऐसा होता है कि सब्जियों का उत्पादन एक निश्चित अवधि में होता है, और एक ये निश्चित अवधि जो होती है करीब 3 से 4 महीने का होता है। इस 3 से 4 महीने की अवधि में सब्जियों का उत्पादन कभी मांग से बढ़ जाता है।
0: अच्छा।
5: जब सब्जियों का उत्पादन मांग से बढ़ जाता है तो बाजार में उसकी अधिकता हो जाती है, और जब बाजार में उसकी अधिकता हो जाती है और खरीदार नहीं मिलते हैं तो उसका दाम जो है वो गिर जाता है। तो इस तरह से जब सब्जी का दाम गिर जाता है तो किसान को कोई फायदा नहीं हो पाता, लागत जो उसकी लागत है वो भी नहीं मिल पाती। तो करीब ये पाया गया है कि कुल सब्जी उत्पादन का लगभग 20-25% प्रबंधन की जानकारी न होने या प्रसंस्करण की सुविधा न होने का नुकसान हो जाता है। अगर इसको देखें रुपए में तो करीब 15,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष भारत सरकार जो है इससे नुकसान होता है। तो ये जरूरी है कि हम इसको जो है किस तरह से ये जो नुकसान हो रहा है इसको हम किस तरह से उसको कम कर सके, एकदम जीरो तो नहीं कर सकते, उसको कम कर देंगे।
0: वो कौन विधि से कर सके? नहीं
5: हाँ, उसमें ऐसा होता है कि आपका जो है वैल्यू चेन है, एक वैल्यू चेन कहा जाता है, हर चीज का आप एक वैल्यू चेन एक डेवलप करेंगे तो इस तरह से आपको विविधता सब्जियों में विभिन्न प्रसंस्करण की विविधता विविध आयाम आप लाएंगे तो उससे आप नियंत्रित कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण आपको देते हैं, जैसे दूध का, वो 1 लीटर का करीब 70 रुपए में बिकता है, उससे जब आप दही बनाते हैं तो उसका दाम 110 रुपए केजी हो जाता है। जब उसी दूध का जब हम पनीर बनाते हैं तो पनीर का दाम 450 रुपए केजी हो जाता है, जब आप उसका मक्खन बनाते हैं तो 550 से 600 रुपए हो जाता है, और जब आप घी बनाते हैं तो करीब आपको 650 से लेकर 800 रुपए केजी घी बनता है। तो इस तरह से आप जब ये वैल्यू चेन है तो ये दूध है आपका, उसके डिफरेंट आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसी तरह से हम सब्जियों में भी कई तरह का प्रसंस्करण की विधि अपना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम कई तरह की प्रसंस्करण का तरह करेंगे तो इस तरह से किसान को जो है उन जो सब्जियां हैं उनसे कई तरह के उत्पाद बना लेगा, और उस उत्पाद को बाजार में देख करके उसको मुनाफा मिल सकता है।
0: डॉक्टर साहब उदाहरण के तौर पर कुछ सब्जी बताई हमारे किसान भैया लोगों के, ताकि वो लोग और अच्छे से समझ सके।
5: देखिए जैसे सबसे सबसे अच्छा साधन जो है निर्जलीकरण है। निर्जलीकरण में क्या होता है कि सब्जियों के अंदर जो सब्जी के अंदर 90 से लेकर 95% तक पानी पाया जाता है।

0: हम उसको निर्जलीकरण की विधि होती है, ड्रायर होता है, तो उसमें हम सुखा करके उसमें मात्रा जो है 2.5 से 3% तक कर देते हैं। और ऐसी सब्जी को जब हम पैकिंग कर देते हैं तो उसमें जीवाणु पनपने नहीं पाते, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता।
1: अच्छा।
0: तो विभिन्न तरह की सब्जियां जो है आपके भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान और जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, राज्य के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने जो है विभिन्न सब्जियों को निर्जलीकृत करके एक बहुत अच्छा उपयोगी सब्जी ड्राइड वेजिटेबल बनाया है। जैसे आप देखिए, करेला हुआ, गोभी हुआ, हरी मिर्च हुआ, कुंदरू हुआ, टमाटर हुआ, परवल हुआ, इन सबको जो है सुखा करके और इनको इस तरह सुखाया और सुखाने के बाद उसमें नमी की मात्रा 2.5 से 3% रखा है और उसकी प्रॉपर पैकिंग कर दिया और ऐसी सब्जी को कमरे के तापक्रम पर आप करीब जो है 8 से 10 महीने तक कमरे के तापक्रम पर उसको रख सकते हैं।
1: जैसे डॉक्टर साहब, आप उदाहरण के तौर पर जो 4-5 सब्जी का नाम लेके आप बतैनी है कि सब्जी अनुसंधान की तरफ से या तमाम जो वैज्ञानिक लोग हों वो लोग ओके सुखा के और ओके अच्छा से अच्छा और बाजार में बढ़िया मूल्य पर बेच सके ना, ऐसा बना देता हूँ। अगर हमारे किसान भाई लोग घरेलू उपाय ओकरी बदे करें या घरेलू उपाय से अगर ऐसा लाभ लेल चाहते हों तो वो कैसे करें?
0: किसान जो है कम लागत में भी सब्जियों का परिरक्षण कर सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें, गोभी, गोभी जाड़े के दिन में गोभी जो है करीब 1-2 रुपए फूल बिकता है, लेकिन आप उसकी लागत देखें तो किसान को एक फूल पैदा करने में करीब 4-5 रुपए लग जाता है। तो ऐसे गोभी जो है, उस गोभी को करने के लिए घर घरेलू स्तर पर किसान उसको यूज कर सकता है, प्रयोग में ला सकता है, उसको साल भर उसको यूज कर सकता है। कैसे करेगा? गोभी को छोटे टुकड़ों में काट करके उबलते हुए पानी में करीब 15 से 20 सेकंड तक उबलते पानी में उसको डाल दिया, फिर ऐसे उबलते हुए पानी डालने के बाद गर्म पानी हटा करके उसको उस गोभी के टुकड़ों को ठंडे पानी से उपचारित कर देते हैं, उसका एक तापक्रम एकदम कम कर देते हैं। फिर ऐसी गोभी को 2-3% नमक के घोल, 1-2% सिरका और चम्मच के चौथाई भाग पोटेशियम मेटाबाइल सल्फाइड और चम्मच के चौथाई भाग सोडियम बेंजोएट, ये घोल बना लेते हैं। इस घोल में रख करके गोभी को आप रख दें, एकदम आपकी सफेद फूल गोभी आपकी पूरे साल भर आपको मिल जाएगी। जब भी जरूरत हो तो उस घोल में से सब्जी को निकाल करके उसकी सब्जी बना सकते हैं, उसका अचार बना सकते हैं, जो भी आप उसको गोभी का प्रयोग में ला सकते हैं वो कर सकते हैं। और फिर जब वो उसी घोल में दूसरी गोभी ले करके उसको उसमें डाल करके आप परिरक्षित कर सकते हैं। इसी क्रम में गाजर है, गाजर जो है लाल रंग का गाजर आपको जाड़े के दिनों में मिलता है, गर्मी के दिन में आपको पीले रंग का गाजर मिलता है। ऐसे लाल रंग के गाजर को भी आप 10 से 12 महीने तक संरक्षित कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: उसमें क्या होता है, उस गाजर को छोटे टुकड़ों में काट करके 25-30% चीनी का घोल और 10.4-10.6% सिट्रिक एसिड और चम्मच के चौथाई भाग सोडियम बेंजोएट में मिला करके आप रख दें, और ऐसे गाजर को जब भी मन हो आप सलाद के रूप में या ऐसे गाजर को हलवा में आप प्रयोग में ला सकते हैं और साल भर आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। और जब भी उस दूसरे गाजर को भी आप उसी घोल में डाल सकते हैं। एक सावधानी आपको रखना पड़ेगा कि आपको अच्छा साफ करके, साबुन से साफ हाथ करके तब गाजर को उस सोल्यूशन में घोल में डालना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: अदरवाइज अगर आपका हाथ गंदा रहेगा तो उसमें जीवाणु पनपने लगेंगे और पूरा गाजर का जो बैच है वो खराब हो जाएगा।
1: तो नहीं, हरा मटर के बारे में बताएं, कहां से कि हरा मटर का जब उत्पादन होला अपनी किसानी में तो उसमें भाई देखे में आवेला कि बहुत ज्यादा अपने खेत में उत्पादन हो जाला किसान भैया उनकी, लेकिन बाद में भी ये हमेशा बाजार में उपलब्ध रहला पैकेट के माध्यम से या कह जाओ कि दुकानन पर, तो अगर एकर किसान भाई लोग का उपाय कर सके ना घरेलू?
0: घरेलू में इसमें क्या होगा, आप तो उपचारित करके रख देंगे लेकिन इसको ज्यादा दिन तक रखने के लिए उसको फ्रीज करना पड़ेगा, उसको आपको -25 to -30 degrees के तापक्रम पर रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना है, मटर को छील करके और उसको जो है उबलते हुए पानी में उसमें 1-2% चीनी का घोल लीजिए, चीनी का घोल, नमक मत दीजिए, 1-2% चीनी का घोल लेकर के और उसको करीब 20-25 seconds तक केवल आपको उपचारित करना है, उबलते हुए पानी में 20-25 seconds तक रख दीजिए और फिर मटर को तुरंत ठंडा करना पड़ेगा, पानी के अंदर तुरंत ठंडा, एकदम ठंडा तापक्रम पर उसको जो फ्रिज में से पानी निकाल

0: को तुरंत ठंडा कर, उसके बाद उस मटर को जो है बाहर आप सुखा लीजिए, छायेदार स्थान पर सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद उसका जब नमी है, बाहर नमी नहीं रहना चाहिए, और नमी नहीं है फिर उसको प्लास्टिक के थैली में रख करके आप उसको फ्रिज में रख दीजिए। ऐसी मटर जो है आप 10 से 12 महीने तक ऐसी मटर को प्रयोग में ला सकते हैं, और उसका स्वाद, कलर, रंग, गंध सब आपको मिल जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, कुछ पत्तेदार सब्जियां भी हैं जो ना के लोग प्रसंस्करण करके आगे तक रख सके ना का।
0: देखिए, पत्तेदार सब्जियों का हमारे राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो हैदराबाद में है, उनका ये संतुति है कि हर एक स्वस्थ रहने के लिए रोज जो है 100 ग्राम जो है इस पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। बाजार में बहुत मात्रा में, सस्ती मात्रा में आपका मेथी, पालक, बथुआ और आपका पत्ता गोभी उपलब्ध है, और ये बहुत सस्ते दाम पर मिलता है। पत्तेदार सब्जी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको तोड़ने के बाद करीब 2 से 3 घंटे के बाद ये पत्तेदार सब्जियां मुरझाने लगती हैं, तो इसका तुरंत जो है आप अच्छा उपयोगी उत्पाद बनाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह से साफ करके और उसको जो है गर्म पानी में करीब 25 से 30, उबलते पानी में 25 से 30 सेकंड तक इसको उपचारित कर देते हैं, और फिर इसके बाद इसको जो है कैबिनेट ड्रायर में सुखा देते हैं। करीब 50 डिग्री के तापक्रम पर आप आधा घंटा सुखा देंगे तो आपका उसमें नमी की मात्रा करीब 8 से 10% हो जाती है, और फिर उसके बाद उसको जो है आप भंडारण करके आप प्लास्टिक की थैली में ठंडा होने के बाद रख दीजिए, और ऐसी पत्तेदार सब्जियों को आप जब चाहे तब उसका साग जो है साल भर आप उसको रख करके प्रयोग में ला सकते हैं।
1: तो मतलब ए विधि से अगर किसान भैया लोग सब्जियन का प्रसंस्करण करें तो उनके कुछ रोजगार में फायदा भी हो सकेला, कुछ आमदनी भी मिल सकेला। तो डॉक्टर सुधीर सिंह, आप हमने लोगों के कार्यक्रम कृषि जगत में नहीं एकरा बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: निकाल सत्तू, अरे सत्तू भैया, सब्जियों का प्रसंस्करण रोजगार का एक सशक्त माध्यम कैसे हो सकल है, इस पे डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह से कितना फरिया के जानकारी लेना।
1: और एक और चीज़ देखा कि कितना बढ़िया बताई ना डॉक्टर साहब, कि कैसे ना कोनो कोनो मौसम में हमनी का ज्यादा सब्जी का उत्पादन हो जाला, तो ओके कैसे पैकेट में या कहल जाओ कि कैसे ओके रखे के है, तो ओके रख के। और एगो और चीज़ देखा कि ओके बाद में अगर हमनी का ना ओके बाजार में बेचल जाए तो देखा कितना बढ़िया मुनाफा होता है उनमें। तो एक अगर ये विधि से लोग अपन सब्जी का प्रसंस्करण करें तो बड़ा फायदा हुई हो। तो गौरी बहन, अब हम कहम ना कि रामनाथ और साथी लोन का ई देशभक्ति गीत है और भैया लोन के सुनल जाए, सुनवावल जाए।
2: सुनवा ले।

0: रामनाथ साथी का गौनाई रल देशभक्ति गीत।
1: गौरी बहन, देखा है एक देशभक्ति गीत की माध्यम से रामनाथ और उनका साथी लोग कितना बढ़िया अपनी देश का जोन वीर पुरुष रहे लोग, उनकर बखान कई ना। और हम कहम ना कि लगले हाथे कल की कार्यक्रम के भी बारे में बता दिया जाए, तो बिहाने का सुनाओ थो।
0: सवेरे 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में विषय रे वृक्षारोपण हेतु तैयारी पे जानकारी दिहन दिनेश कुमार सिंह।
1: और संझा के अपने कार्यक्रम कृषि जगत में ना, जो उनकी 6:30 पर होला, ओ में भाई देखा काल सजीव कार्यक्रम रही हेलो कृषि जगत। और एक कार्यक्रम में विषय रही कि आपके जौन गोरु गोरु चौवा हुआ, पशु प्राणी हुआ, उन लोगों को जौन भी रोग हुआ, हाँ, ओकरी विषय में बात बत कही हुई डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर अली से। और हम एगो और बात कहम ना गौरी बहन, कि जौन अपन यहाँ का फ़ोन नंबर है ना अपनी भैया लोन के नोट करवा दिया जा, तो 0542 यहाँ का स्टडी कोड है, और जौन यहाँ का नंबर है 222-1050, और एक दूसरा भी नंबर है 222-1052, यानी कि 222-1050, हाँ, और एक और नंबर है 222-1052। तो भैया लोग ए पॉइंट फोन करके उनके पशु को जवन भी बीमारी हुई उसे संबंधित कल हमनी के डॉक्टर और विशेषज्ञ भैया जवन रही हैं डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर अली भैया, उनसे अपन जवाब ले लोग। और गौरी बहन, अब हम कहम ना कि अपन चलत चलत चलत चल अपनी किसान भैया के ई सुझाव सुझाव तो हम ना कहब, ये कहल चाहब कि ए समय ना मौसम बदलत है, और बदलत ई है कि देखत हो ना कबो तूफान आ जाता है, कबो जोर से
0: कभी
1: बारिश
0: तेज
1: आ
0: हवा
1: जाता।
0: चला था, कभी अचानक से बारिश होला था, और कभी गर्मी पड़ा था तो बहुत तेज धूप हो जाता, बहुत गर्मी पड़ला था।
1: तो एमें विशेष रूप से ई ध्यान देवे के है ना कि भाई अगर हमने लोग मोटरसाइकिल से चाहे साइकिल से या कोनो चीज़ से जात हैं जाए, तो ई जान ल कि जवन है आधी तूफान है ना, ये आधी तूफान में पेड़ पौधा भी गिर जाना जो सड़क के किनारे हम, तो एकर बहुत ध्यान रखे के है कि भाई कोनो पेड़ पौधा जब जैसे आधी तूफान आवत है कहीं अच्छा जगह देख के जहाँ पेड़ पौधा ना रहे वहाँ रुक जाए के है, और अपना के सुरक्षित रखे के है। और अब हम कहम ना

0: and Western family systems is essential now, as Western trends often serve as a precursor to India's future. Western societies are largely organized around the principle of individualism, personal freedom, self-expression, autonomy, and the individual achievements are considered central values. Consequently, Western families' structures have become highly diversified, including single-parent households, blended families, cohabitation, LGBTQs, and consciously child-free couples. Such societies have undoubtedly achieved remarkable progress in terms of personal liberty, gender equality, and respect for individual choices. Yet, excessive individualism has also generated profound social challenges. Many Western societies today struggle with loneliness, emotional isolation, parental burnout, and weak intergenerational bonds. So, in India, there is an urgent need to retain individuality along with the important element of collectivist culture through federated or modified joint family system. In this model, individuals may live in separate nuclear units because of work, education, or professional mobility, yet they continue to remain emotionally, culturally, and financially interconnected. Festivals, rituals, marriages, and family gatherings continue to reinforce bonds across generations. This way, the Indian family can still value interdependence alongside individuality in this modified joint family system. This ability to preserve relational continuity amidst modernity is perhaps one of the greatest solutions to retain Indian civilization. The family always remains the first school of values because it shapes not merely behavior but character itself. If India succeeds in maintaining this delicate balance between individuality and togetherness, then family will continue to remain not only the foundation of society, but also the enduring guardian of human values. Thank you.
1: अब अंग्रेजी कार्यक्रम में सुन रहे थे टॉक फैमिली द फर्स्ट स्कूल ऑफ वैल्यूज. टॉकर थी डॉक्टर सुप्रिया सिंह. अंग्रेजी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ. प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी से हो रहा था.
2: जी हाँ श्रोताओ, आपके मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी अब आपके और भी नजदीक, आपके मोबाइल सेट पर. जी हाँ, आकाशवाणी वाराणसी अब न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी. तो जहाँ भी हो आप, अब हर पल आपके साथ आकाशवाणी वाराणसी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी. आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी वाराणसी के साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी. और हर पल हर घड़ी बजने दें अपने मन का रेडियो आकाशवाणी वाराणसी. फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें. साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर. कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ.

आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस AIRVNS@gmail.com। जी हाँ श्रोताओं, अब आप मेल के जरिए भी अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने सुन सकते हैं प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस में। आकाशवाणी वाराणसी से हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, यानी इस मेल पर आपको अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचानी है AIRVNSFGEXP@gmail.com। तो अब खतों, फोन इन, व्हाट्सएप और SMS

स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने जो

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8450 रुपए प्रति कुंतल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे के लिए 2,900 प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताया है। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
2: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। एक रिपोर्ट।
3: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए।

0: पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर्णा यादव के घर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
2: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। मुख्य सचिव SP गोयल ने आज जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सीतापुर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरे, कई जगहों पर पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अमरोहा में भी दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगी MSP। वैश्विक ऊर्जा संकट के

मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। CBSE के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रहीं अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: मीडियम 241.5 सेंटीमीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा एक गीत। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

तीसरी कसम गाए गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की है। गीतकार हैं हंसर जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

अभी अब लता मंगेशकर को सुन रहे थे फिल्म थी तीसरी कसम। अब आइए लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को सुने। फिल्म का नाम परिवार। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम परिवार।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अवैस ने फिल्म उपकार के गीत आवाज लता मंगेशकर की है। शब्दकार हैं कौशल बावरा और संगीत रचना कल्याण जी आनंद जी की है।

अब आइए सुने फिल्म सूरज का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की है, शब्दकार हैं हसर जयपुरी, संगीत रचना शंकर जयकिशन की है, फिल्म का नाम सूरज।

अब आइए मुकेश को सुने फिल्म आवारा में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम आवारा।

ये फिल्म है तीन देवियां, आवाज किशोर कुमार की, वो लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत निर्देशन SD बर्मन। फिल्म का नाम तीन देवियां।

सुबह पे जिस तरह

अभी आप किशोर कुमार की आवाज में सुने थे फिल्म तीन देवियां का गीत। बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतकार थे एसटी परमन। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब संपन्न हुआ।

हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं रूबेन दत्ता। सबसे पहले आए सुने इनके आवाज में एक गजल। शायर हैं कतिल शिफाई।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं रोमी दत्ता। अब आइए सुने इन्हीं की आवाज में इब्राहिम अश का ये कलाम।

रोमी तथा की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत का ही कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रोताओं, अपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। यह गीत हमने लिया है फिल्म धर्मकांटा से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत नौशाद साहब का है। फिल्म का नाम धर्म कांटा।

अभी आप फिल्म धर्मघटा का गीत सुन रहे थे। आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। अब आइए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुने। फिल्म का नाम आसपास। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम आसपास।

अभी आप फिल्म आसपास का गीत सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। अब आइए महेंद्र कपूर और आशा भोसले को सुनिए। गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम कहीं दिन कहीं रात।

एक गीत था कहीं दिन कहीं रात फिल्म का, आवाजें थी महेंद्र कपूर और आशा भोंसले की। अब आइए लता मंगेशकर की आवाज में सुने गीता मेरा नाम फिल्म का गीत। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

ये गीता फिल्म गीता मेरा नाम से, आवाज लता मंगेशकर थी। अब आइए लता मंगेशकर को एक बार और सुने। फिल्म का नाम लुटेरा, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और अब कार्यक्रम के अंत में आए सुने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म गबन का एक गीत, गीतकार हैं हंसराज जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम गबन।

0: अभी आप सुने थे मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म गबन का गीत। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, मीडियम 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से, जिन्हें हम शाम प्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग

0: कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की।

0: डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026.

0: काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के वज़राए आला और दीगर रहनुमाओं ने भी अखराजात को कम करने से मुतल्लिक इकदामात किए हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत ने भर्ती के सिलसिले में घपलों की तहकीकात सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। उसने ज़रूरी सामान की नकलो हमल पर सभी बैन रियासती पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इक्तिसादी उमूर से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तिलात व नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने खरीफ फसलों की एमएसपी में इसलिए इजाफा किया है ताकि किसानों को उनकी पैदावार की माकूल कीमत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को दी जाने वाली तखमीना रकम 2,60,000 करोड़ रुपये रहेगी। उन्होंने कहा कि इस सीजन के दौरान 824 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा फसलों के अंदाजन सरकारी खरीद की जाएगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि सूरजमुखी के बीज के लिए सबसे ज्यादा 622 रुपये फी क्विंटल कम अज कम इमदादी कीमत की तजवीज पेश की गई है, जिसके बाद कपास के लिए 557 रुपये फी क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये फी क्विंटल की तजवीज है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन एलएमटी।
0: मरकजी काबीना ने 37,500 करोड़ रुपए के खराजात से जमीन की सतह के करीब पाए जाने वाले कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने के प्रोजेक्टों को फरोग देने की एक स्कीम को मंजूरी दी है। सहाफियों से गुफ्तगु करते हुए इत्तिलात नशियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि स्कीम भारत के कोयला और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने की जानिब एक बड़ा कदम है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि स्कीम सिर्फ कानकरनी के शोबे से सालाना 6,300 करोड़ रुपए की आमदनी पैदा करेगी और मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी हालात के दौरान आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मुहिम को भी मजबूत करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से कोयले की पैदावार वाले इलाकों में तकरीबन 50,000 रोजगार के मौके पैदा होने की तवक्को है। मरकजी काबीना ने सरकारी व निजी शराकत दारी के तहत निजी शराकत दार के जरिए तवील मुद्दती लाइसेंस हासिल करके नागपुर बैन अक्वामी हवाई अड्डे की जदीदकारी और तजीनकारी की मंजूरी दी है। काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए इत्तिलात नशियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये कदम नागपुर हवाई अड्डे को इलाकाई हवाबाजी के मरकज में तब्दील करने की खातिर एक अहम संग मील है। इस काम को मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर MIHAN प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया जाएगा। GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GNIL नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैन अक्वामी हवाई अड्डे को आलमी मेयार की सहूलतों में तब्दील करेगी। मरहलावार तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत मस्कूरा हवाई अड्डे की सालाना मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश 3 करोड़ तक पहुंचाने का हदफ रखा गया है, जिससे ये वस्ती भारत का एक अहम हवाई अड्डा साबित होगा। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि मरकजी काबीना की जानिब से मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए खरीफ फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे का फैसला मुल्क के करोड़ों किसानों के लिए जरी पैदावार की मुनसिफाना और मुनाफे बख्श कीमत को यकीनी बनाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यह फैसला मुल्क के किसानों की जिंदगी में मजीद खुशहाली लाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अहमदाबाद सरखेज धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट से मुतालिक काबीना का फैसला मुल्क के रेलवे जदीदकारी के सफर

0: में एक अहम संग मील है। वजीर आजम ने कहा कि काबीना से मंजूर शुदा जमीन की सतह के करीब के कोयले और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोजेक्टों को फरोग देने की स्कीम तवानाई की यकीनी फराहमी को मजीद मुस्तहकम करेगी, सरमायाकारी में इजाफा करेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। मरकजी तहकीकती ब्यूरो यानी CBI ने नीट UG 2026 इम्तहान से मुताल्लिक मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक के मामले में 5 मुलजिम अफराद को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 मुलजिमों में से 3 का ताल्लुक जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 का ताल्लुक नासिक से है। फिलहाल मुतअद्दिद दिगर मुश्तबा अफराद की जांच की जा रही है। एजेंसी ने आज मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर भी तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। तलाशी और गिरफ्तारी के दौरान एजेंसी ने मोबाइल फोन समेत मुतअद्दिद काबिल एतराज अशिया और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए हैं। एजेंसी राजस्थान के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप के साथ भी मिलकर कार्रवाई कर रही है, जिसने मामले की शुरुआती जांच की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे को मुत्तहिद अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने मुतला किया कि अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी जुमे के रोज UAE पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के साथ साथ खास तौर से तवानाई के सिलसिले में इश्तराक समेत बाहमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक 5 मुल्कों का दौरा करेंगे, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और 4 यूरोपीय ममालिक नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। वजीर आजम के दौरे का आगाज 15 मई से होगा, जिसके तहत वो UAE पहुंचेंगे, जहां वो UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के साथ साथ तवानाई में इश्तराक पर बाहमी बातचीत करेंगे।
0: जनाब जॉर्ज ने कहा कि अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत वजीर आजम उसी दिन नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इस दौरान जनाब मोदी शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम रॉब जेटन्स के साथ बातचीत करेंगे। अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत जनाब मोदी इतवार के रोज स्वीडन पहुंचेंगे। वजीर आजम ने मोदी की ईंधन के इस्तेमाल में कमी की अपील का गहरा असर देखने में आया है, जिसके नतीजे में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। वजीर आजम ने इसकी नजीर कायम करते हुए खुद अपने काफिले का हजम नुमाया तौर पर कम किया, जिसके बाद BJP के कई वज़रा आला और दिगर रहनुमाओं ने भी इस तर्ज अमल को अपनाया। वजीर आजम की अपील को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरकारी गाड़ियों के काफिले में फौरी तौर पर 50% कमी करने की हिदायत दी है। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने भी ऐलान किया कि वो अपने काफिले में कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और अपने वजीरों को भी ऐसा करने को कहा है। उन्होंने आवाम को सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की भी तरगीब दी। मगरबी एशिया में जारी तनाजे के दौरान वजीर आजम ने इतवार को आवाम से पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने और जर मुबादला की बचत के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की थी। वजीर आजम ने मोदी ने हरियाणा के बल्दियाती इंतखाबात में BJP की कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस जीत ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि अवाम ने तरक्की और बेहतर हुक्मरानी की पॉलिसियों पर अपना मुसलसल एतमाद जाहिर किया है। वजीर आजम ने कहा कि ये कामयाबी इस बात की भी अलामत है कि हरियाणा के अवाम रियासत की डबल इंजन हुकूमत पर भरपूर एतमाद रखते हैं। वजीर आजम ने उन तमाम पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी जिन्होंने BJP की इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फलों, सब्जियों, तिलहन, गजाई अजनास, मवेशियों के इस्तेमाल की अशिया और दिगर लाजमी मसनूआत की बैन रियासती नकल व हरकत पर तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। साबिक TMC हुकूमत ने इन अशिया पर पाबंदी आयद की थी। इख्तदार में आने से कबल BJP ने किसानों को पाबंदियां हटाने की यकीन दहानी कराई थी। दूसरी तरफ एक अहम कदम उठाते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने टीचरों, म्यूनिसपैलिटी और कोऑपरेटिव की भर्ती में हुए घोटाले के मामलों को मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI के हवाले करने का फैसला किया है।

0: वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज टीएमसी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उसने बदउनवान अफसरों को तहफ्फुज फराहम करने के लिए इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। हुकूमत ने उन अफराद की मुलाजमत भी खत्म कर दी है जिन्हें टीएमसी हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत दी थी। आसाम हुकूमत इस माह की 26 तारीख को रियासती असम्बली में यकसां सिविल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने नई मुद्दते कार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब शर्मा ने कहा कि आसाम असम्बली का खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनाकिद होगा जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यकसां सिविल कोड बिल असम्बली इजलास के आखिरी दिन पेश किया जाएगा। इस इकदाम के साथ आसाम उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बन जाएगी। मणिपुर में आज सुबह तकरीबन 10:10 पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 बोलेरो गाड़ियों पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 4 दिगर जख्मी हो गए। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि अमरीका में स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट से चुराए गए 3 भारतीय नवादरात की वतन वापसी का मकसद भारत के सकाफती विरसे की हिफाजत है। नई दिल्ली में इन तारीखी नवादरात की वापसी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये कोशिश अजायब घरों में अखलाकी उसूलों को मजबूत बनाने के लिए भारत के अज़्म को जाहिर करती है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने हमनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराह मुलाकात के लिए आज बीजिंग पहुंचे हैं। कल शुरू होने वाली अपनी 2 रोजा बातचीत के दौरान इम्कान है कि दोनों रहनुमा ईरान के साथ जंग, ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त, तिजारत और मसनूई जहानत समेत अहम मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात और बढ़ती इकतसादी और तकनीकी कशीदगी पर भी बातचीत कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में आज गांधीनगर में एशियन सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 तमगे जीते जिसमें चांदी और कांसे का एक एक तमगा शामिल है। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलोग्राम स्नैच जुमरे में चांदी का तमगा जीता और फिर मजमूई तौर पर 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत ने बैंकॉक में मुनाकिदा सिंगल्स मुकाबलों के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुतालिक 37,500 करोड़ रुपये मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने की भी मंजूरी दी है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम ने मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है जिसके बाद बीजेपी के वज़ीर आला और दिगर रहनुमाओं ने अखराजात को कम करने से मुतालिक इकदाम किए हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है अंजुमन कार्यक्रम। श्रोताओं नमस्कार, अंजुमन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज का सफर तय करेंगे रेडियो दोस्त धर्मेंद्र शुक्ल के साथ। तो कार्यक्रम का आरंभ करते हैं जावेद अख्तर के इस कलाम से। आवाज जगजीत सिंह की है।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के का गाया ये गजल। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में एक प्यारा सा गजल।

गीत और गजलों का कार्यक्रम। और अब आइए उनको सुने जिनकी गजलों में मासूमियत और प्रेम दोनों सुनने को मिलते हैं। रचना राजीव तीर मेची की है, आवाज पंकज उधास की।

अभी अब ये गजल सुन रहे थे, आवाज थी गुलाम अली की, रचना राजी तेर मिर्ची की थी। अब आइए सुने पंकज उधास को, शायर हैं जमीर काजमी।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुने इसरार अंसारी का ये कलाम, आवाज अनूप जलोटा की है।

उम्मीद है गैर फिल्मी गीतों और गजलों की यह महफिल आपको पसंद आई होगी। इजाजत दीजिए, अगली अंजुमन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त धर्मेंद्र शुक्ल को नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे अंजुमन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है नाटक तस्वीर। लेखक हैं दिनेश भारती और प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर बीके श्रीवास्तव।
1: सुंदर
2: करवट बदल बदल के लल्ला।
1: अरे ओ सुंदर के बच्चे,
3: का है मंजरी बिटिया?
1: अरे तुम्हारी ये हालत सुंदर, फटी हुई कमीज, उलझे हुए बाल और ये माथे पर खून। अरे जल्दी से अपनी बीवी के पास जाकर हल्दी चूना लगवा लो, जा।
3: वही के पास से तो आई थे मंजरी बिटिया।
1: अच्छा तुम्हारी बीवी ने आज तुम्हें किस चीज से मारा है सुंदर?
3: ये मारिस तो फूले से रहा, लेकिन साथे चला हवा फूलदान।
1: आखिर तुम दोनों में झगड़ा किस बात का होता है?
3: यही समझ जाते तो झगड़ा ही कहाँ है होता।
1: लेकिन झगड़ा करने के साथ साथ घर का काम भी किया करो सुंदर। तुमसे फोटो स्टूडियो से अपनी तस्वीर लाने को कहा था, ले आए?
3: धत तेरे की, फोटो वाली बात तो खोपड़ी से अकल की तरह बाहर निकल गई।
1: तुम्हारी खोपड़ी में अकल थी भी जो बाहर निकल गई।
3: ए थी का है ना ही मंजरी बिटिया, बाकी बड़ी शर्मदार अकल रही। एक बार जो खोपड़ी छोड़ के गई तो दोबारा खोपड़ी में पाँव ना ही धरी।
1: उफ, अब मैं फॉर्म में क्या लगाऊंगी, तुम्हारा सिर।
3: वो तो लीक कर रहा है।
1: मेरी समझ भी नहीं आता कि तुम्हें नौकर रखने से क्या फायदा अगर हमें अपना सारा काम खुद ही करना पड़े।
3: बात ही भवा न मंजरी बिटिया कि हमार बीवी और तुहार कुत्ता दोनों एक साथ है विराम पड़ गए, तो हम गए रहे दोनों की दवा लावे। ये देखो अपनी बीवी का दवाई दे के हम तोरे कुत्ता का दवाई देवे जात रहे।
1: अरे ये दवा तो तुम्हारी बीवी की है ना?
3: और नहीं तो का।
1: और तुम इसे कुत्ते को पिलाने जा रहे थे?
3: बिल्कुल।
1: मूर्ख, ये दवा कुत्ते की नहीं तुम्हारी बीवी की है।
3: ये दवाई हमारी बीवी की है? अरे तो हम अपनी बीवी का कौन दवाई पिया दिया रहा
1: कुत्ते की।

0: सत्यानाश होई गवा मंजरी बिटिया सत्यानाश होई गवा। तबही ने तो हम कही कि दवाई पियते हमार सुंदरी हम पर आपकी तरह कहे गुर्राए लगी। अब हमार का होई छोटी मेम साहब, एक तो बीवी रही हमार, वो कुकुर की दवाई पी ली।
1: तो तुम भी जाकर कुत्ते की दवा पी लो, एक दूसरे की बात आसानी से समझ लोगे। लेकिन बाजार जाकर हमारी तस्वीर ले आना, उसे लेकर मुझे कॉलेज जाना है, समझे?
0: जी।
1: मैं तैयार होने जा रही हूँ।
0: जाई थे मंजी बिटिया, अब अहिना जाई थे।
2: सुंदर, अरे ओ सुंदर,
0: ले यहाँ भी सुंदर हूँ, आ भी सुंदर रसोई घर माँ भी सुंदर, नहान घर माँ भी सुंदर। हे भगवान, हमका 10 भाग माँ करके 50 से गुना कर दो ना, तब अहनो काम करे खातिर सुंदर का काले पड़ा रही। ले ले बाबूजी हैरान, पैसा से हमका ढूंढत ये चलल चलियावत।
2: रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण। अरे सुंदर
0: जी,
2: मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ, ये तू जा कहाँ रहा है?
0: वो मंजरी बिटिया खातिन बाजार,
2: आज ही लौट आना, समझे?
0: बाबा बाबा, बस आपके सांस लेते गए और आपके सांस निकलते आए।
2: ठीक है ठीक, आए भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जा। अरे बेटी मंजरी, जरा अपनी अम्मा को तो भेज देना।
1: जा रही है बाबूजी।
2: रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई।
1: वचन तो तुम्हारा हमेशा ही खाली जाता है मंजरी के बाबू, काहे को धर्म कर्म की इन लाइनों को पढ़कर इनका अपमान करते हो?
2: बस इस सारे घर में एक तुम ही हो बगैर लाइट और लाइसेंस की गाड़ी, न चौराहे की फिकर न चालान की। अरे भाग्यवंती, कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रघुकुल, और कहाँ तुम्हारी दाल रोटी वाला कुनबा? रघुकुल की रीत भला हम आम आदमी कहाँ चला सकते हैं?
1: आदमी आम हो चाहे कटहल, घर की जरूरतों की उसे परवाह करनी ही चाहिए। और एक तुम हो कि हर समय रामायण महाभारत की चौपाई तिपाई पढ़ते रहते हो। तुमसे कितनी बार कहा है मंजरी के बाबू कि लड़की अब सयानी हो गई है।
2: तो क्या तुम्हारी तरह मूर्ख बनी रहे?
1: अर्जुन की शादी हो गई, अच्छी भली बहू आ गई, छोटे लक्ष्मण की शादी भी तय ही है। बस अब दो भाइयों के बीच एक मंजरी ही तो है ना बहन, उसके भी हाथ पीले कर दो।
2: अरे मंजरी का हाथ है कि ड्राइंग कॉपी का पन्ना, हाथ पीले कर दो। अरे भगवान, पढ़ी लिखी लड़की का ब्याह करना आज के जमाने में बड़ी टेढ़ी खीर है।
1: व्याकरण नहीं पढ़ी तो हिंदी क्यों बोलते हो जी? खीर टेढ़ी नहीं, मीठी होती है।
2: होती होगी खाने वालों के लिए खीर मीठी। यहाँ तो तुरई की सब्जी और चोकर की रोटी खाते खाते आलू और अंडे का फर्क ही भूल गया है। भाग्यवान, तुम्हें बुलाया था दो चार हल्की फुल्की बातें करने के लिए, और एक तुम हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई।
1: जब देखो तब रामायण, जब देखो तब रामायण। बेटी मंजरी, मैं मंदिर जा रही हूँ, अपनी भाभी से बोल देना अर्जुन को ऑफिस भेजकर लक्ष्मण के होने वाले ससुर का नाश्ता वगैरह बना ले, आ ही रहे होंगे।
3: अच्छा अम्मा।

0: साढ़े दस बज रहे हैं और ये सुंदर का बच्चा अभी तक तस्वीर लेकर नहीं लौटा।
1: अरे वाह, लौटे कैसे नहीं मंजरी बिटिया? असल माँ अपने बिंदा दिन धोबी का गदा हुआ हेराय कमा रहा, बस चौराहे पर हमका देखते ससुरा पकड़ ली।
0: क्यों, बिंदा दिन को तुम में और अपने गधे में कोई फर्क नहीं नजर आया क्या?
1: अरे फर्क कैसे नजर नहीं आता, हम दुई टांग की, उचार टांग का। अरे वो तो हमका अपना गदावा ढूंढवावे खातिर लिए जात रहा, तो उन हम उसे कह दें कि
0: तस्वीर लाए कि नहीं।
1: बरोबर लिया है, इले।
0: अरे ये तो किसकी तस्वीर उठा लाया सुंदर?
1: आपकी मंजरी बिटिया।
0: मूर्ख, तूने मुझे देखा नहीं क्या कभी?

0: गौर से ना आई देखा रहा कुछ।
1: अरे ये तस्वीर मेरी नहीं, किसी और लड़की की है।
0: आई अरे ये कौन बवंडर हुई गवाह भाई,
1: इतने साल से इस घर में हो और तुम्हें मेरी तस्वीर तक पहचानी नहीं आती।
0: अरे तस्वीर है पहचाने आवत तो कहा, हम लड़की देख के औरत ब्याह ली आते।
1: अम्मा को मालूम हो गया तो तुमको तुम्हारी औरत समेत सड़क पर फेंक देगी।
0: अरे दे दे दे दे दे दे, ऐसा गलती ना कियो मंजरी बिटिया, ऐसा गलती ना कियो, हम हाथ गोड़ दोनों जोड़ी थे।
1: मैं फॉर्म में क्या तुम्हारे जुड़े हाथ पैर लगाऊंगी?
0: अरे का है मंजरी बिटिया, इ फोटोवा में आंख होठ बाल कुल तो एमा है, ये है चेहरवा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो से का होता है, आपन समाज के का फार्म में लगा।
1: शट अप, जाकर इसे जल्दी से बदल दे।
0: आप काले जाओ, हम काम से फुर्सत हो के का जरूर बदल लाएंगे।
1: ठीक है, लेकिन कॉलेज से लौटने पर मुझे मेरी तस्वीर मिलनी चाहिए, नहीं तो अम्मा से कहकर।
0: अरे बाप रे बाप, अम्मा जी आवत थी, अभी मुसीबत कहाँ छिपाई, कहाँ छिपाई, कहाँ छिपाई। हाँ, अर्जुन भैया के खूंटी पर टंगे काले कोट मा, एक पहिरा तोहरा तो है नहीं, कोई का पता भी न चली। काम काज के बाद चुप्पे से बदल लाऊंगे मंजरी पिटिया की तस्वीर। ए ए ये ले, पड़ी रहो तस्वीर रानी अर्जुन भैया की कोट की जेब मा। जय जय जय जय।
2: अरे सुंदर,
0: जय जय,
2: तू यहाँ क्या कर रहा है?
0: हाँ
2: जा जा, चौके में पानी भरा।
0: जाहिद जाहिद,
2: तू अभी तक ऑफिस नहीं गया अर्जुन?
3: जा रहा हूँ माँ, बस जरा ये लंच बॉक्स ले लूँ।
2: बहू बहू, अर्जुन का लंच बॉक्स दे दे, मैं पूजा पर जा रही हूँ।
4: ये लीजिए लंच बॉक्स, खाना वक्त पर खा लीजिएगा, 3 बजे चाय पीजिएगा, 4 बजे दवाई खाइएगा और 5:30 बजे घर आ जाइएगा।
3: तुम बीवी हो या कंप्यूटर, ये काम वक्त पर कर लीजिएगा, वो काम टाइम पर कर लीजिएगा, अरे मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर।
4: एक मिनट सुनिए सुनिए, ऑफिस जाते समय अपना ये कोट ड्राई क्लीनिंग को देते हुए जाइए, अरे बहुत दिनों से यहीं पे टंगा हुआ है, देख लूं इसमें कहीं कुछ है तो नहीं।
3: अरे इस गंदे कोट में क्या होगा भाई, जल्दी दो, मुझे देर हो रही है।
4: अरे हाँ, पिछली बार तुम्हारी सूट में, अरे तुम्हारे कोट की जेब में किसी की तस्वीर है।
3: तस्वीर? हाँ, वो जाड़े में नानी जी के आ गया था ना, उन्हीं की होगी
4: ये तस्वीर। नानी की नहीं, किसी फुलझड़ी की है।
3: फुलझड़ी की तस्वीर? अजी मैं क्या किसी मैगजीन का दिवाली विशेषांक निकाल रहा हूँ, जो ये फुलझड़ी पटाखे की तस्वीर मेरी जेब में होगी।
4: ये दिवाली वाली नहीं, आंख नाक वाली फुलझड़ी है, ये देखिए।
3: आए ये ये ये ये ये ये, ये लड़के की तस्वीर है।
4: जी नहीं, आपकी नानी की तस्वीर है।
3: लेकिन ये लड़की मेरी जेब में कैसे आई?
4: जेब में लड़की नहीं, उसकी तस्वीर आई है जनाब। लड़की तो आपके दिल में होगी, तभी तो मैं कहूँ कि जनाब ऑफिस इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं।
3: जल्दी कहाँ, टाइम से जाता हूँ भाई। ये देखो घड़ी।
4: हाँ हाँ, घड़ी मुझे दिखाते हो और तस्वीर लड़कियों की देखते हो, मैं पूछती हूँ कौन है ये मुँह जली?
3: इसका मुँह कहाँ जला है?
4: अरे वो तो मैं जला दूंगी, पहले मुझे दिखाइए तो सही।
3: अरे इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी, तुम्हें कहां से दिखा दूं?
4: क्या यानी कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ?
3: नहीं, हो, हो, हो, हो, हो, हो, हो नहीं चाहिए, होना ही चाहिए, हर बुद्धिमान आदमी की पत्नी को तो खूबसूरत होना ही चाहिए।
4: यानी कि आप मुझसे खुश हैं ना?
3: होना ही चाहिए।
4: आपको मुझसे प्यार है ना?
3: होना ही चाहिए।
4: तो फिर ये कौन है?
3: खूबसूरती।
4: और मैं?
3: बीवी।
4: फिर हम दोनों के बीच में ये कहां से आ गई?
3: यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है गीतांजलि, कि हमारे तुम्हारे बीच में ये खूबसूरती कहां से आ गई।
4: हाँ हाँ, हमारे तुम्हारे बीच में तो हमेशा बस सूरज समान ही रहे है ना। ठीक है, डोली में बैठा कर ले आइए अपनी इस खूबसूरती को।
3: देखो देखो गीतांजलि, मैं उसूल का पक्का आदमी हूँ, मैं अपनी सीमा रेखा कभी नहीं छोड़ सकता।
4: क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं लेकिन अपनी इस सीमा और रेखा को नहीं छोड़ सकते? ठहरो, अगर मैंने भी तुमको तुम्हारी इस सीमा और रेखा से अलग नहीं किया तो मेरा नाम भी गीतांजलि नहीं है। अम्मा जी मैं बर्बाद हो गई। अम्मा
3: अरे,
4: जी
3: अरे रुक जाओ गीतांजलि, क्यों बन रही हो मेरे लिए श्रद्धांजलि? अरे तू किसकी तस्वीर है भाई? आना ही था तो मेरी कोट की जेब में आने के बदले शादी से पहले

0: मेरी जिंदगी में आ गई होती। हाँ, अरे अब कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं इस खूबसूरत मुसीबत को, कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं।
1: हाँ, लक्ष्मण की फिलॉसफी की इस किताब में। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। टिकर टिकर
2: क्यों
1: टिकर
2: अर्जुन, बहू क्या कह रही है?
3: पूछिए इनसे अम्मा जी, मेरे होते हुए ये कोट की जेब में सुंदर लड़कियों की तस्वीर लेकर घूमते हैं।
0: कोट तो खूंटी पर टंगा था माँ, मैं तो सिर्फ शर्ट पहन कर घूमता हूं।
3: आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है?
0: मोटे तौर पर तो सब कुछ वही है, लेकिन
3: सुन लिया ना अम्मा जी, सुन लिया ना आपने। अरे मैं आजकल जरा मोटी क्या हो गई हूँ कि ये हिरणों के पीछे कुलाचे मार रहे हैं।
2: शरीफ घरों के लड़के ऐसे होते हैं अर्जुन।
0: माँ वो बात यह है माँ, देखो मैं वो क्या समझाऊँ माँ, दरअसल मेरा मतलब यह है
3: अरे
0: कि
3: ये क्या बोलेंगे अम्मा जी, देखिए ना आजकल ऑफिस भी ये सूट पहनकर जाने लगे हैं।
0: अरे तो क्या कफन पहनकर ऑफिस जाऊं?
3: और ऑफिस से थके थके भी नहीं आते हैं।
0: ऑफिस में काम करने जाता हूं, फुटबॉल का मैच खेलने नहीं, थके थके नजर नहीं आते। अब ऑफिस में काम कम रहता है तो जबरदस्ती थक जाऊं?
3: ऑफिस में काम कम रहता है इसीलिए तो दुमकट्टी के साथ में घूमने का वक्त ज्यादा मिल जाता होगा ना।
0: देखो देखो गीतांजलि,
2: डांट
0: मैं
2: मत अर्जुन, मेरी बहू लक्ष्मी है।
0: अरे तो मैंने कब कहा कि सरस्वती है?
2: शर्म नहीं आती? घर में चांद जैसी बीवी को छोड़कर बाहर की आवारा लड़कियों के पीछे घूमता है।
0: बाहर की आवारा लड़कियां इतनी बुद्धू नहीं होती अम्मा जो घर के किसी पालतू पति को सूखी घास भी डाले।
2: रो मत बहू, रो मत, मेरे होते हुए तेरी जगह कोई दूसरी नहीं आ सकती।
3: हो सकता है अम्मा जी वो पहली हो।
2: मैं उसको आखिरी बना दूंगी। अर्जुन बहू से माफी मांग।
0: लेकिन क्यों?
2: मैं कहती हूं बहू से माफी मांग।
0: लेकिन अम्मा।
2: माँ की बात काटता है।
0: अच्छा बाबा माफ कर दो गीतांजलि और रोना बंद करो, अब तुम्हारा कपड़े धोने का टाइम हो रहा है।
3: यहां से सीधे ऑफिस जाइएगा।
0: सीधे जाऊंगा तो ऑफिस नहीं पागल खाने पहुंच जाऊंगा। मेरा ऑफिस सीधे नहीं बाएं मुड़कर है।
4: सीधे ऑफिस जाइएगा।
2: जा बहू, लक्ष्मण के होने वाले ससुर के लिए नाश्ता वाश्ता बना ले, आ ही रहे होंगे।
5: बेटा लक्ष्मण।
2: बेटा लक्ष्मण, तेरे बाबूजी बाहर गए हैं, तू बैठ यहीं। रिश्ता तय करने तेरे होने वाले ससुर भड़ाम सिंह जी आने वाले हैं ना?
3: अरे अम्मा जी, देवर जी तो सुबह से ही सधज के बैठे हैं।
2: चल बहू चल।
6: इकरार करा।
7: ले लक्ष्मण बाबू गर्मा गर्म चाय। इंतजार इंतजार माँ, चाय वाय सुड़के से बड़ी राहत मिलती है।
8: वेरी गुड सुंदर।
9: मेरा दिल भी इतना।
8: अरे सुंदर, ये खाली खूटी पर क्या ढूंढ रहे हो?
7: कुछ नहीं कुछ नहीं, आप चाय पियो चाय पियो। आप
10: कहाँ चला गया ससुरा कोट? यही तो टंगा रहा, छिन्ने भरमा दीवाल निकल ली कि खूंटी हजम कह गई। हे भगवान।
8: अरे पागल हो गया क्या सुंदर, ये कुर्सी उलटकर दरी उलटकर मेज के नीचे सोफे के नीचे क्या ढूंढ रहे रे?
7: कुछ नहीं छोटे बाबू, आप चाय पियो आप चाय पियो। हम देखत रहे कि कहूं मकड़ी का जाला वाला तो नहीं लगा है।
10: न टांग न पैर, कहाँ चला गवा ससुरा कोट? 2 महीना से टंगा रहा और तस्वीर जेब में पड़ते अला दिन के जिन की तरह हवा हो गवा ससुरा। अरे कहूं तस्वीर यहर वहर हो गई तो हमार तो पोजिशन यहर वहर हो जाए भाई। अरे मिल जा हमार माई तो का सवा से लड्डू चढ़ाई। अरे हिया तबीयत साफ हुई जा रही है, उनका बर्तन की पड़ी है।
7: छोटे बाबू, आज आपके ससुर जी आवे वाले हैं ना?
8: हाँ आने वाले तो है, लेकिन वो कुर्सी के नीचे नहीं ऊपर बैठेंगे। तू तो आज सिर्फ नीचे ही नीचे की सफाई किए जा रहा है।
10: अरे हमार तो आज नीचे से ऊपर तक जनाथ मुसल्लम सफाई हो जाए। बिटिया बिटवन

0: के साथ भागत ही सुना रहा, यहाँ ससुर तस्वीरिया कोटवा के संग भागी। अरे आई थे अम्मा जी, आई थे आई थे आई थे।
1: दिल तोड़ तोड़ के कह रहा है अभी जाने।

0: अरे राम सिंह जी, आप आइए आइए और ससुर जी, मैं तो कब से, मेरा मतलब अम्मा बाबूजी, कब से आप ही के इंतजार में पलके बिछाए हुए बैठे हुए हैं।
1: जवानी में हम भी तुम्हारी तरह अपने होने वाले ससुर के इंतजार में पलके बिछाए बैठे थे।
0: क्यों क्यों क्यों, आपके जमाने में दरिया कालीन नहीं हुआ करती थी क्या?
1: अरे बेटे, जवानी के पांव जमीन पर नहीं, हरमानों के गलीचे पर रखवाए जाते हैं।
0: जी वो तो ठीक है, लेकिन
1: तुम हमारी बेटी से मोहब्बत करते हो ना?
0: जी वो तो यूं ही
1: गोया पिछले 4 सालों से तुम हमारी बेटी के साथ अपना ये यूं ही जा रहे हो।
0: जी बात दरअसल ये,
1: तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं?
0: होने वाले तो आप ही हैं।
1: जो हो चुके हैं वो कहाँ हैं?
0: क्यों,
1: अपनी बेटी की शादी तय करके मैं तुम लोगों का पिछले 4 साल से चल रहा यूं ही यहीं समाप्त करना चाहते हैं, समझे?
0: अच्छा अच्छा, आप यहाँ बैठिए बैठिए, तब तक आप किताब पढ़िए, लीजिए ये किताब, मैं पिताजी को बुला के लाता हूँ।
1: तो
2: क्या हुआ?
1: लोग मेहमानों को सिनेमा या साहित्य की किताब पढ़ने के लिए देते हैं, और तुम मुझे ये क्या कहते हैं, ये
0: फिलॉसफी
1: की किताब पढ़ने के लिए दे रहे हो?
0: जी मैंने ये किताब आपको पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ पन्ने उलटने के लिए।
1: ओके ओके जाओ
0: जी।
1: करो।
2: क्या हुआ?
1: अंधेर।
0: यहाँ तो उजाला है बाबूजी।
1: शट अप, बाप और बेटी दोनों को एक साथ बेवकूफ बना रहे हो। टीजिंग साइमल्टेनियसली, शादी मेरी बेटी से करना चाहते हो और अपनी किताब में तस्वीर किसी दूसरी लड़की की रखते हो।
0: मेरी किताब में दूसरी लड़की की तस्वीर?
1: मेरी सिर्फ एक लड़की है, ये दूसरी लड़की किसकी है?
0: मेरी नहीं है।
1: ये किसकी शरारत है?
0: मेरी नहीं है।
1: ये किसकी बीवी है?
2: मेरी नहीं है। मैं सच कहता हूँ बाबूजी, इस जन्म में मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा।
1: तो क्या ये तुम्हारे पिछले जन्म की महबूबा है?
0: पिछले जन्म में तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था बाबूजी।
1: तुम मुझे बेवकूफ समझते हो?
0: जी
1: जी
0: जी नहीं जी नहीं जी नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा।
1: मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो।
0: यहाँ धूल कहाँ है बाबूजी?
1: मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
2: बंदूक मैं ला दूंगा, लेकिन मेरी बात का यकीन तो कीजिए, ये लड़की मेरी कुछ नहीं लगती।
1: कुछ नहीं लगती है? सुंदर लगती है
0: जी।
1: तो कैसे कहते हो कि कुछ नहीं लगती? ये लो अपनी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की महबूबा नंबर 2 की तस्वीर, और आज से मेरी बेटी की ओर नजर उठाकर मत देखना।
2: मैं नजर झुका कर देख लिया करूंगा बाबूजी, लेकिन मेरी बात तो सुनिए।
1: अच्छा हुआ जो मेरी बेटी ने ये सब नहीं देखा, वरना उस बेचारी का तो हट ही फेल हो जाता।
2: लेकिन मुझे तो पास करते जाइए बाबूजी। बाबूजी रुक जाइए बाबूजी।

0: अरे फिल्मी तरज में काहे रोआ था छोटे बाबू का भवा
1: सत्यानाश।
0: अरे ब्याह के पहले ना, अरे ये आपके हाथ में तस्वीर,
1: पता नहीं कहां से आ गई मेरी फिलॉसफी की किताब में सुंदर, इसे देखते ही रीवा के बाबूजी रिश्ता तोड़ के चले गए।
0: अरे तस्वीर हमका दियो और लपक के मना लिया अपने ससुर का, नहीं तो हम तो शादी कई के कुंवारे हैं, तुम मोहब्बत करके कुंवारे रह जाओगे।
1: लेकिन ये तस्वीर,
0: अरे फसाद की जड़ है कि तस्वीर है, तू दौड़ो अपने ससुर के पीछे लपक।
1: ऐसा हाँ? बाबू जी,
2: बाप रे, मिल तो गई ससुरी तस्वीर, अरे कहाँ खोई गई रही रे।
3: कैसे बात करत हो जी?
0: अरे सुंदरी, हमार धर्म पता नहीं।
3: हाँ हमरे

0: धर्मपति,
1: तू यहाँ कहाँ से आ गई रे?
0: हरी तोरे खातिर गुड़ की खीर बनायन रहा ना, चलो चल के खा लियो।
1: भिनसरवे तोहार मार खाए और अब तोहार खीर खाई, एक दिन मा दुई दुई सवाद।
0: भिनसहरवा हमका जाने का होई गवा रहा, अब तो गुस्सा भूल के घरे आजा।
1: चाचा हमका झाड़ू लगा भी का।
0: अरे तो लगा ना झाड़ू, एक झाड़ू फरस पर और एक हमरी पीठ पर। ए ये पीठ के पीछे का छुपावत हो जी,
1: कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं
0: कुछ ना तो छिपावत
1: कुछ
0: का
1: कुछ नहीं नहीं नहीं कुछ
0: हो।
1: तो नहीं।
0: फोटू, इतनी खूबसूरत लड़की की फोटू तुहरे पास?
1: नहीं
0: अच्छा, तब वही ना एकरे दीदा माँ दीदा डार के मिठुआए मिठुआए के तोता की तरह पूछत रहे, तू कहाँ खोए गई रही रे? हाँ?
1: गई भैंस पानी में रे। ए सुंदरी
0: हाँ?
1: सुंदरी, तेरी खीर कहाँ है?
0: अरे खीर खाए कुत्ता और मौ खाए तू, दही जरा के नाती, ब्याह करे खातिर हम और नैना लड़ावे खातिर
1: अरे पलटू पहलवान की चौथी बीबी की पांचवी बिटिया, तनी हमरी भी तो सुनो। अरे बाप रे, दोनों हल्ला हमाई मारे। अरे सुंदरी सुंदरी सुन सुन सुन सुंदरी सुन,
0: थाड़े रहो, थाड़े रही हो, हम अपने ने तो अर्ज कही था अम्मा जी से करी था, अम्मा
1: हे भगवान। अरे तस्वीर देखे तो तू हमका अभिमन्युओं की तरह चक्कर भी उमा फंसाए दियो। अम्मा जी तो देखते हैं हमका धरती समेत उठा के बाहर फेंक देंगे। अभी फसाद की जड़ हम कहाँ छिपाई राम, कहाँ छिपाई राम राम रामायण, बाबू जी की रामायण। अरे वाह रे राम, खूब कियो इंतजाम, मिल गई तस्वीर छुपावे की जगह। ए, ए, ए, ए, ये रही बाबू जी की रामायण, या कोई देख भी न पाई। माफ कियो राम जी माफ कियो, ए बखत हमार इज्जत हाथ पर समेत खतरे में है। अरे फसाद की जड़ फोटो का छिपाए लियो, बाकी हाँ छुयो ना छुयो ना, नहीं तो यह पाथर की तरह तस्वीर से लड़की बन जाई, बस छुपाए लियो। ए या
0: क्यों रे सुंदरवा, सुंदरी तेरी कैसी गंदी शिकायत करती है, किसी और के लिए तो इसको छोड़ रहा है।
1: अरे यो कौनो प्राइवेट नौकरी है क्या, मैं का छोड़ देंगे अम्मा जी? अरे एक ही मती तो सन 42 के मोटर गाड़ी की तरह रही रही के खराब हो जाती। अरे सुंदरी अरे सुंदरी थम तो तनी, अरे तोहरे में तो नबी रेख है ना गिरे कहीं लाट भिड़ जाएगी रे सुंदरी।
2: रघुकुल रीत सदा चलिया। अरे अर्जुन की अम्मा, ये सुंदर सुंदरी क्यों लड़ते झगड़ते जा रहे हैं?
0: मुए मर्दों की आजकल जाति ऐसी होती है, गुड़ देखा नहीं कि लग गए चूटा बनकर। अच्छी भली जोरू को छोड़कर कोई कलमू ही उठा लाया है
2: राम
0: सुंदरी।
2: राम राम राम राम राम, क्या जमाना आ गया है अर्जुन की अम्मा। अरे एक हमारा तुम्हारा जमाना था, न तुमने हमें छोड़कर किसी को देखा और न हमने तुम्हें छोड़कर किसी को देखा।
0: जाओ जी, इस उम्र में अनाप शनाप बोलते लाज नहीं आती।
2: वो जमाना याद आता है अर्जुन की अम्मा, जब तुम कुएं से पानी भरा करती थी और हम खड़े खड़े आहे भरा करते थे।
0: हटो भी, बच्चे जवान हो गए हैं।
2: तभी तो हमने तुम्हें छोड़कर ये रामायण पकड़ ली है।
0: कुछ देर के लिए

0: तो ये रामायण बंद रखा करो जी। जब अपने दिनों की याद दिला ही दी है तो
1: अब कहाँ हम तुम अमरूद की बगिया में आंख मिचौली खेल सकते हैं अर्जुन की अम्मा।
0: तुमको गठिया है।
1: तुमको मोतिया बिंद है।
0: चलो, अमरूद की बगिया में साथ साथ दौड़ नहीं सकते, लेकिन साथ साथ रामायण तो पढ़ सकते हैं।
1: ऐनक तो है नहीं, पढ़ोगी कैसे?
0: तुम्हारी आंखों से
1: अरे कहाँ सोहर कजरी छोड़कर रामायण के पीछे पड़ गई हो अर्जुन की अम्मा। जाओ जाओ अपना चौका चूल्हा देखो।
0: नहीं, आज तो तुम्हारे साथ रामायण ही पढ़ूंगी। देखूं तो तुम्हें इसमें इतना क्या आनंद मिलता है जो हर समय रामायण पढ़ा करते हो।
1: अरे छोड़ो भी,
0: लाओ रामायण,
1: अरे मैं कहता
0: मैं
1: हूं
0: कहती हूँ लाओ ना
1: छोड़ो
0: रामायण,
1: छोड़ो
0: दो
1: जा
0: ना।
1: छोड़।
0: अरे ये तुम्हारी रामायण के नीचे क्या गिरा जी?
1: संतोषी माता की तस्वीर होगी।
0: ऐनक नहीं है तो घड़ी को घोड़ा समझाते हो? ये संतोषी माता की तस्वीर है।
1: ये तो किसी लड़की की तस्वीर है।
0: तुम्हारी रामायण में लड़की की
1: तो,
0: तस्वीर?
1: तो, तो, तो, तुम्हारी कसम खाता हूं अर्जुन की अम्मा, मुझे कुछ कुछ नहीं मालूम।
0: मुझे मालूम हो गया और तुम्हें कुछ नहीं मालूम?
1: मेरा मतलब है,
0: खूब समझती हूँ तुम्हारा मतलब। मुंह में दांत
1: अरे
0: और पेट में आंत नहीं, चले हैं कबाब खाने। हृदय
1: अरे अर्जुन की अम्मा,
0: नहीं फूट गए इस उम्र में इस उम्र की लड़की की तस्वीर देखते हुए? बुढ़ापे में रोमांस कर रहे
1: अरे
0: हो?
1: भाग्यवान 2 मिनट के लिए ना सही, 1 सेकंड के लिए कम से कम मेरी भी तो सुन लो।
0: तभी तो मैं कहूं कि ये दिन रात रामायण से गोद की तरह क्यों चिपके रहते हो? लोकलाज चाय के साथ पी गए हो
1: राम
0: क्या?
1: राम राम राम राम, हरे राम हरे राम, ये सब क्या है भगवान?
0: भारी चोचलेबाजी! मैंने तो ब्याह के बाद मर्द के नाम पर तुम्हें छोड़कर किसी उल्लू को भी नहीं देखा, और तुम इतनी जवान खूबसूरत लड़की को रामायण में रखकर देखते हो? छी, अशुद्ध कर दिया रामायण को अपनी भावना की तरह। अरे बेटा लक्ष्मण,
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक तस्वीर। लेखक थे दिनेश भारती, कलाकार थे इवान रेनू, राम पदारथ राय, विजय कुमार विशाल, जया भट्टाचार्य, रश्मि शर्मा, नारायण द्रविड़, अनूप अग्रवाल, दिनेश श्रीवास्तव और किरण यादव। प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर वीके श्रीवास्तव। हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए सुने पंडित निखिल बनर्जी का सितार पर बजाया राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं करमतुल्लाह खान।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुने थे सितार वादन। कलाकार थे पंडित निखिल बनर्जी। राग था रागेश्री और तबले पर संगत कर रहे थे करमतुल्ला खान। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी वाराणसी है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से

0: एक गुरुग्राम से और एक व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurgaon, and 1 from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the Prime Minister himself significantly reduced